0: मन का सुत लोभ है जीवा सुत कूड़ अखी सुत कवेखणा परत परधंगु कनी सुत कंपे लैत बारी खाही नानक हंसा अग्नि बदे जन प्रजाए महला पहला
1: सबो सुत भरम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोण रिजक संभाए नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया
0: तिन्ना सुत कनाए पड़ सतगुरु वड्डा कर सलाहिए जिस
1: विच लगियां वड्याई।

0: पांडव लिए पांडव बंदा सुख मंदा किए जित मेरा जान पांडो ही पांडु जय पांडे बाजना को नानक पांडे बहरा इको सच्चा सोई जित मुख सदा सलाहिए भगर की चार नानक तिन खुजले सच्चे दरबार पौड़ सको आखे अपना जिस नाही सोचन कटिया पिता को अपना
1: सबको आखे अपना जिसना ही सोच निकलिए पीता आपू अपना पिछले का संडिए जा रहना ना ही आख्या का कार बार बहंडी है मंदा किसे ना पिए बड़ा खड़ी हो बुद्धी है मूर्ख नाल नल जी है मूर्ख नाल नल जी है।

और नान अंतना जापनी हरदा के परवार आप रैसा कुमरा क्राइमा एक नगली दंजीरिया एक दूरी चढ़े बिसिया आप रैसा करे आप हो कैसा रिपका नान करना जुगिया सिर्फ सही करनी सा हर जुग

0: नानक दासा कै बलिहारी मिले नाम हर।
1: हुण तुसीं श्री
2: श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण कर रहे सी। असीं एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी अमृतसर केंद्र तो बोल रहे हैं। बेशक खिदमत सूफियाना कलाम
3: समात फरमाओ सूफियाना रंग।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़। तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। सभ खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिंखां सवाइ तबसिरो पेश कयो वेंदो। 6:40 मिंटनि ते मन की बात ॿुधंदा ऐं प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंजी गाल जी 114 ही किस्त में आम भारतीय जे मुतासिर कंदर कहानियों नन शेयर कई जी की मुल्क लाए गैर मामूली खिदमतू देन पया हुना खोडिनन अनिमेश कुजूर एं गुरिंदर वीर सिंह जे कामयाबिन के नुमाया करे आगाज कयो जिन कौमी एस्पारेंट रिकॉर्ड भन्या ए साबित कयो त अजम हर रुकावट के मिठाए सघे थो। गर्मी पर जी चोटी ते वजीर आजम शहरी माण्हुनि खे पाणी घणो पीअण जी सलाह डि॒नी ए भारत जे रवायती थदी शयूं जीअं क लस्सी आमपना कोकम शरबत सटो ए माखी जी तारीफ़ कई। हुन भारतीय आम जी आमिर तनवो जी पिण जश्न मल्हाए ऐं किसाननि जे भारत जे किस्मन खे आलमी मंडियुनि ताईं पहुचाइण जी साराह कई। मिस्टर मोदी कैराला जे शाजी वला सीरल जी पिण तारीफ़ कई जंहिं 15,000 माण्हुनि खे तरण में तरबियत डि॒नी आहे जिन में ख़ासि ज़रूरत वारा पिण शामिल आहिनि। पाणी जी हिफ़ाज़त खे फ़रोग डि॒यण में मददगार साबित थियो। भारत जे वरसे बाबति ॻाल्हाईंदे हुननि नीदरलैंड्स मां चोला दौर जा कॉपर प्लेट्स वापसि अचण ते ख़ुशी जो इज़हार कयो ऐं ज्ञान भारत मिशन तहत छत्तीसगढ़ में नई आसार कदीमा जे दरियाफ़्त खे नुमाया कयो। वज़ीर आज़म नौजवाननि खे फलकियात में दिलचस्पी पैदा करण ऐं पंहिंजे उन्हारनि जी मोकलुनि दौरान फलकियात क्लबुनि में शामिल थियण जी हिमत अफ़ज़ाई कई। हुन पिण नमामि गंगे जे मनसूबाबंदी तहत ख़ासि रेस्क्यू एम्बुलेंस ज़रिए गंगा डॉल्फिन जे कामयाब बचाव जी तारीफ़ कई ऐं हयातियाती तनवो जी हिफ़ाज़त जी अहमियत ते ज़ोर डि॒नो। मिस्टर मोदी शहरी माहौलियात तहफ़ुज़ ऐं अवामी फलाह लाइ कम कंदड़ शहरियुनि जूं मुतासिर कंदड़ कहाणियूं पिण शेयर कयूं जिन में उत्तर प्रदेश में नदियूं साफ़ करण ऐं गोवा में पाणी जी खोट खे हल करण जूं कोशिशूं शामिल आहिनि। हुन तमिलनाडु में गिरजा अम्मा ऐं हुन शागिर्दनि जी वतन परस्ताना कोशिशुनि जी बि साराह कई जिन भारत जे मुसलसल अफ़ास जे मुलाज़िमनि जी भलाई लाइ 40 लख रुपया गॾु कया। प्रोग्राम जे इख़्तिताम ते वज़ीर आज़म शहराइनि खे अहिड़ियुनि मुस्बत कहाणियुनि मां हिमत वठण, मुल्क जे तामीर में हिसो वठण ऐं समाज ऐं मुल्क जी भलाई लाइ कोशिश करण जी अपील कई। तव्हां तबसिरो ॿुधी रहिया हुआ। हींअर अचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ जी आवाज़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ जो एपिसोड 114 मन की बात ॿुधूं।
1: प्यारा देशवासियो नमस्कार। मन की बात में हिकु दफ़ो तव्हां सां ॿीहर मिली करे मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे। देश जे अलॻि अलॻि हिसनि में असांजे भारतवासियुनि मुल्क जे फ़ाइदे में, समाज जे फ़ाइदे में अहिड़ियूं अद्भुत कार्यवाहियूं कयूं आहिनि जिन जे बारे में असां ॿुधंदा आहियूं त असांखे हिकु नई प्रेरणा ऐं उत्साह मिलंदो आहे। अॼु प्रोग्राम जी शुरूआत एथलीट्स जे हासिलात सां करे रहिया आहियूं। कुझु ॾींहं अवल झारखंड जे रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कॉम्पिटिशन थी जंहिंमें लॻभॻि मुल्क भर जे 800 एथलीट्स हिसो वरितो। हिन रांदि दौरान चइनि अलॻि अलॻि वाक्यनि में 4 नेशनल रिकॉर्ड्स टुटी पिया। गोविंदर सिंह, विशाल डी के, तेजस्वी शंकर, देव मीणा ऐं कुलदीप कुमार इन्हनि अलॻि अलॻि कैटेगरीज़ में नवां रिकॉर्ड तयार कया। सभ खां अवल त मां इन्हनि सभिनी खे घणी घणी वाधायूं थो ॾियां। साथ ई हिकु अहिड़ो इवेंट जंहिंजी मुल्क भर में घणी चर्चा थी सो आहे 100 मीटरनि जी रेस। मैस ॿिनि ॾींहनि जे अंदर ई मैंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 भेरा टुटो। जिन ॿिनि एथलीट्स इहो कमाल करे ॾेखारियो आहे तिन जो नालो आहे गुरविंदर सिंह ऐं अनिमेश कुजूर। मूं सोचियो हिन भेरे मन की बात में इन्हनि ॿिन्ही एथलीट्स सां ॻाल्हि कई वञे। अनिमेश जी ऐं गुरविंदर सिंह, तव्हां ॿिन्ही खे नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तव्हां पंहिंजो पाण में हिकु वॾी हासिलात हासिल कई आहे। तव्हांजी जोड़ीअ वॾो कमाल करे ॾेखारियो आहे। संगीत में त जुगलबंदी थींदी आहे पर रांदियुनि में ऐं चटाभेटी में जुगलबंदी थींदी आहे सो हिकु अलॻि मौज़ू आहे। मां चाहियां थो त मन की बात ॿुधंदड़नि खे तव्हांजे ख़ासि मौज़ू बाबति ॼाण मिले तो तवा के यह हासिलात क्या मिली। नमस्ते सर, मुझे नालो अनिमेश कोजू रहे मां 200 मीटर ए 400 मीटर जो नेशनल रिकॉर्ड रखियो है ए मां छत्तीसगढ़ का रहंदो आया ए मां ओडिशा का खेलंदो आया। गुजर साल मु एशियन मेडल ए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल खणी आयस ए एथलीट्स 2001 में मु रांदी शुरू कयूं जॾहिं मां स्कूल मां पास थियोसि। मूं अंबिकापुर सैनिक स्कूल मां पढ़ाई कई आहे ऐं अवल मां फुटबॉल खेॾंदो हुउसि, पर कोविड जे वक़्तु मुंहिंजे माइटनि थोरी मोकल ॾिनी त ॿाहिरि डोड़ पाइजे या रांदियूं कर, ऐं कोविड ख़तम थींदे थींदे फुटबॉल में जेके मुंहिंजा दोस्त हुआ तिन मूंखे ॿुधायो त स्टेट मीट थियण वारी आहे, पार्टिसिपेट कर। ऐं मूं हिसो वरितो। मूंखे ख़बर नई त इहा नेशनल लेवल जी चूंड आहे। उतां मूंखे नेशनल लेवल लाइ चूंडियो वियो ऐं मां भारत खे आलमी सनत ते रिप्रेज़ेंट यानी की एज़ी पणो कंदो आहियां। गुरविंदर जी, तव्हांजो छा आहे? नमस्ते सर, मुंहिंजो नालो गुरविंदर आहे ऐं मां इंडियन नेवी में पेटी ऑफिसर आहियां ऐं मां भारत जो सभ खां तेज़ स्प्रिंटर आहियां। मूं 100 मीटर 10:29 सेकंडनि में क़ौमी रिकॉर्ड तयारु कयो आहे। मां पहिरियों भारतीय आहियां जंहिं 10:21 सेकंड जे बगैर खे हेठि कयो आहे ऐं मां कोशिशि करे रहियां त मां ट्रैक ऐं वर्दीअ में पंहिंजे देश जी सेवा कयां। मुंहिंजो पिता साहब ऐं ॾाॾो ॿई रांदियूं कंदा हुआ ऐं असांजी भारतीय सकाफ़त आहे त जॾहिं बि कोई त्योहार ईंदो आहे जहिड़ो की ॾियारी या नओं साल त असीं पंहिंजे घर जी सफ़ाई कंदा आहियूं। जॾहिं मां पंहिंजे पीउ जूं ट्रॉफ़ीस ऐं मेडल्स साफ़ कंदो आहियां त मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे ऐं मां ट्रॉफ़ीस साफ़ कंदे पुछंदो आहियां त इहा ट्रॉफ़ी किथां जी खटी वई, इहे मेडल किथे मिलिया ऐं इहे फ़ोटो कॾहिं जी आहे, त मूंखे पंहिंजी कहाणी ॿुधाईंदा आहिनि त असां फलाणे हंधि ते रांदि कईसीं, उते इहे नेशनल मेडल खटियोसीं ऐं पंहिंजी टीम खे खटायोसीं। हू सुबुह जो डोड़ पाइण वेंदा हुआ ऐं मूंखे वठी वेंदा ऐं जेको कुझु हुननि रांदियुनि में सिखियो आहे सो मूंखे सेखारींदा हुआ। इन तरह मुंहिंजो रांदियुनि में चाह थियो ऐं मूं उसेन बोल्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टुटंदो ॾिठो। हिकु अहिड़ी कहाणी आहे, मज़ाक आहे। मां हिकु भेरो टीवी ॾिसी रहियुसि त मुंहिंजे माउ टीवी बंदि कई ऐं चयो त हाणे वक़्तु पढ़ाई जो आहे। मूं चयो आहे ठीकु आहे, तव्हां मूंखे टीवी नथा ॾिसण ॾियो, पर हिकु ॾींहुं अहिड़ो ईंदो जॾहिं तव्हां मूंखे टीवी ते ॻोल्हींदा त गुरविंदर डोड़ पाए रहियो आहे। तॾहिं मूंखे वधीक ख़ुशी थींदी जॾहिं मुंहिंजी माउ मूंखे टीवीअ ते डोड़ंदो ॾिसंदी। वाह वाह वाह, शानदार ॻाल्हि कई आहे तव्हां त। जी हा सर, असां मिडिल क्लास फैमिली मां आहियूं ऐं मुंहिंजो पिता साहिब वॉलीबॉल खेॾंदो, पर घर जे परेशानियुनि सबबि हुन पंहिंजी रांदि छॾे ॾिनी ऐं सॼनि सपनो मां पूरो करण लाइ रहिजी वियुसि। हुन चयो त पुट, तोखे सपनो पूरो करणो पवंदो ऐं मां ॿुधो त मिल्खा सिंह रांदियुनि में केतिरी न घणी महिनत कंदो हो। मूंखे हिन चयो त हिकु ॾींहुं मां तव्हांजो सपनो ज़रूरु पूरो कंदुसि। पिता साहिब चयो त सपनो ईअं पूरो न थींदो आहे, उन लाइ सख़्तु महिनत करणी पवंदी आहे। मिल्खा सिंह उस में डोड़ पाईंदो, खेसि खून जूं उल्टियूं ईंदियूं, सॼो सॼो ॾींहुं ट्रेनिंग वठंदो। इहे ॻाल्हियूं मूंखे उत्साह पैदा कंदी रहियूं। मुंहिंजो पिता साहिब मूंखे हिमथाईंदो रहियो त मां पंहिंजे देश लाइ डोड़ पाईंदुसि ऐं देश लाइ मेडल खटींदुसि। जॾहिं मूं 100 मीटरनि वारो वाकियो चूंडियो त सभई मूंखे चवणु लॻा कि 100 मीटरनि वारो वाकियो न खण, छो जो इहो वाकियो भारतीयुनि लाइ कोन आहे, भारतीयुनि जो शरीर 100 मीटर लाइ तयारु कोन आहे। त मां ऐं मुंहिंजो पिता साहिब चवंदासीं त असां इहो वाकियो चूंडियो आहे, असां इन खां पुठिते कोन वेंदासीं ऐं जेकॾहिं कोई नथो करे सघे त असां करे ॾेखारींदासीं। मुंहिंजो पिता चवंदो मूंखे तोते अक़ीदो आहे ऐं इन अक़ीदे मूंखे

सिखायो ऐं उहो इहो करे ॾेखारियो ऐं अॼु हर हिकु भारतीय चवंदो आहे कि असां इंडियन स्प्रिंट कंदासीं। वाकई तव्हां ॿिन्ही त तमामु घणो कमाल करे ॾेखारियो आहे ऐं फ़क़ति ॿिनि ॾींहनि जे अंदरि तव्हां ॿिन्ही टे भेरा नेशनल रिकॉर्ड टोड़ियो आहे। 100 मीटर जे रेस में डोड़ण, जीअं गुरविंदर चयो त माण्हू चवंदा कि भारतीयुनि जो शरीर इन रांदि लाइ कोन आहे, त एतिरो मुश्किल हूंदे तव्हां ॿिन्ही इहो कमु कीअं कयो? मन की बात ॿुधंदड़ तव्हां मां ॿुधणु चाहींदा त उहो कहिड़ो जज़्बो हो, कहिड़ो ज़िद हो, कहिड़ी सोच हुई ऐं तव्हां ईअं कीअं करे ॾेखारियो, इहो कमु केतिरो मुश्किल हो? जी सर, मां गुरविंदर, शुरू में त मूंखे तमामु घणी महिनत करणी पई, स्ट्रगल करणो पियो ऐं मूंखे पंहिंजो पाण ते डाउट पण ईंदो त उहो सही राह चूंडी आहे कि न, छो जो तव्हां हर भेरे कोन खटंदा आहियो ऐं कॾहिं कॾहिं इन मां सिखंदा बि आहियो। जॾहिं मां सही परफॉर्मेंस कोन कंदुसि या कोई इंजरी लॻंदी त मां हाराईंदुसि, त मूंखे घर वारा हिमथाईंदा त जेकॾहिं हिकु ॾींहुं ख़राब थी वियो या हिकु साल ख़राब थी वियो त इन सां ज़िंदगी ख़राब कोन थींदी आहे। सपना कॾहिं बि ॾिसण न छॾणु घुरिजनि। मुंहिंजो उस्ताद पिण मूंखे हिमथाईंदो, असांजी कम्युनिटी ऐं असांजे आसे पासे वारा माण्हू पिण मूंखे उसाईंदा रहिया, जंहिंजे करे मुंहिंजो मोटिवेशन कॾहिं बि न टुटियो। अग्नेश जी, सर मूंखे माण्हू चवंदा जॾहिं मूं 2021 में एथलीट्स खयों त चवंदा इहा फील्ड नई आहे ऐं तूं करे न सघंदे, त मूंखे चवंदुसि त मां हिन खेत्र में हिकु दफ़ो आयो आहियां त मां कमु मुमकिन करे ॾेखारींदुसि। मूंखे पिता साहिब हमेशह चवंदा त राम में घुसियई त घणो न सोचजे ऐं पुठियां मुंहिंजो न ॾिसजे, बस राम में अॻिते वधंदो रहो। तोखे सभई सहूलियतूं आहिनि, असां तोखे हर ॻाल्हि में सपोर्ट कंदासीं, कुटुंब जी सपोर्ट ऐं फाइनेंशियल सपोर्ट, बसि तोखे अॻिते वधणो आहे ऐं महिनत करणी आहे ऐं ॾेखारणो आहे त भारतीय पिण डोड़े सघंदा आहिनि। छो जो मूंखे माण्हू चवंदा की इहा रांदि भारतीयुनि लाइ कोन आहे, पर असां ॿिन्ही इहो साबित कयोसीं कि भारतीयुनि लाइ इहा रांदि आहे ऐं अहिड़ो कुझु बि नामुमकिन कोन आहे। ऐं असांखे इहे शयूं वधीक मोटिवेट कंदी आहिनि जो असां वक़्तु वक़्तु ट्रेनिंग सां पंहिंजा रिकॉर्ड ॿिया जोड़ींदा वियासीं ऐं बाक़ी भारतीय पिण ॾिसंदा रहिया कि इंडियंस पिण डोड़े सघंदा आहिनि। ऐं हाणे असां ॿिन्ही जी चूंड कॉमनवेल्थ रांदियुनि लाइ थी वई आहे ऐं जल्दी ईंदड़ कॉम्पिटिशन में असां पंहिंजो बहितरीन परफॉर्मेंस ॾेखारींदासीं। मुंहिंजे मन में हिकु सुवालु आहे त जीअं त तव्हां ॿई सुठा दोस्त आहियो त तव्हां हिकु ॿिए जा रिकॉर्ड कीअं टोड़ींदा आहियो? अनिश, तव्हां ॿुधायो। जी सर, पहिरें रिकॉर्ड 10:21 सेकंड जो जेको मुंहिंजो ई हो ऐं तंहिंखे गुरविंदर सेमी फाइनल में टोड़ियो 10:21.7 सेकंड करे ऐं पोइ मूं वरी सेमी फाइनल 2 में 10:25 सेकंड करे तयारु कयो ऐं जॾहिं ॿीहर मुंहिंजो सेमी फाइनल थियो त असां ख़ुशि हुआसीं कि अॼु असां रिकॉर्ड टोड़ियो आहे ऐं कुझु अहिड़ो कयो आहे जेको कॉम्पिटिशन में रेवलरी हूंदा, पर असां ॿिन्ही ठाणे रखियोसीं कि असां कुझु अलहदा कंदासीं। असां सऊदी अरब बि वियासीं चटाभेटी लाइ त असां हुते ॿई रूममेट्स हुआसीं त असां ॿई ॻाल्हियूं कंदासीं कि भारत जे स्प्रिंटिंग खे खणी करे असांखे अॻिते वधणो आहे ऐं असांजे कारणनि खे ॾिसी करे ॿिया भारतीय मोटिवेट थींदा। गोविंदर जी, तव्हां कुझु चवंदा? जी सर, असां ॿिन्ही फ़ैसिलो कयोसीं त असां डोड़ पाईंदासीं ऐं जॾहिं बि असांखे हिकु ॿिए जी ज़रूरत हूंदी त असां हिकु ॿिए खे मदद ॾींदासीं। जॾहिं असां वार्म अप कंदा आहियूं त हिकु ॿिए खे सेखारींदा आहियूं, हिकु ॿिए जी मदद कंदा आहियूं, इन तरह असां पंहिंजो परफॉर्मेंस पिण इम्प्रूव कंदा आहियूं। असां ग्राउंड खां ॿाहिरि दोस्त आहियूं ऐं रांदि जे अंदरि कॉम्पिटिशन जे अंदरि असां कॉम्पिटिटर आहियूं। तव्हांजी चटाभेटी मुल्क जो फ़ख्रु वधाइण लाइ ऐं तव्हांजी शफ़ी सोच मुल्क खे इन मुक़ाम ते आंदो आहे। तव्हां हिकु ॿिए जी मदद करे हिकु अद्भुत कमु कयो आहे। मुंहिंजी तव्हां ॿिन्ही खे घणी घणी वाधायूं ऐं शुभकामनाऊं ऐं मूंखे विश्वास आहे त ईंदड़ वक़्त में पिण तव्हां देश जो नालो रोशन कंदा ऐं अहिड़ी तरह महिनत कंदा रहंदा। तव्हांखे मुंहिंजियूं घणी घणियूं शुभकामनाऊं। महिरबानी साईं, महिरबानी, तव्हांजी घणी घणी महिरबानी। मुंहिंजा प्यारा देशवासियो, हिन वक़्तु मुल्क जे घणनि हिसनि में सख़्तु लू हली रही आहे। गर्मी जे मौसम में पंहिंजो ख़्यालु रखणु लाज़मी आहे। तव्हां घणो पाणी पीअंदा रहो, उस में निकिरो त थोरो ध्यान सां निकिरो ऐं अलॻि अलॻि खातनि जे गाइडलाइंस ते बिल्कुलु अमल कंदा रहो। साथियो, गर्मी जो इलाजु असांजे रंधिणे मां निकिरंदो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त जीअं जीअं गर्मी वधंदी आहे त असांजे खाधे पीते जो सवादु मटिजी वेंदो आहे। मटके जो पाणी, ॾही ऐं कचे अंब खे उॿारण जो कमु शुरू थी वेंदो आहे ऐं असां ॾही शरबतनि जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। तव्हां उत्तर भारत में वेंदा त आम पना मिलंदो जेको गर्मी खां राहत ॾींदो आहे। पंजाब हरियाणा में लस्सी मिलंदी आहे।

पापड़ी गिलास वारी, राजस्थान ए गुजरात में छाछ जेका रोटी से गड हुंदी आहे, बिहार झारखंड ए ओभरी उत्तर प्रदेश में सत्तू जो शरबत जैसा पेट भी भरंदो आहे ए ताकत पण मिलंदी आहे, कोंकण ए गोवा में कोकम शरबत जैके सोनकड़ी चइबो आहे, दखण भारत में पाणकम नीरमोर ए संबारम ए ओडिशा में बेलपन्ना। ये को फकत शरबत कोन आहिनि पर भारत जे अलॻि अलॻि इलाइक़नि जी परंपरा जो हिसो पण आहिनि। इन्हनि मां एक भारत श्रेष्ठ भारत जी झलक मिलंदी आहे। हिकु ॻाल्हि ज़रूर ध्यानु रखंदा त इहे सभई शयूं असांजे रंधिणे मां असांजे खेतनि मां निकितल आहिनि। का वॾी ब्रांडिंग कान्हे पर इन्हनि में पीड़ियुनि जो आज़मूदो आहे ऐं तव्हां गर्मीअ दौरान इन्हनि शरबतनि जो ख़ूब मज़ो माणींदा। दोस्तो, गर्मियुनि जे मौसम में हर घर में अंब जी चर्चा ज़रूर हलंदी आहे। शायदि भारत में को अहिड़ो घर हूंदो जिते अंब जी ॻाल्हि न थींदी हुजे। हर इलाइक़े खे पंहिंजो अलॻि अलॻि अंब, पंहिंजो अलॻि स्वाद ऐं पंहिंजी अलॻि ख़ुशबू आहे। महाराष्ट्र ऐं कोंकण जो हापुस यानी अल्फांसो, गुजरात जो केसर, उत्तर प्रदेश जो दशहरी ऐं मुंहिंजे काशी जो लंगड़ो। लंगड़े अंब जी ख़ासि ॻाल्हि आहे कि पचण खां पोइ बि संदसि रंग घणा भेरा साओ हूंदो आहे। बिहार जा ज़रदालू जिन जी ख़ुशबू परे परे खां सुञाण में अची वेंदी आहे। चौसा मालदा इहो नालो त हर कंहिं ॿुधो हूंदो। ॾखण भारत में ईंदा त बंगनपली, तोतापुरी, नीलम, मलगोआ ऐं बंगाल जो हिमसागर, ओडिशा ऐं आंध्र प्रदेश जो स्वर्ण रेखा, यानी जिते जिते इलाइक़ो मटिजे थो त उते अंब जो नालो, रंग रूप ऐं स्वाद पण मटिजी थो वञे। अंब जी यात्रा हाणे ॻोठनि खां वठी करे आलमी मार्केट ताईं पहुची वई आहे। अॼु मां मन की बात ज़रिए पंहिंजे किसान भाउरनि ऐं भेनरुनि जी तमामु घणी तारीफ़ कंदुसि, छो जो मुल्क जे ज़रई इकोनॉमी में सनन रोल ख़ासि आहे। साथियो, गर्मी जे इन मौसम में स्कूल मां मोकल मिलंदी आहे, पर मां हिकु अहिड़े क्लास जी ॻाल्हि कंदुसि जिते एडमिशन वठी करे तव्हांखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी। तव्हां हिकु अहिड़े स्कूल जी कल्पना कयो जिते ॿार, नौजवान ऐं बुज़ुर्ग बि ईंदा हुजनि, जिते का न फी आहे, न वॾी इमारत ऐं न के क्लासरूम आहिनि। मज़े जी ॻाल्हि आहे त इहा क्लास नदीअ में लॻंदी आहे। साथियो, इहा का कहाणी कोन आहे पर हक़ीक़त आहे। केरलम जे आलुआ में साजी वलाशेरिल हिकु अहिड़ी स्विमिंग क्लब हलाईंदो आहे जंहिं में 15,000 खां बि वधीक माण्हू स्विमिंग सिखी चुका आहिनि। साजी दिव्यांग ॿारनि खे पिण स्विमिंग सेखारी आहे। इन जे पुठियां हिकु कहाणी आहे त कुझु अरसो अवल हिकु ॿेड़ी जे हादसे में घणनि शागिर्दनि जी मौत थी वई। तंहिं सां साजी खे लॻो त जेकॾहिं ॿारनि खे स्विमिंग ईंदी हुजां त घणनि ॿारनि जी ज़िंदगी बची वञा ऐं इतां खां संदसि शुरूआति थी। दोस्तो, संदसि कार्रवाई असांखे उत्साह ॾियारे रही आहे त कंहिं बि वॾी कार्रवाई लाइ वॾा साधन ज़रूरी कोन आहिनि। फ़क़ति मुहकम इरादो हुअणु घुर्जे ऐं लॻातार कोशिश हुअणु घुर्जे, जंहिं सां हज़ारे माण्हुनि जी ज़िंदगीअ में तब्दीली अची थी वञे। मुंहिंजे प्यारे देशवासियो, ताज़ो ई मूंखे यूरोप जे नेदरलैंड वञण जो मौक़ो मिलियो, जिते मूं घणनि मीटिंगुनि में हिसो वरितो ऐं हिकु अहिड़ो वक़्तु आहे जिते मूंखे भारतीयुनि फ़ख्र सां भरे रखियो। नेदरलैंड में हिकु प्रोग्राम में चोला अरसे जे क़दीम टाने जे पटनि खे भारत खे वापसि ॾिनो वियो। हिन प्रोग्राम में नेदरलैंड जो प्रधानमंत्री पिणु मौजूदु हो। इन्हनि टामे जे पटनि ते मूंखे देश विदेश मां लॻातार घणा ई न्यापा मिलिया आहिनि। माण्हू ख़ुशी ज़ाहिर करे रहिया आहिनि, फ़ख्रु पण महसूस करे रहिया आहिनि ऐं दुनिया भर जे तमिल क़ौम में पिण इन लाइ तमामु घणो उत्साह आहे। साथियो, इन्हनि टामे जे पटनि सां मां तव्हांखे अहम ॼाण ॾींदुसि। इन्हनि टामे जे पटनि में 21 वॾियूं ऐं 3 नंढियूं टामे जूं पटियूं आहिनि। तंहिं में मुख्य रूप सां राजा राजेंद्र चोला पहिरें पारां पंहिंजे पिता साहिब राजा राजराम चोला खे हिकु वाइदे खे पूरो करणु शामिल आहे। तंहिं में आइन इमंगलम ॻोठ खे हिकु बौद्धिक विहार खे दान ॾियण बाबति लिखियलु आहे। इन्हनि टामे जे प्लेटनि मां चोला वंश जे हासिलातुनि जो बयान मिले थो। तंहिं सां पतो थो पवे कि चोला हुकूमत जी सामूंडी ताक़त केतिरी न सघारी हुई। ॾखण ओभर एशियाई मुल्कनि सां सनन लाॻापनि जी ॼाण पिण इन्हनि टामे जे पटनि मां मिले थी। चोला सल्तनत जे शाहूकार इतिहास ऐं सकाफ़त ते असांखे तमामु घणो फ़ख्रु आहे। साथियो, भारतीय सरकार इन ॾिस में घणो कमु करे रही आहे। इन ॾिस में ज्ञान भारतम अभियान तहत छत्तीसगढ़ जे मल्हार में हिकु ख़ासि खोजना थी आहे, जिते 3 अलहदा टामे जूं पटियूं मिलियूं आहिनि।

से पांडुवंशी राजवंशी महर्षि बालार्जुन जयकुमार से जुड़े हैं। महाराज चाहना है ये इंस्क्रिप्शन छही या सती सदी जो है यानी कि अज का 1400-1500 साल पुरानी टांगे जो पटिया है तेने ब्राह्मी लिपि ए पाली भाषा में लिखावट लिखल है तेमा उन वक्त के हुकूमत मजहब ए संस्कृति के बारे में अहम जान मिले थी। दोस्तों अस भारतीय में एस्ट्रोनॉमी डा खास शौक रो है असाजे देश में अज भी सभी पुरानी ऑब्जर्वेशन्स हैं जिते अलहदा मैथमेटिकल डिस्कवरीज थी वन नेविगेशन हो पंचांग हो या वरी असाजा त्योहार इन सभी जो रिलेशन आसमान ए तारन से रो है असाजे हर पीढ़ी में एस्ट्रोनॉमी डा शौक रो है अज के नौजवान में इन बाबत घो चाह है। अस देशभर में डिठो है एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तमाम घड़ी मशहूर थी रही हैं वडन वडन शहरन का वठी करे नन्हन नन्हन कस्बन में पण स्कूलन का वठी बागीचन ताई सनन कारवाई दिसण में पई अचन। मुख बेंगलोर जे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जे बारे में जान मिली है जिते ऑब्जर्वेशनल सेशंस थींदा हैं ए इदारे वठन में पण एस्ट्रोनॉमी के मशहूर बनण लाइ घणो ही कम कयो है। खगोल मंडपम नाले टीम 30 कलाकन जो एक इनोवेटिव कोर्स शुरू कयो है। साथियों रात जो तारन के डिसन पेंजो पान में एक अलदा आजमूदो है एस्ट्रो केरला नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप हलेंगे जिते नौजवान टेलीस्कोप ए स्टार मैप्स जो इस्तेमाल कर सीखन है। राजकोट जी बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब गिड़ जे जंगलन का वठी करे कच्छ जे रणपट ताई घणा ही एस्ट्रोनॉमिकल वाकया कराएं। वधवद कदीम इदारो है ज्योति विद्या परिसंस्था एक ऑब्जर्वेशन सहूलियतन से गडोगड किताब लाइब्रेरी ए टेलीस्कोप लाइब्रेरी पिण है। मां ISAAC जो भी जिक्र कंदुस जिते स्टूडेंट लेड नेशनल वाइड नेटवर्क है जेको एस्ट्रोनॉमी ए एस्ट्रोफिजिक्स क्लब्स के पान में जोड़ी है। साथियों पैंजे हॉबी लाए वक्त कढ़ा ए लगातार नो कुछ सिखंदा रहंदा। मां नौजवान के अपील कंदुस तो कें कें एस्ट्रोनॉमी क्लब से जुड़ी वन ए मोकलन में कें प्लैनेटोरियम जो दर्शन जरूर कन। दोस्तों मन की बात प्रोग्राम जेके टीवी ते दिसी रहन तिन के चवंदुस तवा एक वीडियो जरूर दिसंदा। ये वीडियो गुजल दिन में काफी चर्चा में रहो इनमें घणाई मानू तमाम ही सब्र सा ए तमाम ही सावधानी सा एक गंगा डॉल्फिन के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तवा के बुधी हैरत थींदी त इन पूरे कार्रवाई में 13 कलाक लगा ए आखिरकार वह डॉल्फिन बची गई। साथियों इनमें अहम रोल रो भारत के पहरी गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो या गाल उत्तर प्रदेश की है जिते एक गंगा डॉल्फिन नहर में फांसी गई। अड़े वक्त में नमामी गंगे तहत इन एम्बुलेंस खेस सलामती से बाहर कढ़ो संदस जांच कई इलाज कयो ए खेस सलामती से राप्ती नदी में वापस छो इन तरह से एक जिंदगी के वापस का पैंजो घर मिली वो। दोस्तों डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस खास है या एक घुमंदड़ फिरंदड़ अस्पताल जी है जैमें डॉल्फिन के सलामत रखन ऑक्सीजन खास स्ट्रेचर ए खेस बचाने जो घणी सहूलियत हैं जैसे का डॉल्फिन जख्मी थी वही है नहर में फाथल है तो यकदम संदस मदद कर सकती थी। साथियों अस गंगा डॉल्फिन के बचाए करे गंगा के अनेकता के बचाऊ सो भी इंदड़ पीढ़ी लाए। प्यारा देशवासियों तमाम घणन के नदी तलाव या वरी खूह के पानी से घणी यादगिरी होंदियों इन डस में एकड़ी अहम कार्रवाई थी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिते आकाश गुप्ता के पैंजे गोठ के मनोरमा जिंदगी के डिसी करे दुख थो छोजो इते प्लास्टिक ए बो गंदगी फैलल है जैसे उन नंढपण में साफ सुथरो डिठो। गंदगी वधंदी वही त आकाश पैंजे दोस्तन से सफाई करण की शुरुआत कई ए डिसंदे डिसंदे हर रोज 50-60 किलो कचरो नदी में निकरण लगो। आसे आसे नदी बीहर खां साफ थी वही मानू जो इन तरफ ध्यान वो ए मानू पण सफाई बाबत सजाग थी वह। दोस्तों अड़ी एक हिमथाईदड़ कहानी गोवा में आई है जिते बालकृष्ण आर्या जो रिटायर्ड टीचर है तें समाज लाए कुछ कम करण जो सोचो। उन डिठो त मंडी तोलाब इलाके में पानी की गंभीर परेशानी है। बालकृष्णन पाइपलाइन के विछण में अहम रोल अदा कर जैसा घरन घरन ताई पानी पहुंची वो है जेके कुटुंब अग में पानी लाए रोज मेहनत कंदा कश्मकश कंदा तिनजे लाए या एक वड़ी राहत आए। साथियों गुजल महीने मुखे एक अलहदा आजमू तो थो जो मां शेयर कर रहा है। तमिलनाडु जी नगर कोयल में मुझी मुलाकात एक टीचर सा थी जैसा 3 दहाका अग में पिण

मजी मुलाकात थी हुई। तंहिंजो नालो आहे गिरिजा अम्मा, सा पढ़ा स्कूल हलाईंदी आहे। तंहिंमें मुख्य आहे चेन्नई जो जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय। संदसि देशभक्ति जी भावना हर कंहिं भारतवासी खे हिमथाईंदी। हुन पंहिंजे स्कूल जे शागिर्दनि खे बहादुर सिपाहियुनि लाइ रोज़ हिकु रुपयो दान ॾियण जो सॾु ॾिनो, जंहिं सां 40 लख रुपया कठा थिया ऐं चेक मूंखे सौंपियो वियो। मूं ॾिठो त भारत माता लाइ खेसि तमामु घणी श्रद्धा आहे। गुज़िरियल साल चेन्नई जे पहिरें हिंदू विद्यालय पंहिंजा 50 साल पूरा कया। देश जे तइलीम ऐं सकाफ़त खे ज़िंदा रखण में इन स्कूल सां जुड़ियल मां सभिनी शख़्सनि जी साराह थो कयां ऐं ख़ासि करे शागिर्दनि जी। दोस्तो, भारत जे हर हिकु ॻोठ ऐं शहर में कुझ न कुझ अहिड़ो अलॻा थी रहियो आहे जंहिं सां असांखे हिमत मिली रही आहे। घणाई भेरा अहिड़ियुनि कारवाइयुनि जी चर्चा कोन थींदी आहे, पर जॾहिं असांखे ॼाण मिलंदी आहे त अक़ीदो मज़बूत थींदो आहे त भारत देशवासियुनि जे ताक़त सां अॻिते वधी रहियो आहे। मां तव्हांखे अपील कंदुसि त तव्हां पंहिंजे आसे पासे अहिड़ियुनि कारवाइयुनि खे ॾिसंदा ऐं इन्हनि जी तारीफ़ कंदा ऐं कंहिं न कंहिं कार्रवाई में तव्हां पिण शुमार थी वेंदा। ईंदड़ महीने ॿियनि हिमथाईंदड़ कहाणियुनि सां मन की बात में तव्हां सां गॾिजाणी थींदी। तव्हांजी घणी घणी महिरबानी। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जी सिंधी सरस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से।
1: हींअर पेश आहिन खास खास खबरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नई दिल्ली में म्यांमार जे सदर यू मिन आंग ह्वाइंग सां गालियूं कंदा। डहन सूबन मां राज्यसभा जूं 24 सीटू भरण लाए 2 साल चूंड जी जाण यानी नोटिफिकेशन अज जारी कई वेंदी। म्यांमार में खाड़ियों जे बारूदी सामान जे गोदाम में धमाके सबब 45 खां वधीक माण्हू मारिजी विया। चैम्पियंस लीग में आर्सनल खिलाफ पेरिस सेंट जर्मन की जीत का पोए पुलिस से थियल मारामारी बैद फ्रांस में 100 खन फुटबॉल प्रेमी गिरफ्तार कया व्या। क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स के 5 विकेटन सा शिकस्त दई आईपीएल जो खिताब पाणवट बरकरार रख्यो।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 वॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रही। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीता पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंगन तेग चेंगलिंग मठ में अहर्त सारिपुत और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मुरली वेंकटरामन ने पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सिहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। संगीतिका कार्यक्रम में आइए सुनते हैं परिणीति नरोला से कुछ भजन। सबसे पहले सुनिए कबीरदास जी की ये रचना। तो चलिए सुनते हैं ये रचना परिणीता नरोला की आवाज में।

कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप सुन रहे थे परिणीता नरोला की आवाज में ये भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका है जब हम कल की थकान को अलविदा कहकर आज के सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। और वही हम सुबह सुबह उठकर अपने अपने कामों पे और नई उम्मीद के साथ नया कुछ करने की ठान के हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं।

यीशुदास की आवाज में भी आप सुन रहे थे फिल्म अय्याश का ये गीत। दोस्तों, सूरज को उगने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए और आपको चमकने के लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। जी हाँ, अपने पर विश्वास रखें और खूब मेहनत करें।

दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं अपने आप को, और प्रगति करने के लिए हम क्या क्या करते हैं।

तो दोस्तों आइए इन दिल की उलझनों को संगीत में घोल देते हैं और इस नए दिन की शुरुआत करते हैं।

0: दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भाई बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध

0: डॉक्टर सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पित्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए

0: के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस्त आएंगे जो एज के हिसाब से।
0: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसुर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड

0: पॉइंट पर 10 डेबिट का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ है मनीष शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। यह खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिन्दुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिन्दुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत में 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ग्रैब वुमेन का संघ की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे जमानिकार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर वू मिंट के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी गुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से एआईएडीएमके मेंबर पार्लियामेंट सीवी शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के बीजेडी मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। एक महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामेगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़राअत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़राअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़राअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुछ दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हवा बाजारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौकों की मुश्तरका पैदावार समेत सनअती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुलकाहिल खत्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुतहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज گزشتہ 12 سال میں کلیدی شعبوں میں کیے گئے حکومت کے اقدامات پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے. آج ہم کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں.
1: نریندر مودی حکومت نے گزشتہ 12 سال میں کسانوں کی بہبود اور ان کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے متعدد پہل قدمیوں کا آغاز کیا ہے. ان اقدامات میں سب سے نمایاں پی ایم کسان اسکیم کا آغاز رہا ہے جو ملک میں فلاح و بہبود سے متعلق سب سے بڑی پہلوں میں سے ایک ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایودھیا کے کسان دنیش کمار جیسوال نے کہا کہ کسان سمان ندھی یوجنا کسانوں کے لیے بے حد سود مند ہے.
3: پردھان منتری نریندر مودی دوارا چلائی جا رہی کسان سمان ندھی یوجنا کا مجھے بھرپور لابھ مل رہا ہے. اس سے مجھے کافی سہایتا ملتی ہے. ہم سمے پر اپنے کھاد اور بیج کی خریداری کر لیتے ہیں.
1: فصل بیمہ یوجنا سے تقریباً 23 کروڑ کسانوں 1,92,000 کروڑ روپے مالیت کے بیمہ دعووں سے مستفید ہوئے ہیں. پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا کے چھوٹے اور حاصل برادر کسانوں کو 3,000 روپے کی یقینی ماہانہ پینشن مل رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ایک رہائشی نے کہا کہ مذکورہ اسکیم سے کسانوں کو روزگار میں مدد ملے گی.
4: مان دھن یوجنا چل رہی ہے, بہت ہی لابھدایک ہے. پردھان منتری کی تو جتنی بھی یوجنائیں رہی ہیں وہ ساری بڑی مہتوپورن رہی ہیں, کسان کے ہت میں رہی ہیں. اور یہ بڑھاپے میں جو 3,000 روپے کی اسکیم ملیں گے, یہ جو بہت ہی بڑھیا ٹائم کی جو ایج کے حساب سے
1: کم سے کم امدادی قیمت ایم ایس پی کسانوں کے لیے لائف لائن بن گئی ہے, کیونکہ حکومت نے ایم ایس پی کو پیداوار سے متعلق اخراجات کا 1.5 گنا کر دیا ہے. آکاشوانی نیوز سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: مشہور و معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا کل ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا. وہ 89 برس کی تھی. انہیں 1950 سے 1970 کی لڑائی کے درمیان, جسے فلم موسیقی کا سنہرا دور کہا جاتا ہے, ہندی, مراٹھی اور بہت سی دیگر بھارتی زبانوں میں ان کی گلوکاری کے سبب جانا جاتا ہے. سمن کلیان پور کے بارے میں کچھ تفصیل.
2: سمن کلیان پور 28 جنوری 1937 کو بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھی. انہوں نے ہندی فلموں میں پہلی بار 1950 کی دہائی کے وسط میں گانا گایا تھا. ان کی آواز لتا منگیشکر کی آواز سے کافی ملتی جلتی تھی. انہوں نے اپنی بے حد خوبصورت آواز میں دل کو چھو لینے کے انداز میں تاریخ ساز موسیقاروں, گلوکاروں, خاص طور پر محمد رفیع کے ساتھ سینکڑوں گانے گائے. ان کے مقبول ترین گانوں میں سے کچھ گانے یہ ہیں.

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुमित्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वह रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्लू फोर्ट कासिल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्लू फोर्ट रिज और वादी अल सऊकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बावकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नवानिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers

0: Bengaluru, back-to-back winners of the Tata IPL.
1: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वाशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनन हैदर। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह, इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक जेरे आब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
3: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउ लॉन्ग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 14 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। नोटिस मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक बार तरीन इस मुहिम का मकसद दुनियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपने काबीना में शामिल करेंगे। गुरुकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज, डीएलएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज से राग गुजरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं अख्तर हसन।

Got it.

I'm not going to be able to do that.

मीडियम वेव तीन सौ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मार्गेस्ट। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर ही आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर 9:30 होने को है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी ते महक।

0: है सुबह का ही। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें 9:50 पर नशर होंगी और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में सुनिएगा गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे एक ड्रामा जिसका उन्वान है इंसाफ। 11 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद और 11:30 पर रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी। दिन में 12 बजे खबरें नशर होंगी। 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरान प्रोग्राम 12:30 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। 12:45 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में। आलमी खबरें दिन में 1 बजे नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही। हम्द बारी ताला और नाते रसूल पेश कर रहे हैं डॉक्टर ताबिश मेहदी।
1: हम्द पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाइए। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा। तुसा नहीं है कोई, यकता मकाम तेरा। इंसान जिन फरिश्ते, दरिया पहाड़ जंगल। इंसान जिन फरिश्ते, दरिया पहाड़ जंगल। सब अपनी अपनी लय में लेते हैं नाम तेरा। इंसान जिन फरिश्ते, दरिया पहाड़ जंगल। सब अपनी अपनी लय में लेते हैं नाम तेरा। हर बर्ग हर शजर में पोशीदा तेरी कुदरत। हर बर्ग हर शजर में पोशीदा तेरी कुदरत। सारे जहान में है जारी निजाम तेरा। हर बर्ग हर शजर में पोशीदा तेरी कुदरत। सारे जहान में है जारी निजाम तेरा। बन जाए चाहे जितना, बौना ही वो रहेगा। बढ़ जाए चाहे जितना, बौना ही वो रहेगा। किस तरह देख पाए इंसान बाम तेरा। बढ़ जाए चाहे जितना, बौना ही वो रहेगा। किस तरह देख पाए इंसान बाम तेरा। मुमकिन नहीं है खामी कारीगरी में तेरी। मुमकिन नहीं है खामी कारीगरी में तेरी। कुदरत तेरी कामिल, हर काम ताम तेरा। मुमकिन नहीं है खामी कारीगरी में तेरी। कुदरत तेरी कामिल, हर काम ताम तेरा। तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। शेर मुलाहजा फरमाइए कि तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। जेरे मुतालिया है जब से कलाम तेरा। तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। जेरे मुतालिया है जब से कलाम तेरा। मुस्लिम हूँ या के हिंदू, ईसाई हों के सिख हों। मुस्लिम हो या के हिंदू, ईसाई हो के सिख हो। दिल में बशर बशर के है एहतराम तेरा। मुस्लिम हो या के हिंदू, ईसाई हो के सिख हो। दिल में बशर बशर के है एहतराम तेरा। फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में। अर्ज किया है कि फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में। जिसने भी पी लिया है एक बार जाम तेरा। फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में। जिसने भी पी लिया है एक बार जाम तेरा। आखिरी शेर है हम्द का कि हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही। हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही। पहुंचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही। पहुंचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा। तुझसा नहीं है कोई, यकता मकाम तेरा। अब नाते पाक के कुछ शेर पेश करता हूँ, मतलब मुलाहजा फरमाइए।
2: रोशन रोशन आपकी सीरत, उजला उजला आपका।

किरत उजला उजला आपका नाम रोशन रोशन आपकी सीरत उजला।

है उसके जिसने पुकारा आपका नाम। संग जनों को राहत बख्शी, दुश्मन जा को दी है अमां।

मुझको जब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब फैजान हुआ, मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब

0: आपका नाम, आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए कि सारे ही असहाबे पैगंबर रुश्दो हुदा के तारे हैं, सारे ही असहाबे पैगंबर रुश्दो हुदा के तारे हैं, उनसे बढ़ी है दीन की अजमत, उनसे चमका आपका नाम।
1: हम दोबारा ताला और नाते रसूल पेश कर रहे थे डॉक्टर ताबिश मेहदी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
2: जी हाँ दोस्तों, और अब जानते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जो बना देती हैं आज की इस तारीख यानी 1 जून को बेहद खास। 2005 में यही थी वो तारीख 1 जून जब अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की। 2006 में चीन के दक्षिण पूर्वी जियांगशी प्रांत के शांगीपन गांव में आदि मानव का पदचिन्ह मिला। और 2010 में यही थी वो तारीख जब अक्षरधाम आतंकी हमले के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। विशेष कोर्ट अदालत ने 2006 में इस मामले में 3 आरोपियों को फांसी, 1 को उम्र कैद, 1 को 10 वर्षों की सजा और 1 को 5 साल की सजा सुनाई थी। और दोस्तों आइए बात करते हैं, याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
3: So where would we begin with?
2: सबसे पहले हम याद कर रहे हैं आज पुण्यतिथि है नीलम संजीवा रेड्डी साहब की जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीवा रेड्डी की छवि एक कवि, अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में रही। इनका परिवार संभ्रांत और शिव भक्त था। इनके पिता का नाम था नीलम चिनप्पा रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के काफी पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथी थे। 25 जुलाई 1982 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त हुए और फिर लगभग 14 वर्ष बाद 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया। एक उपलब्धियों भरा देश सेवा से परिपूर्ण जीवन उन्होंने जिया और उन्हें हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि। और दोस्तों आज है पुण्यतिथि ख्वाजा अहमद अब्बास की। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनको हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत कम गिने चुने लेखकों में से एक थे जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम ऐसा दिया जो आज भी हम याद करते हैं। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया। बॉम्बे क्रॉनिकल में लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे। इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्तंभों में गिना जाता है और ये 1941 से 1986 तक लगातार छपा। के अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्य भी थे। शहर और सपना के अलावा अब्बास साहब की 2 फिल्मों सात हिंदुस्तानी और 2 बूंद पानी ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दस्त पुरस्कार जीते। नीचा नगर 1946 में जो आई थी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जुटाने में कामयाब रही और इसने कान फिल्म समारोह में पामेदी ओर पुरस्कार प्राप्त किया। और दूसरी ओर परदेसी भी इसी पुरस्कार के लिए नामित होने में सफल रही। और इन सब पुरस्कारों के अलावा 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और उनकी एक बहुत बड़ी देन ये मानी जाती है फिल्म जगत में कि सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन को उन्होंने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में एक भूमिका दी जो उनकी एक यादगार भूमिका बनी। तो सुनते हैं सात हिंदुस्तानी से ये गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, आज है जन्मदिन कर्णम मल्लेश्वरी का, जो भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं हमारी। अपने मजबूत हौसले और दिलेर कारनामों से कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे की शान को चार चांद लगाए। मंच कोई भी हो, लेकिन जीत हर कीमत पर, ऐसा इरादा रखने वाली इस वेटलिफ्टर की जिंदगी संघर्ष और कामयाबी की एक अद्भुत कहानी रही है। सन 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा और 1995 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से और 1997 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और आज है जयंती प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त की, जिनका असल में नाम था फातिमा रशीद। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में शुमार होती हैं। नरगिस मशहूर गायिका जद्दनबाई की पुत्री थी। कला उन्हें विरासत में मिली और सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्म तलाश हक से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने लगभग 2 दशक लंबे फिल्मी सफर में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिकाएं निभाई और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 57 में प्रदर्शित महबूब खान की मदर इंडिया उनकी सबसे चर्चित फिल्म तो बेशक रही ही रही। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था और उनकी जो खास फिल्में हैं उनमें मदर इंडिया के अलावा अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेसी और चोरी चोरी है। कई प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिले, जिन्हें हम याद करें तो फिल्म फेयर के अलावा फिल्म रात और दिन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की। सदर ऊ मिन आउ लाइंग ने म्यांमार भारत तिजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सती वफ्द भी है, जिसमें बहुत से काबिनी वुजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जहां ऊ मिन का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है, वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की वाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरा व वाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात

के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवगौड़ा, मरकजी वजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कोरिन, नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उमरकान में शामिल हैं, जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से एआईएडीएमके मेंबर पार्लियामेंट सीवी शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थीं। ओडिशा के बीजेडी मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। एक महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद जरई जमीन का तहफ्फुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़राअत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़राअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, जरई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केन्द्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनक्किद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीनी वजरा के वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौके की मुश्तरका पैदावार समेत सरहदी इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मिसाली क्यादत में गुजश्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रोनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतादिद पहलुओं का आगाज और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदाम पर आज हम किसानों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतादिद पहलकदमियों का आगाज किया है। इन इकदाम में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिया बरदार किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। मशहूर और मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थीं। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्मी मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलूकारी के सबब जाना जाता है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कैसल

0: बहुत पुरानी बात है, शिमाली हिंदुस्तान के वस्त में एक छोटी सी रियासत नसीराबाद थी, जिसके अमीर खान वजाहत हुसैन थे। दरअसल ये रियासत नहीं, एक तालुकदारी या जागीर थी। इसकी हुदूद सिर्फ एक छोटे से शहर नसीराबाद और आसपास के देहात का अहाता करती थी। इसकी कोई फौज नहीं थी, सिर्फ एक थाना था और इसका कोतवाल अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ रियासत में अमन कायम रखता था। इसी के सिपाही नसीराबाद के चार बैरूनी पहाटकों की हिफाजत करते थे। इस शहर में सिर्फ दो बड़ी इमारतें थीं, एक अमीर की अपनी रिहायशगाह जो महल कहलाती थी और जिसमें वो अपने दो सलाहकारों के साथ लोगों की शिकायत सुनते थे, और दूसरी शहर का मुसाफिरखाना जिसमें बाहर से आने वाले लोग ठहरते थे। ये एक खुशहाल जमींदार खुदा बख्श की जाती मिल्कियत थी। खाना खुदा बख्श की बेहद हसीन नौजवान लड़की जैनब और उसकी नहायत तरहदार और चुलबुली खादमा और राजदार जमाल आरा बनाती और खिलाती थी। नसीराबाद में औरतें पर्दा नहीं करती थीं। ये एक कमजोर रियासत थी। इस बेफौज रियासत पर किसी ने हमला नहीं किया था। नसीराबाद के आदमी लंबे कद और मजबूत जिस्म के होते थे, इसलिए आसपास की रियासतें यहाँ के नौजवानों को अपनी फौज में भर्ती करने के लिए अमीर से इजाजत लेकर अपने अहलकारों को भेजती रहती थीं। दौलताबाद के नवाब अमीर बख्श के दो फौजी असगर अली और सलीम नसीराबाद पहुंचते हैं और वाली रियासत खान वजाहत हुसैन से आदमियों को अपनी फौज में भर्ती करने की इजाजत हासिल कर लेते हैं।
1: लीजिए साहब, ये आ गया खुदा बख्श का मुसाफिर खाना। इसी से मिला हुआ है ये अस्तबल। हुजूर, घोड़ों को यहीं बांध देते हैं।
2: हाँ, ठीक है।
1: अब ठीक है, आइए हुजूर, अब अंदर चलते हैं और मुसाफिर खाने के आखिर के दो कमरे ले लेते हैं, वो ठंडे भी हैं और वहां तखलिया भी रहता है।
2: ठीक है, मगर अंदर जाने से पहले जरा मेरी बात सुन लो।
1: जी बोलिए।
2: सलीम, इस काम के लिए मैं खुद ना भी आता तो चलता, मैं किसी और अफसर को भिजवा सकता था।
1: जी,
2: मगर फिर भी मैं खुद आया। क्यों?
1: क्यों हुजूर?
2: मैंने इस मुसाफिर खाने के मालिक खुदा बख्श की बेटी जैनब के हुस्न शबाब के इतने चर्चे सुने हैं कि मैं तो उसे देखे बगैर ही उस पर फरेश्ता हो गया हूँ। तरह तरह के लजीज खाने अपने हाथ से तैयार करती है।
1: जी हुजूर।
2: और अगरचे खुद बेटी नहीं है, मगर साकी के फराइज और सलीके से भी वाकिफ है।

0: राजा साहब कि यहां हम नौजवानों को भर्ती करें या ना करें, तुम्हारा एक काम यह होगा कि किसी तरह हमारे लिए ज़ैनब को शीशे में उतारो।
1: जी।
0: और इस काम में कोई कसर ना रहे। अरे तुम तो यहां एक बार पहले भी आ चुके हो।
1: जी जनाब, जी मैं पहले आ चुका हूं। और हुजूर, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता था कि ज़ैनब की खादिमा और राजदार जमाल आरा भी बड़ी कताला है।
0: अच्छा।
1: मेरी भी तबीयत उस पर है। पिछली मर्तबा उसे रहम करने की बड़ी कोशिश की मैंने, मगर वो आनाकानी कर गई। किस्मत में जावरी की तो आपके तो कामयाबी नसीब हो ही जाएगी हुजूर। और जमाल आरा के जरिए मैं फिर ज़ैनब के दिल में भी आपके लिए जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगा हुजूर। इस मुसाफिर खाने की सारी आमदनी इन दो हसीनाओं की वजह से ही तो है। अब आप यहाँ का रुक गए, आइए अंदर चलते हैं।
0: चल।
1: आइए।

0: मियां सलीम
1: जी,
0: हमें इस मुसाफिर खाने में ठहरे हुए आज तीसरा दिन है
1: जी। वो तो है,
0: मगर जैनब के दीदार सिर्फ दो मरतबा
1: और वो भी दूर से ही नसीब हुए।
0: वल्लाह हुस्न शबाब की क्या होशरुबा तस्वीर है
1: जी।
0: सलीम मियां, अरे कुछ करो ना। अरे मैं तो उससे बात करने के मौके को हासिल करने की नीयत से तुम्हारे साथ भर्ती के लिए भी नहीं गया, मगर वो तो इसे फटकी में रही। और एक दो बार खुद उसकी तरफ गया तो उसे एक नौजवान से महवे गुफ्तगू पाया, तब से दिल पर छुरियां सी चल रही है। खैर तुम ये बताओ कि कल और आज तुमने कितने आदमी भर्ती कर लिए
1: जी? दो कल और दो तीन आज, यानी कुल पांच। सबके नाम पते रजिस्टर में नोट कर लिए हैं जनाब, और उनके अंगूठे भी लगवा लिए हैं, और बाकी के पांच वो भी दो तीन दिन में भर्ती कर लेंगे।
0: और इन जवानों को लेने के लिए हमारे सिपाही कब आ रहे हैं?
1: उन्हें तो हुजूर इतवार को आने को कहा था, अभी पूरे चार दिन बाकी हैं, और वापस जाना तो वैसे भी हमारे हाथ में है ना। और हाँ जनाब, आज खुदा बख्श भी कुछ सामान खरीदने दो तीन घंटे के लिए बाहर जा रहा है।
0: अच्छा,
1: सुनहरी मौका है हुजूर जैनब को शीशे में उतारने का। और वैसे आज बंदा भी आज जमाल आरा से अपनी किस्मत आजमाई करेगा।
0: अच्छा, अरे ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। बड़े सलीम, मैं देख रहा हूँ कि एक हसीन और बुलंद कामत नौजवान हर रोज यहाँ आता है, और जैनब उससे हंस हंस कर बात करती है। कुछ जानते हो कि वो कौन है और ये क्या नाजरा है?
1: वो शौकत है हुजूर, और वो लकड़ी के काम में माहिर है। कई बरसों से जैनब और उसका चक्कर चल रहा है।
0: क्या?
1: वैसे खुदा बख्श ने भी इस मामले में आंखें मूंद रखी हैं। जैनब उसे कुछ मरम्मत का काम देती रहती है, और इस बहाने शौकत मुसाफिर खाने में आता जाता रहता है।
0: अरे ये तो तुमने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हम ठहरे अधेर उम्र के आदमी, अब हमारी दाल उस नौजवान के आगे क्या गलेगी? तुम शौकत को भर्ती करके दौलताबाद करने भिजवा देते?
1: मैंने बात की थी हुजूर, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। तो जबरदस्ती की तो मामला बिगड़ जाएगा।
0: तुम जाकर अपने जमालारा से मिलो, और जैनब को कहना कि हमने एक गिलास शरबते अंगूरी मांगा है
1: जी।
0: जमालारा से कहना कि जैनब को भेजे
1: जी। जैनब भी आएगी जनाब, मगर आप जरा तैयार वैयार तो हो जाएं। अरे कपड़ों पर इत्र वित्र लगा लें। कसम खुदा की आप 25-30 से ज्यादा थोड़े ही लगते हैं।

0: अरे दी जमाला रा,
1: अरे जरा इधर तो आओ। जाने मन पान बना रही हो तो एक गिलोरी अपने इस गुलाम के लिए भी ले आओ।
2: ये लीजिए पान।
1: जरा ये।

0: मगर जनाब ये तो बताइए कि आपको यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं
1: जी।
0: तो फिर मेरे गुलाम कैसे हो गए? बड़े तिल फेंक मालूम होते हैं आप।
1: अरे ऐसा ना कहो जमालारा, मेरी तुम्हारी पुरानी जनाजाई है, 2 महीने पहले जो आया था। अरे उस वक्त कितना तड़पाया था तुमने।
0: सिपाही की मोहब्बत को क्या एतबार, आज यहाँ तो कल कहीं और।
1: तुम सही को ऐसा ना पाओगी। अरे तुमने अपने हाथ का हमें पान खिलाया मगर हमने नजराना तो दिया ही नहीं। लो ये शर्फी संभालो।
0: नहीं दीजिए।
1: नहीं नहीं रख लो रख लो। अरे इन शर्फियों को तुम्हारे लिए ही तो लाए हैं, इसकी कोई कमी थोड़े ही है। सरकार से किसी और काम के लिए मिलती है और हम अपने काम पे खर्च कर देते हैं। अरे ये क्या बात, तुम्हारी मालकिन ज़ैनब नजर नहीं आ रही, क्या वो भी खुदा बख्श के साथ गई हैं?
0: जी नहीं, वो सामने वाले कमरे में बैठी हैं।
1: अच्छा?
0: और अपनी संतुष्टि को देखे जा रही हैं, जो उसने अपने महबूब शौकत से बनवाई थी। अपनी खिड़की से उसकी राह भी देख रही हैं। संतुष्टि को मरम्मत के लिए देंगी, 8 बार पहले इसकी मरम्मत हो चुकी है।
1: मगर जमाल आ रहा, कहाँ वो हुस्न और शबाब की पुतली ज़ैनब और कहाँ वो 2 काड़ी का ये शौकत है? अरे ज़ैनब तो किसी भी हवेली की जीनत हो सकती है। हमारे अफसर अजगर अली साहब वो भी लट्टू हो गए हैं उस पर।
0: ए मिया कुछ तो सोच समझ कर बोलो, कहाँ वो 50 से ऊपर का बूढ़ा और कहाँ ये कच्ची कली। क्या तुम्हारे अफसर ने शादी नहीं कराई? ये बीवी जन्नत से धार गई या इधर उधर मुंह मारने की आदत है तुम्हारे साहब की?
1: अरे जमाल आ रहा, कुंवारे हैं कुंवारे वो, समझी? और ऐसी बड़ी उम्र भी नहीं है उनकी। अरे मुश्किल से यही होंगे कोई 40 के।
0: 40 के
1: और क्या, और मर्द की कोई उम्र देखी जाती है? तुम साहब से बात तो करके देखो। और हाँ, अरे कहाँ गई? अरे अरे हाँ ये रही, उन्होंने भी एक अशर्फी भिजवाई है तुम्हारे लिए।
0: अशर्फी तो खैर मैं रख लेती हूँ, मगर उड़ती चिड़िया को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और फिर वो तो शौकत की मोहब्बत में दीवानी है।
1: अरे तुम कोशिश तो करो और हमारे लिए क्या हुक्म है जमाल आरा। आज ही कोई अगर मुलाकात की सूरत निकाल लो तो रहे नसीब।
0: सोचूंगी मगर बहुत मुश्किल लगता है। आशिक हो तो सब्र करना भी सीखो, सब्र का फल मीठा होता है।
1: अरे हाँ सब्र का फल मीठा होता है। जरा ज़ैनब से कहना 1 गिलास अंगूर का शरबत अजगर अली साहब को दे आए, उन्होंने मंगवाया है, तुम ना लाना उसी को भेज देना।
0: अच्छा।
1: है?

0: असगर अली साहब, अंगूर का शरबत जो आपने मंगवाया था।
1: जैनब, मैं तुम्हारा शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूं कि तुमने इस नाचीज को अपने दीदार से नवाजा।
0: जी,
1: मैंने तो दरअसल जामे अंगूर ही मंगवाया था। मुझे सलीम ने बताया कि तुम्हारे मुसाफिर खाने में शराब नहीं मिलती। खैर, तुम्हारे हाथों का ये शरबत अंगूर मेरे लिए तो जामे अंगूरी ही है। फिर तुम तो सनातन जामे अंगूरी हो। अगर तुम्हारी कुछ नजरें इल्तफात हमारे तरफ भी हो जाए तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। कसम खुदा की, तुम जैसी हसीन औरत हमने इससे पहले नहीं देखी।
0: पहले एक गिलास तो पकड़िए, आपका जिक्र मुझसे जमाल आरा ने भी किया था, मगर मैं तो पहले ही से असीरे मोहब्बत हूँ और एक नौजवान को कब से दिल दिए बैठी हूँ।
1: क्या तुम्हारा मतलब उस लड़के शौकत से है? अरे कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, अरे उसका और मेरा क्या मुकाबला। तुम्हारा जैसा नायाब मोती और गधाकर की झोली में, अरे क्या तुम्हें अपने बेपनाह हुस्न का अंदाजा नहीं?
0: मोहब्बत में ये सब बातें बेमानी है, इश्क तो अंधा होता है। मेरा ख्याल दिल से निकाल दीजिए।
1: अब खुदा कुछ लम्हों के लिए हमारे पास बैठ जाओ, तुम्हें जीवन का देख तो दे।
0: ये मुमकिन नहीं है, खुदा हाफिज।
2: ज़ैनब अभी आपके कमरे से निकली है, कुछ बात बनी।
1: सलीम।
2: हाँ बोलिए।
1: ये साख्ता यूं दाम में नहीं आएगी।
2: हैं?
1: हमें उस शौकत को रास्ते से हटाना होगा।
2: अरे तो आपकी इजाजत हो तो उसे अभी भिजवा देते हैं जबरदस्ती भर्ती करके।
1: नहीं, मामला बिगड़ जाएगा और शिकायत अमीर तक पहुंच जाएगी। मैंने एक तरकीब सोच ली है।
2: बोलिए।
1: ये बताओ कि हमारे सिपाही नए भर्ती किए हुए जवानों को ले जाने के लिए कब आ रहे हैं?
2: वो परसों आएंगे और शाम को ही लौट जाएंगे। मैं और आप तो मजीद ठहर सकते हैं, मगर अपनी तरकीब तो बताइए।
1: अरे नहीं, तुम वो जवान आया कि मोहब्बत में गिरफ्तार, और तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम जाकर जैनब और जवान आरा से कहकर आओ कि शौकत आए तो हमारे पास नहीं थे, हमें कुछ काम करवाना है।
2: जी, अच्छी बात है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ।

0: जनाब, आपने मुझे बुलवाया?
1: हाँ, मियां शौकत, सुना है तुम बहुत उम्दा कारीगर हो।
0: शुक्रिया।
1: ये जो संदूक जी तुम लिए हो, ये तुम्हारी आला कारीगरी की शाहिद है। वही हमने एक 6.5 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा संदूक बनवाना है, जिसमें ताला भी लगा हो।
0: जी।
1: उम्दा लकड़ी का, मजबूत होना चाहिए और कल ही चाहिए। जो दाम होंगे वो अभी पेशगी मिल जाएंगे।
0: जनाब कल तो नहीं, मगर परसों दोपहर तक पहुंचा दूंगा। हाँ, एक अशर्फी का खर्चा आएगा।
1: एक नहीं, हम तुम्हें 2 अशर्फी देते हैं। ये लो, इसी में तुम्हारी उजरत भी आ गई। संदूक पर काला रोगन कर देना।
0: बेहतर जनाब।

0: शाम होने वाली है, मगर शौकत संदूक लेकर नहीं आया। हमारे सिपाहियों की क्या खबर है?
1: वो तो आ गए जनाब, और मुसाफिर खाने के सामने खड़े हैं, क्योंकि संदूक अंदर लाने में उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी ना जनाब। और शौकत भी आता ही होगा।
2: हुजूर, जमाल आरा सलाम अर्ज करती है।
1: जमाल आरा,
2: दरवाजा पूरा खोल दीजिए, शौकत और आपके सिपाही आपका संदूक ला रहे हैं। मैं चलती हूँ।
0: हाँ ले आओ ले आओ। हाँ संदूक तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत उम्दा बना है। हाँ यही बीच में रख दो, ताला भी ठीक लगा है। ताला खोलकर ये चाबियां मुझे दे दो।
3: ये लीजिए चाबियां, और ये आप अंदर से भी देख लीजिए।
0: खूब, भी बिल्कुल सूख गया है, अब हम इसमें अपना सामान रख सकते हैं।
3: जी हाँ।
0: मगर शौकत मियां एक गलती कर गए।
3: गलती?
0: अरे भाई, हमने 6.5 फुट लंबा बनवाया था, मगर ये तो 5 फुट लंबा ही लगता है। हाँ चौड़ाई ठीक है।
3: नहीं नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता, ये 6.5 फुट ही लंबा है। मैं फीता नहीं लाया, वरना नाप कर दिखा देता।
0: शौकत मियां मेरी आंखों में धूल मत झोंको। अरे फौज में ऐसे काम कराते हुए उम्र गुजर गई है, तुमसे गलती से ये 5 फुट लंबा बन गया है, और तुम ख्वामखा अपनी बात पर अड़े हुए हो। इस कमरे में 6 आदमी और भी खड़े हुए हैं,
3: क्या
0: किसी से भी पूछ सकते हो। सलीम
4: जी, जी
0: तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: जी मुझे तो ये 5 फुट का भी नहीं लगता।
3: क्या कहा?
0: शौकत इसे वापस ले जाओ, और कल दोपहर तक इसकी लंबाई पूरी करके ले आओ।
3: हाँ मगर मगर जनाब, इसकी लंबाई बिल्कुल सही है, कहीं तो मैं हाथ से नाप कर आपकी तसल्ली कर दूं।
0: भाई तुम हो बहुत जिद्दी, कहीं हाथों से भी लंबाई नपती? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कितना कद है?
3: पूरा 6 फुट।
0: तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या मियां, इसमें लेटकर दिखा दो। अगर तुम्हारे लेटने के बाद इसमें 2-3 इंच जगह भी बच गई तो हम संदूक रख लेंगे।
3: ठीक है लीजिए, मैं अभी इसमें लेटकर आपको दिखा देता हूँ।
0: ठीक, बंद कर दो, बंद कर दो।

0: हुजूर, आपने तो शौकत को संदूक में बंद करवाकर ताला भी लगवा दिया। हाँ। लेकिन मैं समझ गया हुजूर।
1: समझ गए तो ठीक है। अब ऐसा करना, मोटी चीर और हथौड़े लेकर ढक्कन में हवा के लिए चार पांच सुराख कर देना।
2: बहुत अच्छा,
1: बढ़ने मर जाएगा
2: जी।
1: अब मेरी पूरी बात सुनो, भर्ती किए हुए आदमियों को भी इकट्ठा करो और अपने फौजियों को कहो कि आज रात को ही भर्ती किए हुए आदमियों और इस संदूक को लेकर दौलताबाद पहुंच जाए
2: जी।
1: और पहुंचते ही इस आशिक यानी शौकत को कैदखाने में डाल दें
2: जी। बहुत अच्छा,
1: वहां आकर मैं देख लूंगा।
2: जिस
1: सिपाही संदूक को उठाकर ले जाए और अस्तबल में महफूज रख लें, मैं और तुम दोनों कुछ दिन और ठहरकर अपनी किस्मत आजमाई करके चलेंगे।
2: और इनकी राहदारी साहब,
1: अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद इनके साथ फाटक तक जाना। रात का वक्त होगा और पहरेदार शराब में धुत सोया होगा, या जागा हो तो एक अशर्फी उसके हाथ पर रख देना। लो, अब जल्दी से सारे काम करो। ये लो संदूक की चाबियां, सिपाहियों को फाटक पर दे देना
2: जी।
3: जमालारा, आज पूरे दो दिन हो गए हैं, मेरे शौकत का कुछ पता नहीं कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। उसके घर वाले भी बड़े परेशान हैं और कई दफा यहाँ भी आ चुके हैं। शहर का चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा। जमालारा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती।
4: सिमरत दीदी, क्यों जी हल्का ना करो, उसको कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो इस मुल्ला असगर अली पर शक है।
3: तूने मेरे दिल की बात कह दी, इनका काम तो पूरा हो गया मगर मुसाफिर खाने से अभी तक नहीं गए।
4: हाँ,
3: और असगर अली ने तो मुझे अशरफी और गहनों का लालच देकर अपने कमरे में बुलाने की कोशिश भी की थी।
4: सच?
3: मेरा ख्याल है इन लोगों ने ही शौकत को जबरदस्ती भर्ती करके दौलताबाद भिजवा दिया है। असगर अली ने सोचा होगा कि अगर उसने शौकत को रास्ते से हटा दिया तो मैं उसकी गोद में आ गिरूंगी। बदमाश कहीं का।
4: देवी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, पर अब तुम क्या करोगे?
3: कल चौक में लोगों को इकट्ठा करके शोर मचाऊंगी कि इन लोगों ने नसीराबाद के नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती करके दौलताबाद भिजवा दिया है, और फिर महल में जाकर अमीर से इनका कच्चा चिट्ठा खोलकर इन्हें कैद करवाऊंगी। फिर दौलताबाद जाकर वहां की बादशाह से फरियाद करूंगी, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। और जमालारा, तुझे हर जगह मेरे साथ चलना होगा।
4: बहुत अच्छा,

0: जनाब गजब हो गया।
1: अरे क्या हुआ?
0: मुझसे जमाल आरा ने दो अशर्फी लेकर अभी अभी बताया कि जैनब को हम पर शक हो गया है कि या तो हमने शाकत को मरवा दिया है या जबरदस्ती भर्ती करके दौलताबाद भिजवा दिया है। कल सुबह जैनब चौक में लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ भड़काएगी और फिर सारे हुजूम को लेकर अमीर के महल जाकर हमारी शिकायत करेगी। मुझे डर है जनाब कि कहीं हम बेमौत मारे ना जाएं।
1: अरे तुम ठीक कहते हो, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है
0: जी।
1: अरे रात तो हो गई है और हमारे घोड़े नीचे बंधे। अपना सामान उठाओ और कमरे के पिछले दरवाजे को खोलकर पिछवाड़े से निकल लेते हैं।
0: जल्दी
1: 1.5 घंटे में बर्फ रफ्तार घोड़ों पर दौलताबाद पहुंच जाएंगे। जैनब को भी अगर अगवा करके दौलताबाद न बुलवा लिया तो मेरा नाम अस्करी नहीं।
0: अरे अभी तो
1: चलो जल्दी करो
0: तो चलिए जाना।

0: बीबी जैनब, क्या हुआ? वो दोनों फौजी मुसाफिर खाने का पिछला दरवाजा खोलकर भाग गए और मुसाफिर खाने का खर्चा भी नहीं दे गए।
1: अरे खर्चा तो वो पेशगी दे चुके थे, बल्कि दो तीन दिन का फालतू हमारी तरफ है, मगर ये तो अय्यार निकले। अब मुझे यकीन हो गया है कि शौकत को इन्हीं ने निकलवाया है और अब वो डर के भाग गए हैं।

0: मिस्त्री महल चलकर अमीर से शिकायत करे।
1: नहीं, अब कोई फायदा नहीं।
0: क्यों?
1: हमारे अमीर के पास ना ताकत है ना फौज।
0: मैं घोड़ा गाड़ी का इंतजाम करती हूँ। हम दोनों इसी वक्त दौलताबाद चलते हैं और बादशाह के दरबार में जाकर उनसे फरियाद करते हैं। उनका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर है। तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आती हूँ।
1: और कोचवान?
0: अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चलाऊंगी। पहले भी कई बार चला चुकी हूँ। तू नीचे मेरा इंतजार कर, मैं अभी आई।
1: जी बहुत अच्छा।

0: छोड़ ये दोनों औरतें बदकार हैं, अपने मुसाफिर खाने में मुसाफिरों को अपने हुस्न फरेब में फंसा कर लूटती हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: ये झूठ बोल रही है उसू, ये शौकत भी झूठ बोल रहा है
1: जी।
0: वो रजामंदी से भर्ती होकर आया, ये देखिए उसू, ये भर्ती का रजिस्टर देखिए आप, ये उसका अंगूठा
2: जी। खामोश, अपने बादशाह को गुमराह करने की हिम्मत करते हो, हमारे बगैर तलब किए हुए भर्ती का रजिस्टर लाए हो, तो इससे मजीद साबित होता है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा जुर्म क्या है और तुम्हें क्या साबित करना होगा। असगर अली और सलीम को फौज से बर्खास्त करके 6 माह कैद बा मुशक्कत की सजा दी जाती है। शौकत को फौरन रिहा किया जाए। शौकत और उन दोनों नाजनीनों को दिन के उजाले में ही हमारे सिपाहियों की निगरानी में नसीराबाद की सरहद तक छोड़ा जाए। इन दोनों औरतों को आने जाने का खर्चा और ज्यादे राह के तौर पर 10 अशर्फियां दी जाएं। क्योंकि शौकत अपना काम नहीं कर सका, उसे संदूक में बंद होने की तारीख से आज तक 2 अशर्फी फी योम हर जाने के तौर पर अलग से दी जाए। दरबार बर्खास्त किया जाता है।
3: अभी आप सुन रहे थे जनाब M.M. राजेंद्र का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान था इंसाफ। हिस्सा लेने वाले फनकार थे अर्चना, राजेश आहूजा, पोर्शिया मुखर्जी, अजय मनचंदा, सतीश महाजन, प्रवीण शर्मा, सरफराज अहमद और परवीन सुल्ताना। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशरियात सुन रहे हैं। पेश खदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी सन 1937 को ढाका में पैदा हुई, जो उस वक्त बरतानवी साम्राज्य का हिस्सा था। बादशाह उनका खानदान मुंबई मुंतकिल हो गया, जहां उन्होंने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की थी। बचपन से ही उनके घर में फन और मौसीकी का माहौल था, जिसने उनके दिल में मौसीकी के लिए गहरी मोहब्बत पैदा कर दी। 1952 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी पहली अवामी परफॉर्मेंस दी और यही उनके फनी सफर का आगाज था। सुमन कल्याणपुर ने 1954 में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। इब्तदाई दिनों में उन्हें छोटे छोटे मौके मिले, लेकिन उनकी सलाहियत जल्द ही मौसीकारों और फिल्मसाजों की नजरों में आ गई। मशहूर गुलूकार तलत महमूद ने एक मौसीकी के प्रोग्राम में उनकी आवाज सुनी और उनकी आवाज से बेहद मुतासिर हुए। उनके साथ गाया गया एक दो गाना सुमन कल्याणपुर के करियर का अहम मोड़ साबित हुआ।

समय हम याद कर रहे हैं यहाँ सुमन कल्याणपुर को। 60 की दहाई के हवाले से अगर बात की जाए तो 1960 का जो दौर था सुमन कल्याणपुर के करियर का सबसे रोशन जमाना कहा जा सकता है। और उन्होंने उस जमाने के बड़े मौसिकारों के साथ काम किया, अपनी मुनफरद शनाख्त बनाई। उनकी आवाज में नरमी थी, मिठास थी, जज्बात की गहराई थी, जिसकी वजह से रोमानवी और दिल को छू लेने वाले गीतों में उन्हें खास अहमियत दी जाती थी।

सुमन कल्याणपुर का जिक्र हो और रफी साहब का नाम ना आए तो कहानी अधूरी रह जाती है। जैसे इस गीत में अभी आपने सुना, इनकी केमिस्ट्री अपने उरूज पर नजर आती है इन दोनों ने मिलकर जो भी गीत गाए, और बेहद मकबूल हुई ये जोड़ी। इनके गीत न सिर्फ उस दौर में जब इन्होंने नगमे सदाबंद किए, बल्कि आज भी लोगों के पसंदीदा नगमों में शुमार होते हैं। जैसे नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, या फिर पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, या फिर आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।

तो क्या आजकल

सुमन कल्याणपुर की आवाज का मुवाजना आपने भी सुना होगा और कई बार धोखा भी खाया होगा कि शायद हम लता मंगेशकर को सुन रहे हैं, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि आवाज ये सुमन कल्याणपुर की है। काफी मुशाबहत थी, कई मरतबा लोग धोखा खाते थे, फर्क नहीं कर पाते थे, लेकिन सुमन कल्याणपुर ने हमेशा अपनी इनफरादी शनाख्त बरकरार रखी। उन्होंने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी सलाहियत और अपनी मेहनत के जरिए मौसीकी की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया जो हमेशा इसी तरह चमकता दमकता रहेगा।

कल्याणपुर एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थी और सिर्फ हिंदी सिनेमा के लिए ही उन्होंने अपनी आवाज नहीं दी, यानी सिर्फ हिंदी जबान तक वो महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, कन्नड़ और दीगर कई हिंदुस्तानी जबानों में भी गीत गाए। उनकी यही हमजहती सलाहियत उन्हें पूरे हिन्दुस्तान में मकबूल बनाती है। भारतीय मौसीकी के लिए उनके खदमात को हमेशा कद्र की निकाह से देखा गया और ये कद्र तभी पूरी मुकम्मल होती है जब उसके एवज कोई एहसास भी उन्हें दिया जाए। सन 2023 में हुकूमत हिंद ने उन्हें मुल्क के तीसरे आला तरीन शहरी एजाज पद्म भूषण से नवाजा। ये एजाज उनकी कई दहाइयों पर मुहित फनी खदमात का गोया एतराफ था।

सुमन कल्याणपुर के बारे में हमारा जिक्र चल रहा था समीन, गुज़श्ता रोज यानी 31 मई 2026 ये चल रहा है। तो सुमन कल्याणपुर ने 89 बरस की उम्र में मुंबई में आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल के साथ भारतीय मौसीकी का एक सुनहरा बाब इख्तिताम पज़ीर हुआ, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। उनके गीत आज भी रेडियो, टेलीविजन और मौसीकी के शायकीन के दिलों में इसी मोहब्बत के साथ गूंजते हैं जैसे कई दहाई पहले गूंजा करते थे। समीन कुछ आवाजें वक्त के गुजरने के साथ मध्यम नहीं पड़ती बल्कि मजीद निखर जाती हैं, संवर जाती हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज भी उन्हीं में से एक थी। आज भी जब उनके गीत सुनाई देते हैं तो महसूस होता है कि एक पूरा सुनहरा दौर हमारी यादों में फिर से जिंदा हो गया। बस यही कहेंगे कि फनकार दुनिया से रुखसत हो जाते हैं लेकिन उनका फन हमेशा जिंदा रहता है और सुमन कल्याणपुर की आवाज भी हमेशा जिंदा रहेगी।

0: سامعین ہم یاد کر رہے تھے گلوکارہ سمن کلیان پور کو. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب پیش ہے ریڈیو ڈاکٹر پروگرام کے گزشتہ شمارے کی ریکارڈنگ.
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है. पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, न जाने कितने ही फॉर्म्स में आजकल लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि जानते हैं कि तंबाकू खाना सेहत के लिए कितना जानलेवा है. जानबूझकर कुएं में गिरने में कितनी समझदारी है, जानेंगे हम आज के रेडियो डॉक्टर में. हमारा आज का विषय है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, यानी कि तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं. हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से. और आपके साथ हूं मैं आरजे रश्मि गुप्ता. डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में.
2: धन्यवाद रश्मि जी. और आई थिंक मौखिक स्वास्थ्य और तंबाकू सेवन का बहुत ही अटूट रिश्ता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे.
1: जी, तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े, एक छोटी सी बात यही कि तंबाकू सेवन से किस तरह से हमारी ओरल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं.
2: जी रश्मि जी, एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको डेंटल प्रॉब्लम से जो मौखिक बीमारियां जो तंबाकू सेवन से होती हैं उसके बारे में ज्यादा बोलने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि तंबाकू सेवन जो है वो एक एडिक्शन है जिसको, और ये क्लासिफाइड बीमारी है, मतलब एक डिसऑर्डर है, मेडिकल कंडीशन है जो क्लासिफाइड है. और इसके सेवन से भी नुकसान होता है. जब आदमी इसको सेवन करके एडिक्टेड होता है तब छोड़ने पे भी विड्रॉल सिम्टम्स होती है. तो जरूरी ये है पहली बात ये जानना कि तंबाकू सेवन जो लोग सोचते हैं, चाहे वो धूम्रपान के रूप में किसी भी फॉर्म में हो या फिर जो निर्धूम या फिर जो स्मोकलेस टोबैको जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके जैसे मसाला, गुटखा, खैनी, पान और अलग अलग मसाले आते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी सब तंबाकू के अंदर ही आते हैं. तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी भी तरह का सेवन, एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलेंट है अगर हम लोग मुंह में लेते हैं तो उससे न शुरुआती लक्षण जो होती है वो, खास करके आपके दांत नॉर्मली सफेद होते हैं, शुरुआत में क्या होता है सफेद दांत जो है वो धीरे धीरे करके उनका रंग जो है बदलना शुरू होता है. उसके बाद धीरे एक बार दांतों का रंग जो है नॉर्मली जैसे क्रीमी व्हाइट होता है या फिर सफेद होता है, तो वो रंग जो है वो धीरे धीरे रंग बदलता है पीले से और फिर आगे जाके काला या फिर भूरे रंग का हो जाता है. उसके बाद अगला जो है फिर वो मसूड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं. और मसूड़े जो होते हैं वो हमारे दांतों के चारों तरफ जो बाहर दिखने वाला जो क्राउन पोर्शन जो सतह हमें दिखती है अपने दांतों में, तो उस चीज को पकड़ के रखता है और उसको मसूड़े वहां पर जो है सपोर्ट करते हैं और वो जो है फिर वो इस जो उसके जैसे हम लोग सिगरेट लेते हैं, सिगरेट के धुएं से जो गर्मी पैदा होती है या फिर तंबाकू का सेवन जो गुटखा खैनी के रूप में लेते हैं उससे जो जो जो रस निकलता है वो सब इरिटेट करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है हमारे मसूड़ों और उससे होती है मसूड़ों की बीमारियां. तो ये है सब शुरुआती जो बीमारियां जो जो मुख में जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से दिखना शुरू करते हैं. जैसे जैसे आप तंबाकू के जकड़ में आ जाते हैं पूरी तरह से और कंटिन्यूअसली इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इनिशियल जो शुरू करते हैं वो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं. लोग उनको याद ही नहीं होता कि कितने पिए उन्होंने, सिगरेट कितने पिए, बीड़ी कितने मारे या फिर खैनी और गुटखा कितनी बार खाया, क्योंकि उनके मुंह में हमेशा चलता ही रहता है और उसका जो रस निकलता है वो अपने आप में हानिकारक होता है. तो तंबाकू में जैसे मैंने आपको बताया पहले दांतों का रंग बदलना, उसके बाद मसूड़ों की बीमारियां होना और धीरे धीरे जब मसूड़े फूल के उसमें से खून निकलना आए तरीके, मतलब आप जस्ट ब्रश करिए उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है. तो ऐसा होता है कि उसके बाद मसूड़ों की जकड़ जो है ना वो कम हो जाती है और दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं. तो ये कुछ लक्षण है, जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे मैं इनके बारे में और भी जानकारी दूं.
1: आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज. जी हाँ, आज का रेडियो डॉक्टर का विषय यही है, तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं. यदि आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो आप ये जान लें ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है. और इसे जैसे कि आपने अभी बताया कि जो तंबाकू सेवन से ये शुरुआती लक्षण जो होते हैं, शुरुआत में ही जो लोग इसे खाना शुरू करते हैं उनके दांतों का रंग बदलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे मसूड़ों की समस्या शुरू हो जाती है, तो क्या इनके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स या लक्षण होते हैं कि जिनसे पहचाना जा सकता है कि हाँ ये तंबाकू उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है।
2: जी जी, बहुत बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज क्या है कि ये एक जैसे मैंने आप शुरुआती लक्षण बताया, इसके आगे कैसे होता है कि तो दांतों के जो हड्डी के अंदर जो होती है, हड्डी का गलना भी शुरू होता है, और उससे पहले जो तंबाकू का सेवन जो करते हैं, जो लोग सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें ये दांत के जो हड्डी कमजोर होने से दांत समय से पहले गिर भी सकता है, मतलब उसको वी कैन टूथ लॉस जिसको बोलते हैं, दांतों का समय से पहले गिर जाना भी संभव है तंबाकू जो सेवन करते हैं।
1: सॉरी सर, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे एक कॉलर लाइन पर आ गए हैं, तो इससे पहले कि हम आगे कुछ बताएं हम उन्हें लाइन पर ले लेते हैं।
2: श्योर
1: जी, कौन बोल रहे हैं, आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
3: मेरा नाम नीरज चौरसिया है और मैं ब्लाइंड हूँ, संत नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी,
3: मेरे दांतों में नीचे ऊपर दोनों साइड दर्द होता है, अजीब सा दर्द होता है, जैसे लगता है मैजिकली, थोड़े दिन सही रहता है, थोड़े दिन बाद फिर चालू हो जाता है।
2: जी नीरज जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको दांतों में दर्द है और आपको कभी रात को दर्द होता है, कभी कभी दर्द होता है और कुछ दिन तक रहता है, लेकिन देखिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको जो निकटतम आपके जो डेंटल प्रोफेशनल जो दंत चिकित्सक है, आपको उनके पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसका कारण क्या है। अगर उसमें दांतों में सड़न हो गई है तो जी
3: थोड़े दिनों बाद मैं दिखा के आया था डॉक्टर को, तो उन्होंने दर्द की दवा लिख दी थी और पेस्ट लिख दिया था, मैंने किया, फिर से मेरे दांतों में दर्द चालू हो गया, रोटियां अपने आप पेचाओं से दांतों के बीच में फंस जाती हैं।
2: ठीक है नीरज जी, देखिए दो तीन तरीका से प्रॉब्लम हो सकता है। एक है जैसे मसलों की बीमारी, दांतों के बीच में जगह बन जाने की वजह से खाना फंसना, और उस तरह ये एक रूटीन प्रॉब्लम है जो लोगों में दिखता है, तो सफाई उसको क्लीन मतलब डेंटिस्ट के द्वारा उसकी सफाई करवाना, और उसके बाद बराबर से आपको ब्रशिंग कैसे करना है वो तरीका आप सीख के जाइए, ताकि आप समय सही तरीके से ब्रश करके उन जगहों को साफ रख सके जहां पर खाने फंसने की संभावना ज्यादा है। और उसके अलावा जो दर्द का है, दोबारा आप जाइए एक बार डेंटल डेंटिस्ट के पास जाइए जो भी निकटतम है, या फिर हमारे अस्पताल में आके दिखाइए और वहां पर इसका सही से इलाज करवाइए।
1: जी, तो मुझे लगता है नीरज जी को बिल्कुल अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जैसे कि डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि जो लक्षण आप बता रहे थे कि दांत गिरने भी लगते हैं या जो दांत की हड्डी है वो कमजोर होने लगती है, तो एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। चलिए, इससे हम मतलब अच्छा लगता है जब हमारे जो लिसनर्स हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलता है हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा, तो सच मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे कॉलर लाइन पर है। जी हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर आपका नाम बताइए।
4: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी बताइए जी,
4: मेरा ये प्रश्न कहना है कि जो नॉर्थ इंडिया वाले सतोरो साथ में रखते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, सुपारी, सूखी सुपारी, उसमें चूना और तंबाकू डाल के वो लोग खाते हैं, तो कहते हैं कि इससे चूना भी जाता है हमारे को, तंबाकू भी जाता है, और दांत हमेशा मजबूत रहते हैं, तो क्या दांतों को कैल्शियम की एक तो बहुत जरूरत होती है, इससे नुकसान होता है फायदा होता है? दूसरा मेरा ये कहना है कि जो बीड़ी है, बच्चा बच्चा बीड़ी पीता है, बड़े लोग बीड़ी पीते हैं, गरीब आदमी बीड़ी पीता है, बड़ा आदमी कहता है सिगरेट पीता है, वो बहुत महंगे सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, कहता है उससे तो कभी नुकसान होता ही नहीं, ये बस सच है गलत है? ये दो बातें मेरी हैं।
2: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए, दोनों सवालों का जवाब मैं तो जल्दी दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए कैल्शियम के सोर्सेज मतलब और भी तरीके हैं कैल्शियम अपने शरीर में लेने के लिए, दूध और उस तरह से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आप पनीर है, बाकी सब बहुत सारे प्रोटीन और फिर नॉन वेजिटेरियन आइटम भी हैं, सब कुछ आप मिला के एक अगर आदमी वेजिटेरियन है तो अलग तरीके से कैल्शियम का सपोर्ट ले सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अलग तरीके से ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो तम्बाकू का सेवन छूना और इसके साथ खाते हैं, देखिए वो किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान शायद आज उनको

0: पता नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे करके दांत सख्त नहीं होंगे, मसूड़े बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, अभी उनको वो एहसास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके उसके जो जो जो उसका जो प्रकोप है वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो नंबर वन ये है। नंबर टू ये है, बीड़ी जो है, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, आप कुछ भी बोल लीजिए, सारे के सारे सेहत के लिए आज नहीं तो कल हानिकारक हैं। वो आपको आज शायद दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ ही सालों में इन सभी व्यक्तियों जो इनका सेवन करते हैं उनमें इसके लक्षण और साथ साथ उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने लक्षण भी बताए, और लेकिन साथ साथ ओरल प्रॉब्लम्स, मतलब या तंबाकू खाने से और क्या क्या समस्याएं, क्या बीमारियां हो सकती
0: हैं? जी, मैं बहुत जल्द बताता हूँ। जल्दी देखिए, एक जैसे मैंने अभी तक बता चुका हूँ जो लक्षण हो चुके हैं, उसके अलावा जैसे मुंह में छाले पड़ना, तो वन ऑफ द रीजन, एक कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ऐसा छाले जो तंबाकू के सेवन से पड़ते हैं, खास करके उन जगहों पर जहां पर तंबाकू किसी तरह से रखा जाता है, जो गुटखा खैनी रखते हैं उससे भी ये छाले पड़ सकते हैं। और ये छाले ऐसे होते हैं कि वो भरते नहीं है, जल्दी भरते नहीं है, और इनका जो इसकी वजह से जलन होती है, खाना खाने में दिक्कत होती है, और साथ में नॉट ओनली दैट, उसके बाद जो आपके अंदर के जो मांसपेशियां हैं वो सख्त होना शुरू होते हैं। जब वो सख्त होना शुरू होते हैं तो नॉर्मली हमारी मुंह जो है वो तीन उंगलियों के बराबर खुलता है, धीरे धीरे करके जब वो सख्त, उसके जो मांसपेशियां सख्त होना शुरू होती हैं, उसकी वजह से मुंह का खुलना भी कम हो जाता है और दिक्कत होती है बोलने में, यहां तक कि खोल के ठीक पानी मुंह साफ करने में या कूड़ा करने में भी दिक्कत होना शुरू होती है। और इसको हम कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो खास करके मसूड़ों मांसपेशियों के सख्त होने की वजह से होता है। उसके अलावा सफेद धब्बे और लाल धब्बे भी पड़ते हैं, जहां पर हम लोग जिसको लिकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ये कैंसर से पहले के होने वाले लक्षण हैं। और अगर हमें ध्यान नहीं दिया गया, ये सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर खुद आईने के शीशे के सामने भी आप जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई इस तरह का धब्बा जो हट नहीं रहा हो और काफी तीन हफ्ते से ज्यादा आपके मुंह में हो गया हो, तो आपको तुरंत दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के शुरुआती लक्षण है। और अगर इसको छोड़ दिया और ऐसे ही तंबाकू का सेवन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मौखिक कैंसर या मुख कैंसर, जिसको हम ओरल कैंसर बोलते हैं, वो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तंबाकू सेवन करने वालों में।
1: सर, मुंह का कैंसर में मतलब केवल एक कहाँ का एग्जैक्टली हम बोले कि गले में हो जाता है, गाल में हो जाता है, या इसको मतलब कंप्लीट ये सारे जो अंग हैं हमारे शरीर के वो सब इससे प्रभावित होते हैं?
0: ज्यादातर तो सभी प्रभावित होते हैं एक तरीके से, लेकिन खास करके उन जगहों पे जहां पर हम गुटखा खैनी, बीड़ी, बीड़ी की वजह से तो अलग अलग जगहों पर हो सकता है, जैसे गले में भी हो सकता है, लेकिन गुटखा खैनी की वजह से खास करके इस तरह के जो मसाले वाले जो तंबाकू पदार्थ हैं वो उन्हीं जगहों पर होता है जहां पर इसको रखा जाता है खास करके।
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
2: हाँ जी, हेलो।
1: हेलो जी, आपका नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रहे हैं बताइए।
2: जी, मेरा नाम दिवाकर है, और डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि दांतों में कई प्रकार की तकलीफें हो जाती हैं, हर उम्र में हो रही है, तो बेसिकली सवाल मेरा ये था सर कि जैसे हम लोग केयर करना चाहते हैं दांतों की, मतलब ऐसे कोई बीमारी जैसी चीजें ना आ सके, तो अब मतलब एक डॉक्टर, एक मेडिकल साइंस क्या कहता है कि हम किस तरह से रोज ब्रश तो कर ही रहे सर, लेकिन कुछ आप थोड़ा मैं वो बताएं जैसे केयर कैसे करें, क्या ध्यान रखना चाहिए जरूरी।
0: जी जी दिवाकर
2: जी, सर थोड़ा सा
0: जी जरूर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने अभी बताया, तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन नहीं करना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जो ब्रशिंग जो करते हैं सही, मतलब आपको ये याद रखना है कि ब्रश दिन में दो बार करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और उतना ही नहीं, हर बार जब आप ब्रश करें 2 से 3 मिनट सही तरीके से, कई बार ब्रशिंग तो सब लोग करते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, कई बार जोर ज्यादा लगाते हैं, कई बार मंजन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी यह है ध्यान रखें कि रेशे जो है ब्रश के मुलायम हो, और आप नरम हाथों से, अपने हाथों से बहुत ज्यादा दबाव न डालते हुए सही तरीके से ब्रश करें। इसकी सही विधि और प्रणाली होती है जिसको आप अपने दंत चिकित्सक से आप सही तरीके से सीख सकते हैं। तो दिन में दो बार ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले, और ब्रश जो है, टूथब्रश जो है, हर 3 महीने में एक बार उसको चेंज करना जरूरी है। और अगर आप समय से पहले आपका टूथब्रश खराब हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आप जब भी खाना खाएं तो कुल्ला जरूर करें, और अपने उंगली से, साफ उंगली से आप अपने मसूड़ों को भी थोड़ा मालिश करें। तो और उसके लास्ट एक और सजेशन ये है, आपका उपाय यह है कि हर 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको डेंटल जो दंत चिकित्सक है उनसे जांच, आपके जस्ट एक चेकअप कराना, रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ तरीके, नुस्खे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने मौखिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, कुछ एक व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम तक पहुंचे हैं। एक लिख रहे हैं जिला लातेहार झारखंड से कॉलेश्वर ठाकुर, कहते हैं तंबाकू पान मसाला जो लोग सेवन करते हैं उन लोगों को खाना खाते समय सब्जी ज्यादा तीखा लगना या भूख कम लगना या हाथ से चार उंगली मुंह में नहीं जाना है, तो ऐसा मानते हैं कि ये पान तंबाकू खाने से ही हो रहा है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही तरीके के सारे लक्षण जो है
1: बताया,
0: काम जो है आसान कर दिया है, सारे सही लक्षण बताए। जो भी तंबाकू का सेवन करता है उनको करारा या फिर तीखा खाना बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज उनके जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो पतली हो जाती है, इसलिए मुंह में छाले बार बार पड़ते हैं। इन लोगों को ज्यादातर पड़ते हैं, उसकी वजह से मुंह में जलन, खाना ना खा पाना, तीखा ना खा पाना और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है।
1: एक और मैसेज आया है, सुशील ठाकुर लिख रहे हैं, मेरे टूथ में मेरे दांत में सेंसिटिव है।
0: देखिए सुशील जी, ऐसा है कि कई बार ठंडा गर्म लगने के कई कारण हो सकते हैं।
1: पान खाते हैं उन्होंने,
0: पान खाते हैं, हाँ तो पान खाते हैं तो फिर आपको जानना जरूरी यह है कि पान में खुरदरे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से समय से पहले दांत जो है ना घिसना शुरू होते हैं और उसी की वजह से ठंडा गर्म लगता है। सिंपल सी चीज है, जो प्रॉब्लम है उसको अगर आप हटा दें तो ये तकलीफों से हम निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हटाएंगे तो इसी तरह से दवाइयों का लेते रहेंगे साथ और फिर बाद में करना उसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। तो इसलिए
1: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर 102.6 पर और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री से मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से। जी हाँ रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और एक और लिसनर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो
3: हेलो
1: जी, आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
3: नाम मेरा अरुणेश कुमार मिश्रा है मैम
1: जी।
3: ये बीच में ना मेरे छाले पड़ जाते हैं मसूड़ों में और वो अपने आप फूट जाते हैं, तो डॉक्टर साहब से मतलब क्या कोई टूथपेस्ट वगैरह चेंज करें या फिर कैसे करें?
0: हाँ अवनीश जी, देखिए जो आप कह रहे हैं वो एक बार सही से एक बार जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंह में ऐसे छाले आना या फिर सूजन हो जाना उसके कई कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले कारण जानना जरूरी है, बिकॉज इलाज जो है उसी कारण के हिसाब से ही उसका इलाज होता है। अगर दांत से जुड़ा हुआ तकलीफ है तो फिर हम दांतों का इलाज करेंगे, अगर मसूड़ों में तकलीफ है तो फिर मसूड़ों का अलग से इलाज होगा। अगर ये सूजन और जो ये बन रहा है ये बार बार तंबाकू के खाने के सेवन की वजह से हो रहा है तो फिर उसका इलाज अलग होगा। तो पहले तो कारण जानना जरूरी है, क्योंकि इलाज जो है कारण के हिसाब से ही हम इलाज करते हैं। तो अगर एक ट्रेंड सर्टिफाइड दंत चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो जरूर पहले जांच करेंगे और जांच के साथ साथ सही कारण क्या है उसका कारण के हिसाब से फिर आगे का इलाज करेंगे।
1: जी बिल्कुल सर। रमेश कुमार जी पूछ रहे हैं ख्याला से, कहते हैं टीथ में मेरे पेन हो यदि तो उसे निकलवाना चाहिए या फिर नहीं, या दवा से भी वो ठीक हो सकता है?
0: रमेश जी देखिए, ऐसा है कि मैं एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता, अगेन वापस मैं उसी मुद्दे पर आता हूं कि ऐसी कोई भी चीज मैं रेडियो टॉक शो पे नहीं कहूंगा जो कि मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो निकटतम आपके दंत चिकित्सक हैं उनके पास दिखाएं पहले, बिकॉज मैं यहां से ये कह दूं कि दांत निकालना है तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दांत निकालना अगर जरूरी है तो निकालना पड़ सकता है, वरना नेचुरल टीथ जो है आपके जो शरीर का जो अंग है वो उसको जितने दिन तक आप बचा के रखेंगे वो आपके काम ही आएगा, चाहे उसका इलाज करवा के नसों का इलाज करवा के हो ताकि दर्द दूर हो जाए और उसके बाद वो दांत वैसे ही रहेगा, लेकिन वो सारे आपके जो काम जो है जैसे चबाने का हो, मुस्कुराने का हो और ये सब चीजों के लिए वो आपको मदद करेगा।
1: जी तो जितना ज्यादा आप अपने दांतों को या अपने शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहें वो आपके ऊपर है, यदि आप दांतों की या मुंह की सफाई सही तरीके से करते हैं तो आप अपने दांतों को भी बचा सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से होने से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब आज हम बात कर रहे हैं ओरल समस्याओं पर और वो भी तंबाकू खाने की वजह से, तो जैसे कि आपने हमें बताया लक्षण बहुत सारे बताए आपने, लेकिन इसके अलावा क्या क्या बीमारियां इससे होती है वो भी हम जानना चाहेंगे।
0: जी ये बहुत जरूरी जानना, बिकॉज तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से आप मान लीजिए कि आपके सर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक ऐसा कोई अंग नहीं होगा जो प्रभावित नहीं होगा। जब अगर हम कैंसर की बात करें, शरीर में 10 से ज्यादा किस्मों के कैंसर जो है शरीर में होते हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर तो हमने बात कर ही लिया, चाहे गले का कैंसर आप कहिए, फेफड़ों का कैंसर कहिए, स्टमक कहिए, पैनक्रियास कहिए, आप बस गिनते जाइए, कैंसर की गिनती जो है तंबाकू के सेवन से मतलब ऐसा कोई अंग नहीं जो बच जाएगा। नंबर वन तो कैंसर तो एक बहुत मतलब इमीडिएट मैनिफेस्टेशन जो होता है, उसके अलावा फेफड़ों की बीमारी होना, मस्तिष्क में स्ट्रोक होना, दिल की बीमारियां, बिकॉज सिगरेट पीने से दिल की बीमारियों की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो होना, फिर किडनी में भी प्रॉब्लम्स होना, तो इस तरह से मतलब शरीर

0: के हर अंग में कहीं ना कहीं तंबाकू का असर पड़ता है, यहाँ तक कि इम्पोटेंसी भी हो सकती है तंबाकू के सेवन से।
1: जी तो देखिए, आपने तंबाकू, कहते हैं कि तंबाकू बड़ा अच्छा होता है, मतलब खाने के लिए शुरुआत जब करते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन पहले ये शुरुआत होती है, एक आदत बनती है, फिर जरूरत बन जाती है और उसके बाद आपको लत लग जाती है और आप इसे छोड़ नहीं पाते। डॉक्टर साहब, एक डेंटिस्ट किस तरह से इस आदत से निजात दिला सकता है किसी भी पेशेंट को?
0: जी देखिए, सबसे पहले
1: मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोगों को पता होना चाहिए कि डेंटिस्ट भी किस तरह से इसमें मदद कर सकते
0: जी,
1: हैं।
0: जी जी, बहुत जरूरी है कि ये जानना कि देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन जनरल आपकी मदद कर सकते हैं और खास करके दंत चिकित्सक जो है वो जो है, सबसे पहली बात यह है, दंत चिकित्सक जो है छोटे बच्चों से लेके वृद्धावस्था तक सभी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो सभी को वो केटर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दंत चिकित्सक को बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप मिलते रहते हैं, तो सबसे पहली बात दंत चिकित्सक अपने आप ट्रेंड होते हैं, उनको इन चीजों के बारे में जानकारी होती है और खास करके जब वो चेकअप करते हैं, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको जरूर बताएं कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं और उसी की वजह से आप उनके पास आए, नंबर वन। नंबर टू, एक दंत चिकित्सक आपकी पूरी सब कुछ समझने के बाद वो आपको एक हेल्प कर सकता है, काउंसलिंग और एक डॉक्टर दोनों का मिश्रण है दंत चिकित्सक, वो काउंसिल भी कर सकते हैं, आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और साथ में डेंटल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: जी
0: तो उससे डेंटिस्ट जो है ना, दंत चिकित्सक जो है, बहुत कुछ आपको मदद कर सकते हैं जब तंबाकू छुड़ाने की बात आई तो।
1: जी तो सब, इसी बात पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें लेते हैं हम लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं सर आप?
2: नमस्कार मैडम, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: नमस्कार।
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से।
0: जी जी बताइए।
1: डॉक्टर साहब,
2: मेरा सवाल ये है कि मेडिकल साइंस को बहुत एडवांस हो गई है, तो ऐसे में अगर कोई होम रेमेडीज है जिससे हमारी ओरल केयर होती रहे और हमारे जो दांत और दाढ़ है वो भी सेफ रहे, कृपया बताने का कष्ट करें।
0: जी जी जी चड्ढा जी, देखिए एडवांसमेंट तो बहुत हुई है लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आज तक हम वही हैं और उसी के हेल्प लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि ब्रशिंग करने, जब आप टूथब्रश सेलेक्ट करते हैं, हर उम्र के लिए अलग अलग, मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग टूथब्रश आती है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अलग किस्म के टूथब्रश खरीदें और टूथब्रश से ही आप उतना, जितना मिनिमम चाहिए आप उतना करिए, क्योंकि इतने से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नंबर वन, दो टाइप के टूथब्रश हैं और पेस्ट भी बच्चों के लिए अलग किस्म के आते हैं और बड़ों के लिए अलग किस्म के आते हैं, ये भी ध्यान रखें। पेस्ट बहुत जरूरी है, किसी भी व्हाइट कलर का पेस्ट जो भी होता है, प्रेफरेबली जेल ना हो लेकिन आप जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पेस्ट का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। और तीसरा ये है, जो आप जीभ साफ करते हैं, टंग क्लीनर जिसको हम बोलते हैं, इन तीन चीजों से ही आप एक मिनिमम, मतलब एक बहुत स्वस्थ मौखिक स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं। साथ में अगर आप इसमें जोड़ दें रेगुलर डेंटल चेकअप, तो इन चार चीजों से, और आप जो हेल्दी खाना खाते हैं, जो बैलेंस डाइट होता है या फिर आप कहिए जो पौष्टिक आहार होता है, इन चार पांच चीजों को लेके आप अपने मौखिक स्वास्थ्य और पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी आप बरकरार रख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज हम तक और पहुंचा है, ये लिख रहे हैं केडी त्रिपाठी रांची से, इन्होंने अपनी उम्र बताई है 74 वर्ष। कहते हैं दो दांतों के बीच में जगह हो गई है और वहां पर खाना फंसता है, रबड़ जैसा मटेरियल से इसको भरा गया था लेकिन ये निकल जाता है, क्या करना चाहिए?
0: त्रिपाठी जी, ऐसा है, सबसे पहले एक बार फिर देखना पड़ेगा कि कितना जगह बना हुआ है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारे पूरे शरीर में चेंजेस आती हैं, तो हमारे दांतों के भी चेंजेस होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं, और कई बार कोशिश ये होती है एज ए डेंटल प्रोफेशनल हमारी होती है कि उसको जितना ज्यादा फंक्शनल या फिर जितना दिन तक हम उसको रख सके, ताकि वो अपना सारा काम, दांत जो है अपना सारा काम निभा सके। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जगह बहुत ज्यादा है और बार बार भरने के बाद भी अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर हमें और कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तो वो प्रेफरेबली यही होगा कि आप लोकल अपने डेंटिस्ट के पास जाएं जो ट्रेन्ड और स्पेशलिस्ट हो, और उनसे खास करके ये जांच करवाना बहुत जरूरी है कि इसके अलावा और क्या इलाज हो सकता है।
1: सर डॉक्टर साहब, ऐसा ही एक सवाल सोनू ने भी पूछा है उत्तर प्रदेश से, इनकी उम्र है 35 साल, इन्होंने भी यही कहा है कि खाना फंस जाता है लेकिन ब्रश करने के बाद भी नहीं निकलता, तो क्या ये जो गैप है ये अपने आप फिल हो जाते हैं या इसके लिए मतलब कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं?
0: देखिए सोनू जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारे एज पर जो डेटा जो कहता है, जो आंकड़े जो कहते हैं, वो कहते हैं ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों में मसूड़ों की बीमारियां होती हैं। ये दांतों में जो गैप आना शुरू होता है ना, ये खास करके मसूड़ों की बीमारियां

0: जो है ना शुरुआती लक्षण वही होते हैं कि पशुओं की बीमारियों से, फिर उसकी हड्डी गलना और फिर दो दांतों के बीच में जगह बन जाना, तो उसकी वजह से वहां पर खाना फंसना शुरू हो जाता है। जब एक बार फंसना शुरू होता है उसके बाद अगर नहीं निकलता, तरीका यह है कि डेंटल दंत चिकित्सक के पास जाएं, उसकी सफाई करवाएं। बट उसके अलावा जैसे आप वापस आते हो और रूटीन में आप रहते हो तो कई बार फंसता है, तो आप लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हो, तो जरूरी यह है कि इस तरह के जो उपकरण हैं जैसे टूथपिक रेगुलर, बहुत ज्यादा
1: पेन की
0: भी इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल पेन कुछ भी डालते हैं, तो ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें और अपना डेंटल चेकअप कराते रहें। उसके अलावा जरूरी है कि रेगुलर ब्रशिंग और मेंटेनेंस की बहुत जरूरी है ओरल हाइजीन की।
1: जी, एक कॉलर लाइन पर है। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए।
2: सर को भी नमस्कार
0: जी। नमस्कार नमस्कार
2: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी भी लगा
1: जो जी, पूछिए आपका सवाल।
2: मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जैसे कि हम पानी नहीं खाते, तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, गुटखा इस्तेमाल नहीं करते, तब भी हमारे दांत पीछे से लाल क्यों रहते हैं?
0: जी लाल रहते हैं। कुछ और आप कुछ खाने पीने में कुछ और ऐसा कुछ करते हैं?
2: नहीं नहीं, कुछ नहीं लेते जी।
0: अच्छा ठीक है, फिर वही मेरा सुझाव ये रहेगा आपको कि आसन जी आप ना एक आसपास के जो निकटतम डेंटल चिकित्सक हैं उनसे जरूर जांच कराएं। खाने के पदार्थ में हम जो खाना खाते हैं ना उसमें भी रंग होता है और उसकी वजह से भी हमारे दांतों पे रंग चढ़ सकता है, तो जरूरी है कि जानना कि अगर कोई कारणवश अगर है और सालों के बाद, जैसे आप अपना उम्र कह रहे हैं, सालों पे हम जितना साल हम खाना खाते हैं उसके ऊपर इस तरह के भी चेंजेस आते हैं, जैसे मैं कह रहा था समय उम्र के साथ जो चेंजेस पूरे शरीर में आते हैं दांतों में भी आते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एज रिलेटेड या फिर उम्र के साथ चेंजेस है या फिर इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकता है, तो चेकअप के बाद ही पता लगेगा।
1: जी, एक मैसेज आया है आलोका का, 52 इयर्स की हैं और कह रहे हैं कि ठंडा गर्म दांतों में लगता है, दांतों के ऊपर कुछ कैविटीज से भी लगती है, इसके लिए प्लीज सजेस्ट करें कि क्या है।
0: आलोका जी, कई बार ऐसा होता है कि ठंडा गर्म लगने के, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ शो पे, कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें एक कारण जो है दांतों में सड़न होना, तो दांतों में सड़न होने की वजह से जैसे आप कह रहे हैं कैविटी हो गया, कैविटी होने की वजह से वहां खाना फंसना शुरू होता है और उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। सबसे पहली बात यह, अगर आपको लगने लग गया कि खाना फंस रहा है, कैविटी हो गया है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप जल्द से जल्द जाके उसका इलाज कराइए, क्यों अगर लेट करेंगे तो ये जो कैविटी है या जो सड़न की वजह से जो गड्ढा बन गया दांत में वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसकी वजह से दांत शायद पूरा टूट भी सकता है, तो इसमें जरूरी है समय रहते हुए इसका इलाज कराना जरूरी है।
1: जी सर, एक मैसेज और आया है हम तक, लिखने वाले हैं चैंप सिंह बरमार से, वो पूछ रहे हैं कि मेरे दांतों में मैंने मसाला भरा हुआ है लेकिन कैप नहीं लगाई है, इससे कुछ परेशानी तो नहीं होगी? लेकिन साथ ही ये भी कहना चाह रहे हैं कि दांत का मतलब दाढ़ है और वो एक दांत दाढ़ सही हो गई है लेकिन दूसरे पास के दांत में दिक्कत हो गई है।
0: ओके, देखिए ऐसा हो सकता है कि जो आप वो कह रहे हैं मसाला भरवाया, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि उनमें नसों का इलाज हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें दांतों के नसों का इलाज होता है और सफाई होकर सड़न जब फैल जाती है तो उसकी पूरी सफाई होती है और पूरा मसाला भरा जाता है, और जब ऐसे दांतों में जब हम लोग पूरे दांत को बचाते हैं, ये खास करके दांतों को बचाने के लिए किया जाता है कि दांत अपनी जगह पे रहें लेकिन उसमें कोई जान न रहे, लेकिन वो सारे फंक्शंस वो कर सके जो एक नॉर्मल दांत को करना है, लेकिन इस दांत में क्योंकि कोई न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं है तो ये दांत जो है इसमें पानी का प्रभाव भी कम, पानी मतलब वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है ओवर द इयर्स और ये थोड़ा ब्रिटल हो जाता है, मतलब टूटने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसीलिए मसाला भरने के बाद विद इन 1 मंथ टू 2 मंथ्स के अंदर, मैक्सिमम विद इन 2 टू 3 ईयर्स के अंदर आपको कैप चलाना जरूरी है, अगर क्योंकि कैप नहीं चलाएंगे तो दांत का फ्रैक्चर होना या दांत का क्रैक होना बहुत संभव है, ये इवन 3 महीने 4 महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सही समय पे कैप नहीं लगाएंगे तो कैप क्या करता है, कैप जो है जितने होने वाले फोर्सेस जो है, तो दांत दो दांत ऊपर और नीचे के दांत जब मिलते हैं तो उसका जो फोर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन से वो उस दांत पे उतना असर नहीं पड़ता जितना पड़ सकता है।
1: जी, तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स लगातार अपने क्वेश्चंस का आंसर सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा रहे हैं, और तो आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं जिन्होंने हमें कॉल्स भी की, व्हाट्सएप भी की, लेकिन वो सब एक वक्त बहुत थोड़ा बचा है हमारे पास, लेकिन एक सवाल कुल बुलाकर मेरे सामने आ रहा है, वो पूछ रहा है कि यदि तंबाकू हम छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद भी क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो प्रॉब्लम होती है?
0: जी जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज तम्बाकू का सेवन जैसे हम समय लेके चढ़ता है शरीर में, उसी तरह से निकलते वक्त भी वो अपना असर इतना आसानी से छोड़ता नहीं।

0: तो इसको हम लोग एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहते हैं, जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। जब तंबाकू का सेवन जब आदमी कोई भी आदमी अगर छोड़ता है तो सबसे पहले मिनिमम एटलीस्ट 2 to 3 weeks तक उसके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखती है। सबसे पहले जैसे क्रेविंग होती है, क्रेविंग का मतलब ये होता है उसके अंदर अर्ज, मतलब उसके अंदर इच्छा होती है कि अब जब छोड़ दिया, हाँ जरूरत है अभी इमीडिएटली मैं कुछ उठा के या तो बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं या गुटखा खा लूं, तो उसको अर्ज होती है। तो वो अर्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको दवाइयों से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं।
1: ओके, तो आज का हमारा जो विषय था वो था ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। तो आज डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
4: ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के सदर ऊ मिन आउ लाइन से बातचीत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर से सदारत करेंगे। अमरीका ने ईरान के रेडार और ड्रोन कंट्रोल मराकिस पर हमले किए हैं। इससे पहले ईरान ने अमरीका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। और कोलंबो के सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार के 50% से ज्यादा वोट हासिल न कर पाने के बाद इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के सदर ऊ मिन आउ लाइन से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की। सदर ऊ मिन आउ लाइन ने म्यांमा भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमा के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे। उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी है, जिसमें बहुत से काबीना वुजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ओमिन का सदर की हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। वो तजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत से जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। म्यांमा के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौड़ा सकाफती मरकज में राइट एंड लॉट्स एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महसूस होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरहवा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जाएगा। म्यांमा भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ओमिन के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेकाम और गहराई पैदा होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वजराए खारजा डायलॉग की मुश्तरका तौर से सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटरऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मवाखे की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग मिलेगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मवाके को उजागर किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच नई दिल्ली में 8 जून से 11 जून के दरमियान जनरल सतह के शिशमाही सरहदी मुजाकरात होंगे। इस साल बांग्लादेश में BNP की हुकूमत बनने के बाद से ये मुजाकरात पहली बार हो रही हैं। बांग्लादेश के वफद को बांग्लादेश सरहदी गार्ड BGB के डायरेक्टर जनरल मेजर मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी की सरबराही हासिल होगी, जबकि भारतीय वफद की क्यादत सरहदी सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार करेंगे। नेपाल में बरसरे

फिलहाल स्वतंत्रता पार्टी के सदर रबी लामिछा ने भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगे जो आज से शुरू हो रहा है। जनाब लामिछा ने बीजेपी सदर नितिन नबीन की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं और वो नई दिल्ली में आला सतही सियासी और सिफारती मीटिंगों में शामिल होंगे। वो बीजेपी के आला रहनुमाओं के साथ भी मीटिंग करेंगे। जनाब लामिछा ने भारत में नेपाली बिरादरी और पार्टी के खैर खाहों से भी मुलाकात करेंगे और वो अयोध्या भी जाएंगे। उनके साथ एक सरकारी वफद होगा जिसमें पार्लियामेंट के मेंबरान शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कुछ लोग किसी काम को खुद से करने की सलाहियत रखते हैं जबकि कुछ लोगों में ये सलाहियत होती है कि वो दूसरों को इस काम से मुतालिक इल्म और हुनर से रोशनास कराएं। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक संस्कृत सुभाषितम को शेयर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ लोग अमलावरी की महारत रखते हैं जबकि दीगर अफराद तर्स व तदरीस का हुनर रखते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे शख्स जो किसी मौजू पर इल्म रखते हैं और साथ ही उसे दूसरों को सिखाने का हुनर भी जानते हैं वो असातिज़ा की पहली सफ में शामिल होने के अहल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों का तकर्रुर किया गया है जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद भारत के चीफ जस्टिस समेत 37 हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस के साथ सलाह मशविरे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों का तकर्रुर किया है। वजारत कानून की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर किया गया है। सीनियर एडवोकेट वेंकिता सब्रामणि मोहना को भी सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर किया गया है। अमरीका ने ईरान के रेडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं जिसके बाद मगरबी एशिया में एक बार फिर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते के अवाखिर में अमरीका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। ईरान का कहना है कि उसने जवाबी हमले किए जबकि कुवैत ने बताया है कि उसने ड्रोन और मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमान का कहना है कि उसने अपने दिफा में जनूबी ईरान में रेडार और कंट्रोल सेंटर पर हमले किए। इन हमलों में गोरुक और कश्म जजीरे में तंसीबात को निशाना बनाया गया। इससे पहले ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब इस्लामी IRGC ने एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था जो मुबैना तौर पर ईरान की फजाई हदूद में दाखिल हो गया था। कोलंबिया में सदारती इंतखाबात के इब्तदाई सरकारी नतीजे के मुताबिक इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल होंगे। इससे पहले हुई पोलिंग से पता चलता है कि दाएं बाजू के उम्मीदवार तुला एस्पिरिला सबसे ज्यादा वोटों के साथ आगे हैं और उनके बाद बाएं बाजू के सेनेटर इवान सेपेदा को वोट हासिल हुए हैं। हालांकि वाज अक्सरियत के लिए दरकार 50% से ज्यादा वोट किसी उम्मीदवार को नहीं मिले जिसकी वजह से इम्कान है कि इस महीने की 21 तारीख को वोटिंग का दूसरा मरहला कराया जाएगा। वोटिंग का यह अमल कई महीनों से जारी सियासी कशीदगी के बाद सामने आया है जिसमें बाएं बाजू के सदर गुस्तावो पेत्रो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुनशियात की स्मगलिंग और खित्ते में गैर मुल्की मुदाखलत जैसे मुद्दे शामिल हैं। कोलंबिया का आईन इस बात की इजाजत नहीं देता कि पेत्रो दोबारा इंतखाबात में शामिल हों, इसलिए उन्होंने इवान सेपेदा की हिमायत की है। अहम मुकाबला दाएं बाजू के उम्मीदवार एबिलार्डो दुला एस्प्रेला और कदामत पसंद उम्मीदवार पालोमा वेलेंचिया के दरमियान है। ये इंतखाबात मौजूदा सियासी तशद्दुद के बीच हुए हैं। इंतखाबात के नतीज को कोलंबिया के अमरीका के साथ ताल्लुकात का तायुन करेंगे। बौद्ध पूर्णिमा 2026 के मौके पर अरहत सरीपुत्रा और अरहत महामोगालन्ना की पवित्र बाकियात को मंगोलिया के उलनबाटर में खानकाह में रस्मी तौर से रखा गया है। अरहत सरीपुत्रा और अरहत महामोगालन्ना भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार थे। सकाफत की मरकजी वजारत ने बताया कि बाकियात को 10 जून तक चलने वाली 10 रोजा नुमाइश के लिए भारत से लाया गया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर मुसलसल दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों पर

0: पास रन बनाकर नॉट आउट रहे। बेंगलुरु की तरफ से रासिख सलाम डार ने 3 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 ओवर्स में 5 विकेट पर 161 रन कर दिया, जबकि निशाना बआसानी हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 42 गेंद पर 75 रन बनाकर नॉट आउट रहे। गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान ने 2 विकेट लिए और विराट कोहली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के सदर ऊ मिन आउं लाइन से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वज़राए खारिजा मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर से सदारत करेंगे। अमरीका ने ईरान के रेडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं। इससे पहले ईरान ने अमरीका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। और कोलंबिया के सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार के 50% से ज्यादा वोट हासिल न कर पाने के बाद इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पेश है फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम की इब्तदा में चंद नगमे हम नाम करेंगे अदाकारा नरगिस के।

मदर इंडिया फिल्म से नगमा अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। नरगिस दत्त पर फिल्माया हुआ एक और नगमा अदालत फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है।

मर्दन फिल्म का नगमा भी आपने लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में सुना, और अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम को, फिल्म है दीदार।

0: सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये चंद नगमे थे अदाकारा नरगिस दत्त के नाम, जिनका आज हमें पैदाइश है। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है। वक्त है तारीख साज प्रोग्राम का। मौजू है अशोक आजम का जमाना।
1: अशोक आजम का अहद हिंदुस्तान की तारीख में अमन आश्ती मसावात और जमहूरी अख्तार के इब्तदाई रंग रूप का मजहर है। अशोक ने 261 कबल वसी में अलानी हुकूमत संभाली थी और हिंद के पूर्व अर्ज में पिशावर से मैसूर तक और काठियावाड़ से उड़ीसा तक पत्थरों, मीनारों और धात की बनी हुई लाटों पर अपने फरमान पाली जुबान में दर्ज कराए थे। अशोक को अवाम और संतों ने पिया दासी और देवताओं के महबूब के अलकाब से नवाजा था। अशोक के एक फरमान का तर्जुमा समाज फरमाइए। इस फरमान से अशोक आजम की हिकमत अमली और मकासिद की भरपूर वजाहत होती है। ये फरमान अशोक का सातवां फरमान है और कई मकामात से दस्तियाब होने वाली लाटों पर कंधा है। इसमें कहा गया है, बादशाह पियादासी देवताओं का प्यारा कहता है, गुज़श्ता जमाने में बादशाह सोचते थे कि लोगों को धर्म का पाबंद करके बेहतर इंसान कैसे बनाया जाए, लेकिन लोग धर्म के पाबंद नहीं हुए जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। इस बारे में बादशाह पियादासी देवताओं का प्यारा कहता है, मुझे ख्याल हुआ कि मैं धर्म के अहकामात आम करूंगा, इनको दिलनशी कराऊंगा, इन्हें पढ़कर लोग इनकी तामील करेंगे, इस तरह उनके अखलाक बुलंद होंगे। पियादासी बादशाहों का प्यारा कहता है, सड़कों पर दरख्त लगवाए गए कि आदमियों और मवेशियों को साया मिले, आमों के बाग लगवाए गए, आध आध कोस पर कुएं खुदवाए गए, सराय बनवाई गई, जा बजा आदमियों और मवेशियों के लिए पानी का इंतजाम किया गया। बादशाह पियादासी देवताओं का प्यारा कहता है, मैंने जो नेक काम किए उनमें लोगों ने मेरी तकलीफ की है और इन नेक कामों की वो नकल करते हैं, इस तरह वो माँ बाप की और बुजुर्गों की इताअत करने लगे हैं और उनकी ये इताअत बढ़ती रहेगी। वो ब्राह्मणों, संतों, गरीब और मुसीबत ज़दा लोगों और मुलाजिमों के साथ मुनासिब बर्ताव करेंगे। जहां कहीं पत्थर की मीनार या पत्थर की सिले मौजूद हों, वहां धर्म के इस फरमान को नक्श करा देना चाहिए ताकि ये हमेशा मौजूद रहे। अशोक आजम के ऐसे ही बेशुमार फरमान हैं जो मुख्तलिफ मीनारों और चट्टानों पर कंधा हैं। ये निशानात शाहिद हैं कि अशोक अपने आवाम की इंसानी सतह पर फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल कोशा रहा। उसने अपने मुबल्लिग हिंदुस्तान से बाहर जनूबी बर्मा, सिलोन, बाख्तर, शाम, मिस्र और मख्तूमिया भेजे। अपने एक और फरमान में अशोक ने कहा है, मैं तमाम मशक्कत किसके लिए करता हूं, मेरा मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं है कि जानदार मखलूक का मुझ पर हक है, उसे अदा करूं और उन्हें इस दुनिया की नेकियों और मसरतों से हमकनार कर सकूं। अशोक आजम के मीनारों को ईरानी संतराशों का काम माना जाता है। अगर ये बात सही न भी हो तब भी इसमें शक नहीं कि इन मीनारों की वजह ईरानी है और अशोक का अहद हिंदुस्तान के वसी तर तासुरात और ताल्लुकात की निशानदेही करता है।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। मौजू था अशोक आजम का जमाना। तहरीर थी महमूद हाशमी की और रावी थे अब्दुल जब्बार। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात।

उदित नारायण और अनिशा सिन्हा की आवाजों में नगमा भी अपने सुना फिल्म थी फूल और कांटे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है कभी अजनबी थे।

0: कभी आज सभी थे इस फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडेकर को। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारे नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: अशोक जी। मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
3: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो थी मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और इसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में किससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेय जल हैं या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत जो ताम्रपत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए फिर, तो इस तरह की उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की
2: जी।
3: काफी लंबी समय तक बातचीत की। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।
2: और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों के हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
3: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं। और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में, समाज हित में, तब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं, पर जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है, और खासतौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने वीरेंद्र वर वीर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विनी

0: शंकर, देव मीना, कुलदीप कुमार, इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की। और दो एथलीट हम बात करेंगे तो गुरिंदर सिंह और अनिमेश, इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो है वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
1: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जाने, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहां पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा अभी हमने सुना, चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई, एक विशेष कार्यक्रम हुआ, और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी। और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर हैं, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर, संस्कृति, विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
0: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरी मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है, तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
0: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी, और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची, और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया, और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है, और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं, आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का यह संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव है। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के

0: संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है। फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज और इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उर्दू सर्विस दस्तयाब है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लाइन के दरमियान बातचीत हो रही है। वजीर दफा राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के उनके मनसब रिचर्ड मास आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वजरा दफा मुजाकरात की मुश्तरक तौर पर सदारत करेंगे। अमरीका ने ईरान के राडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं। इससे पहले ईरान ने अमरीका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। और कोलंबिया के सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार के 50% से ज्यादा वोट हासिल न कर पाने के बाद इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लाइन के दरमियान बातचीत हो रही है। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जा रही है, जिसमें सलामती और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की। सदर यू मिन ऑंग लाइन ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह वफद है, जिसमें बहुत से काबीने वुज़रा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब उमिन का सदर की हैसियत से भारत का पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियत से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा, कुछ लोग किसी काम को खुद करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि कुछ लोगों में सलाहियत होती है कि वो दूसरों को इस काम से मुतालिक इल्म और हुनर से रोशनास कराएं। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक संस्कृत शुभा शीतम को शेयर करते हुए वजीर आजम ने कहा, कुछ लोग अमल आवरी की महारत रखते हैं, जबकि दीगर अफराद दरस व तदरीस का हुनर रखते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे शख्स जो किसी मौजू पर इल्म रखते हैं और साथ ही उसे दूसरों को सिखाने का हुनर भी रखते हैं, वो असातिज़ा की पहली सफ में शामिल होने के अहल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मास आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वज़राए डायलॉग की मुश्तरक तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि डायलॉग के दरमियान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक ताउन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर प्रबिलिटी और मुश्तरक तरक्की मवाक़े की मुश्तरक पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तौर पर तवज्जो की जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा। भारत बहरुल कैल खत्ते में इस्तेहकाम सिक्योरिटी का फरोग मिलेगा। दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इस तरह के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान नई दिल्ली में 8 जून से 11 जून तक जनरल सतह के शशमाही सरहदी मुजाकरात होंगे। इस साल बांग्लादेश में BNP की हुकूमत बनने के बाद से मुजाकरात पहली बार हो रहे हैं। बांग्लादेश के वफद को बांग्लादेश सरहदी गार्ड BGB के डायरेक्टर जनरल मेजर मोहम्मद अशरफ उर रहमान सिद्दीकी की सरबराही हासिल है, जबकि भारतीय वफद की क्यादत सरहदी सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार करेंगे। नेपाल में बरसर इख्तितार स्वतंत्र पार्टी के सदर राबी लमाचाने आज भारत के 5 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। जनाब लमाचाने BJP सदर नितिन गडकरी की इस दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। वो नई दिल्ली में आला सतह सियासी और सिफारती मीटिंगों में शामिल होंगे। BJP के आला रहनुमा के साथ भी मीटिंग करेंगे। जनाब रिवाज से भारत में नेपाली बिरादरी पार्टी के खैरख्वाहों से भी मुलाकात करेंगे और अयोध्या भी जाएंगे। उनके साथ एक सरकारी वफद होगा, जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर विपिन कुमार आचार्य, दीपक बोरा, निकिता पौंडेल और प्रदीप आचार्य शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों का तकरर किया गया, जिसके बाद बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद भारत के चीफ जस्टिस में 37 हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस के साथ सलाह मशवरे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों का तकरर किया। वजारत कानून की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शैल नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर किया गया है। सीनियर एडवोकेट वेंकिता सुब्रमणी महाना को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने ईरान के राडार ड्रोन कंट्रोल साइंस पर हमले किए हैं, जिसके बाद मगरबी एशिया में एक बार फिर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते के अवाखिर में अमरीका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया था। ईरान का कहना है कि उसने जवाबी हमले किए, जबकि कुवैत ने बताया कि उसने ड्रोन और मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने अपने दिफा में जनूबी ईरान में राडार कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमले किए। इन हमलों में गोरकू और पैशम जजीरे में तनसीबात को निशाना बनाया गया। इससे पहले ईरान की पावर इंकलाब इस्लामी IRGC ने एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था, जो मुबैना तौर पर ईरान की फजाई हदूद में दाखिल हो गया था। कोलंबिया में सदारती इंतखाबात के इब्तदाई सरकारी नतीजे के मुताबिक इंतखाबात के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। इससे पहले हुई पोलिंग से पता चलता है कि दाएं बाजू के उम्मीदवार डी ला एस्परेला सबसे ज्यादा वोटों के साथ आगे हैं और उनके बाद बाएं बाजू के सेनेटर आइवान कैप्टा को वोट हासिल हुए। हालांकि वाजे अक्सरियत के लिए दरकार 50% ज्यादा वोट किसी उम्मीदवार को नहीं मिले, जिसकी वजह से इम्कान है कि इस महीने की 21 तारीख को वोटिंग का दूसरा मरहला कराया जाएगा। वोटिंग का अमल कई महीनों से जारी सियासी कशीदगी के बाद सामने आया, जिसमें बाएं बाजू के सदर गुस्तावो पेत्रो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मनशियात की इस्मंगलियां, खित्ते में गैर मुल्की मदाखलत जैसे मामला शामिल हैं। कोलंबिया का आईन इस बात की इजाजत नहीं देता कि पेट्रो दोबारा इंतखाबात में शामिल हो, इसलिए उन्होंने आइवान सेप्टा की हिमायत की है। आम मुकाबला दाएं बाजू के उम्मीदवार अबुल लेडो डी अल स्परेला और कदामत पसंद उम्मीदवार पालोमा वेलेसिनिया के दरमियान है। ये इंतखाबात मौजूदा सियासी तशद्दुद के दरमियान हुए हैं। इंतखाबात के नतीजे कोलंबिया के अमरीका के साथ ताल्लुकात का तायुन करेंगे। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की सरबराही वाली काबीना ने 35 नए वजीरों को शामिल करके तौसी की गई है। रियासत के गवर्नर RN रवि ने कोलकाता में लोक भवन में विदारती कौंसिल के नए अरकान को औहदे राजदारी का हलफ दिलाया। स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, पापासराय और शंकर घोष उन अरकान असेंबली में शामिल है जिन्हें काबीना वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। नए वजीर रियासत के मुख्तलिफ खितों की नुमाइंदगी करते हैं और इसमें तजर्बेकार अरकान असेंबली के साथ साथ पहली बार वजीर का औहदा संभालने वाले अरकान भी शामिल हैं। बुद्ध पूर्णिमा 2026 के मौके पर अरहत सपुत्रा और अरहत की पवित्र बाकियात को मंगोलिया के उलाबातुर में खानकाह में रस्मी तौर पर रखा गया है। अरहत और अरहत मंगोलिया ने भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार हैं। सकाफत के मरकजी वजारत ने बताया कि बाकियात को 10 जून तक चलने वाली 10 रोजा नुमाइश के लिए भारत लाया गया है। आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के सफीर अतुल मलिहारी की मौजूदगी में नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। वियतनाम के दानांग में 17 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन कुश्ती खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। कुल 10 तमगे जीते, जिनमें सोने के 2, चांदी के 3 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। 43 किलोग्राम के जुमरे दीक्षा और 73 किलोग्राम के जुमरे में गरिमा ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में सोने के तमगे जीते। भारत को 49 किलोग्राम के जुमरे में निकिता ने, 65 किलोग्राम में अंतरा ने, 69 किलोग्राम में तानिया ने चांदी के तमगे लिया। इस दौरान अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मर्दों की भारतीय फ्री स्टाइल टीम ने खिताब जीता। खास खबरें एक बार फिर। आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर वू मिन ऑंग लाइन के

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और म्यांमा के सदर यू मिन ऑंग हिलैंग के दरमियान बातचीत हो रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब रिचर्ड बार्नेस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वजरा दिफा मुजाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। अमेरिका ने ईरान के राडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया था और कोलंबिया के सदारती

इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार के 50% से ज्यादा वोट हासिल न कर पाने के बाद इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी है। हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। अभी तक आपने उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात सुनी। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने जा रहे हैं। अब हमारी पहली मजलिस खत्म होती है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो फिल्म का नाम है सड़क, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, पूजा भट्ट, संजय दत्त और सदाशिव अमरापुरकर इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे। साथ ही कलाकारों में थे दीपक तिजोरी, नीलिमा अजीम, अवतार गिल, सोनी राजदान, पंकज धीर और मुश्ताक खान। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि महेश भट्ट फिल्म सड़क के लिए जैकी श्रॉफ के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई और संजय ने लीड रोल प्ले किया। सड़क फिल्म के समय पूजा भट्ट महज 18 साल की थी और संजय दत्त के साथ पर्दे पर उनकी जो केमिस्ट्री थी खूब लोगों ने पसंद किया और उसे आज भी याद किया जाता है।

श्रोताओं, ये सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। ये सॉन्ग की जो धुन है वो मुसरत नजीर की गजल चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता से प्रेरित थी। तो श्रोताओं, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के खलनायक की। पहले खलनायक महारानी की भूमिका के लिए निर्देशक शरद सक्सेना को कास्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में वो रोल सदाशिव अमरापुरकर को मिली। सदाशिव ने फिल्म में ट्रांसजेंडर का नेगेटिव किरदार प्ले किया था। इस रोल में उन्होंने ऐसी जान फूकी थी कि एक नया ट्रेंड ही सेट कर दिया था। सड़क की रिलीज के बाद सबसे ज्यादा जिस किरदार की चर्चा हुई थी वो था महारानी का रोल, और उन्हें अपने रोल के लिए बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए चलते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से अगला गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है सड़क, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सड़क फिल्म की कहानी की ओर। सड़क एक टैक्सी ड्राइवर रवि की कहानी है, जो अपनी बहन के खोने के दर्द से उबर नहीं पाया है। दरअसल उसकी प्यारी बहन को धोखे से वैश्यालय में धकेल दिया गया था, जहां उनकी दर्दनाक मौत रवि के आंखों के सामने होती है। ये सदमा उसे भीतर तक तोड़ देता है, जिस वजह से उसे इंसोमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एक दिन रवि की मुलाकात पूजा से होती है, जिसे जबरदस्ती एक वैश्यालय में लाया गया है, जिसे महारानी नाम की निर्दयी ट्रांसजेंडर चलाती है। रवि को पूजा में एक उम्मीद की किरण दिखती है और उसे उससे सच्चा प्यार हो जाता है। रवि पूजा को इस नरक से आजाद कराने की ठान लेता है। अपने दोस्तों की मदद से वो पूजा को बचाने की कोशिश करता है और कई मुश्किलों का सामना भी करता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये फिल्म प्यार, हिम्मत और इंसानियत की लड़ाई की कहानी है, जिसमें एक आम इंसान अंधेरे समाज के खिलाफ खड़ा होता है। और इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखी अभी तक, तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हर फिल्म खत्म होने के बाद उसके जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस की बातें होती हैं, लेकिन ये फिल्म खत्म होने के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद आप बातें करेंगे इसके खलनायक की। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस फिल्म का नाम है सड़क। और हमारे पास आपके बहुत सारे मेल आ गए हैं, उसे हम फटाफट पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन लाल और सावित्री बाई का, छत्तीसगढ़ से। और ये है पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, नवापारा से दीपक गुप्ता, अंकु गुप्ता और राघव गुप्ता। और ये है डॉली बलोच छत्तीसगढ़ से, डोडी लाहौरा बलोच छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामोरिया, अजय तामोरिया और मास्टर अल कबीर का। और ये है हीरामणि वर्मा धंतरे की भाटापारा से, और ये लिखते हैं कि फिल्म से जुड़ी रोचक बातें हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन गीत सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला बहन भावसागर और प्रवीण बानो। और ये हैं हमारे साथ जुड़े, ये हैं सुनील पाठक जी, और इन्होंने भी लिखा है कि कार्यक्रम ये सुन रहे हैं, इन्हें पसंद आ रहा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, फलीजिकाबाद खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विष्णु और लाडी खेड़ा, ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये हैं वडिंगा पंजाब से पिंटू, पिंकी और आरती, और इनके साथ ये हैं हमारे ताज मोहम्मद अंसारी, आजाद लक्सर हरिद्वार से महराज जहां और गुलाम साबिर राही, और गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल नाहरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू जमुना देवी प्रेम, पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। और ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से।

छिपा कपिल छिपा और पूजा परिहार। और ये भी लिखते हैं, बड़ा अच्छा सा इन्होंने मेल लिखा है, लेकिन समय की कमी होने के कारण बस मैं इतना बता दूं, इन्होंने भी कार्यक्रम सुन रहे हैं और इनको भी कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। और ये ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से सुधाकर, प्रशांत, संचित, परमेश, प्रणाली और सर्वत। और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद स्ताक, मोहम्मद अस्फाक, अफरीन, खतीजा, नीलोफर और मोहम्मद। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हम आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं, इस फिल्म को सुपरहिट बनाने में स्टार कास्ट की शानदार एक्टिंग के साथ साथ फिल्म के गानों का भी बड़ा हाथ था। नदीम श्रवण की फेमस जोड़ी ने इस फिल्म में संगीत दिया था और गीत के बोल लिखे थे समीर और रानी मलिक और सुरेंद्र साठी ने। और इन गीतों को अपनी आवाज दिया था कुमार शानू, अनुराधा पौडवाल, अभिजीत भट्टाचार्य, मनोहर उदास, बाबा मेहता, देवाशीष दासगुप्ता और जुनैद अख्तर ने। सड़क की बम्पर सफलता को देखते हुए इसे तमिल में अपू नाम से बनाई गई और फिल्म का सीक्वल सड़क 2 2020 में रिलीज हुआ था, लेकिन ये फ्लॉप रही। सड़क फिल्म को लगभग 2.70 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस किया और इस अपनी सफलता का शानदार इतिहास रचा। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

हमारे साथ कुछ और कलाकार भी जुड़े हैं, उनका नाम भी हम फटाफट ले लेते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम गगनेजा और मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा एक ही फिल्म सड़क सुन रहे हैं, और श्रीगंगानगर राजस्थान से, और ये है सुरेश यादव, अनिता यादव, सोनल प्रसाद यादव, और इनके साथ है चिरमरी कुरासिया कलारी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोद।

श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोटली कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक और मधु नायक और यह राजू मेघलानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवनारायण साहू योगिता गीतिका चंचल रानी साहू उमाबाई गंगाराम साहू ये सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। तो श्रोताओं इसी सड़क फिल्म के इसी गीत के साथ ही अपने दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए लेकिन आप कहीं मत जाइएगा सुनते रहिएगा गीत गुनगुनाते रहिएगा संगीत सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के साथ।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म थी सड़क। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने

0: वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Este mandal permite acatar tanto en el matrimonio como en su Supreme Court es tanto una vitoria de inexistencia que se somete a la culpante y santo y hoy. Para tomar de acatar su paralización de acaso en la vida. De fútbol de espera que a París se sienta en su casa de vida, se me va a descansar. Un cabrón es carnal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाना के राष्ट्रपति ओम बिरला इंटरनेशनल नई दिल्ली विच दिवाली मीटिंग कर रही है। उन्होंने चर्चाओं का उद्देश्य दोनों नेताओं विचार इतिहासक के सभ्यता के संबंधों में और मजबूत करना है। चर्चाओं में सुरक्षा के संपर्क समेत म्यांमार के भारत विश्वास संबंधों के सारे पहलुओं में शामिल करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति शनिवार ने भारत के पांच दिन दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। उन्होंने नाम एक उच्च पदरी वफद किए जिसके कई कैबिनेट मंत्री सीनियर अधिकारी अवतार का दिशा रहे। उन्होंने भारत की पहली यात्रा म्यांमार के राष्ट्रपति कल मुंबई का दौरा करेंगे जिसके वो कारोबारी के समय के आह्वान विचार विमांडा करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति उस्मान राष्ट्रपति पवन विखे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न मुलाकात करेंगे। राष्ट्रस्थानी के राय पिथौरा सभ्याचार कॉम्प्लेक्स के प्रकाश के कमल जागृत व्यक्ति इस प्रदर्शन में भी देखेंगे। प्रदर्शनी में गौतम बुद्ध न संबंधित उच्च पुत्र है लाल उन्होंने संबंधित महत्वपूर्ण पुरातन वस्तुओं का दिखावा किया गया। म्यांमार पर अद्वियां गांधी पहला एक्ट ईस्ट के महासागर नीतियां भी संबंधित राष्ट्रपति ओम बिरला भारत यात्रा नाम दो वाले संस्कार बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद है। दस राज्यों के राज्यसभा दो चौबीस सीटों में दो साल होने वाले चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश गुजरात और कर्नाटक के छह चार चार सीटें राजस्थान के मध्य प्रदेश के तीन तीन सीटें झारखंड में छह सीटें मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में छह सीट हुई। इस महीने 18 तारीख में वोटाधान किया। साबका प्रधानमंत्री जेडीएस नेता एससी देवेगौड़ा केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन के रणवीर सिंह राष्ट्रवादी विरोधी के उपनेता और कांग्रेस विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे नवंबर में शामिल ने जो इस महीने अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र तमिलनाडु ओडिशा भी सीट से राज्यसभा चुनने छोड़ने नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। इस सीटा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु को ए डीएमके के संसद मैंबर सी वी शनमुगम वालों खाली की गई है जो हाल ही में राज्य विधानसभा में चुने गए सन। ओडिशा के बीजेपी संसद मैंबर देवाशी के सामंत्री ने यह इस्तीफा दे दिया कि वोटिंग इस महीने की 18 तारीख को है कि वोटर की गिनती उसी दिन की जाएगी। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का प्रसार आज कोलकाता के लोक भवन लिखे हुए शोक समागम में 35 नवे मंत्रियों की नियुक्ति में हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के नवे मेम्बरों में औहदे की सरकारी पेट के प्रथम विधि सौंप दिखाई। मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी के सीनियर आगू इस समारोह में मौजूद सन। उन्होंने मंत्रियों ने विभाग अधिगम का ऐलान बाद जान की उम्मीद है। आज मंत्रिवर्गीय सौंप करने वाले मेम्बर भी स्वपन दास गुप्ता अर्जुन सिंह तपस राय शंकर कोश के होर शामिल ने नवे मंत्री राजदेव रक्षा खेतरा की नुमाइंदगी करते हैं तो उन्होंने सुदूरबेकार विधायकों के नाम न पहली बार मंत्री बने मेंबर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शलाघा करते हुए किया कि इस योजना ने बिना किसी गारंटी दे कर्जे माली समावेश के विकास से नवे मौके खोल के लखा रेड़ी पकड़ी वाले दे जीवन के पद्धत में बेहतर बनाया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा यह योजना विश्वास सरकार के शक्तिकरण के आधारित है। उन्होंने लाभपात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उनका दृढ़ इरादा और उद्यमशीलता देश की आर्थिकता में लगातार मजबूत कर रही है। साढ़े पत्रकार ने खबर दी है कि 2020 इस योजना की शुरुआत के बाद 1,12,00,000 से अधिक कस्बे दिखे गए हैं। एक खबर किसी आकाशवाणी को सुन रहे हो श्रोतियों ने सूचित किया जाता है कि आकाशवाणी

शामिल कर दे 7 बजे तो 7 बज के 40 मिनट पर प्रसारित होने वाला खबरों का राष्ट्रीय बुलेटिन आज 1 जून 2026 तो 21 जून 2026 तक शाम 7 बजे तो 7 बज के 10 मिनट तक को प्रसारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज नियुक्त किए गए हैं। इस नाल चीफ जस्टिस समेत जजों की कुल संख्या 20 हो गई है। कानून के न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस नाल सलाह मशवरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज नियुक्त किए हैं। कानून मंत्रालय वालों जारी एक नोटिफिकेशन मुताबिक पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री नागू, बम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर के लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्लू ने तरक्की दी गई है। सीनियर वकील वेंकटा सुब्रमणि मोना ने भी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। पिछले महीने केंद्र सरकार ने कानून विस्तृत करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। इस तहत चीफ जस्टिस ने सबको सुप्रीम कोर्ट को जगह दी मंजूर की गिनती तेजी से बढ़ा के सर्दी का सूची गई है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौता सीईपीए आज तो लागू हो गया। व्यापार के सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों विचकार आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक रोजाना राष्ट्रीय उत्पाद प्रकाशित एक लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, बरामद बढ़ाएगा तो निवेश भी वादा करेगा। श्री गोयल ने कहा कि इस नए विस्तार विश्व वादा होगा तो विद्यार्थियों कन्या औरतें किसानों मछुआरों के सूक्ष्म छोटे के दरमियाने उद्यमों में महत्वपूर्ण तौर पर लाभ मिलेगा। भारत और ओमान विशेष आर्थिक और सभ्याचार संबंध साझे करते हैं। ओमान में करीब 7 लाख भारतीय रहने भी श्री गोयल ने कहा कि ओमान सालाना करीब $2 अरब की बरामद होंगी। ओमान में 6,000 से अधिक भारतीय उद्यम काम कर रहे हैं। श्री गोयल ने भी कहा कि व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते तहत ओमान 98% टैरिफ से फॉरन 100% ड्यूटी मुक्त बाजार पहुंच हासिल हो गई है। इस समझौते से पहले भारत दिया बरामदा का सिर्फ 15.3% की ओमान ड्यूटी मुक्त पहुंच सकता है। देश भर में होटलों रेस्टोरेंटों के होर कारोबारों वालों वरते जाने वाले 19 किलोग्राम व्यापारक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वाधा किया गया। हालांकि घरेलू वरतों में आने वाली घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यापारक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 42 रूपये बढ़ा दी गई है। यहां इसकी कीमत 3,113.50 रूपये होगी। मुंबई में इसकी कीमत 43.5 रूपये बढ़ा दी गई है। तहन व्यापारक सिलेंडर की कीमत 3,060.50 रूपये होगी। कोलकाता में व्यापारक सिलेंडर की कीमत 53.5 रूपये के बाद 3,255.50 रूपये होगी।

मैं 24 माह दिनकर के ऊर्जा दिया आलमी लाखों में स्वादे दे की छोटे देखे हो आए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे ऐलान दिते ने 54,000 86 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की थी जिन्हें 10,107 विद्यार्थियों शामिल है। फुटबॉल विच भारत औरतों की सैफ चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल विच पहुंच गया। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारकाओं के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विच मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश ने 3-0 नाल हरा के चैंपियनशिप के ग्रुप बी की शिखर तो थां बना ली। यारी राक्षा लिंडा कॉम ते मालविका पी ने एक एक गोल किया। भारत हुण बुधवार ने सेमीफाइनल विच ग्रुप ए के रनर अप भूटान खिलाफ मैदान च उतरेगा। दूजे पासे बांग्लादेश दूजे सेमीफाइनल विच ग्रुप ए के जेतू नेपाल खिलाफ खेलेगा। आखिर खास खबर करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओम लाइन दरमियान नई दिल्ली में दिवाली गलबात। 10 राज्यों को राज्यसभा की 24 सीटों में 2 साल की होने वाले चुनाव के नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का प्रसार 35 नए मंत्रियों ने स्टार्ट की। सुप्रीम कोर्ट की 5 साल जगह की नियुक्ति चीफ जस्टिस समेत जगह की कुल गिनती 20 हुई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आज को लागू। इस नाम की साडा ए बुलेटिन खत्म होंगे। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6 बजे मिलते होगा। नमस्कार।

0: होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पूर्वी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की सरबराही वाली काबीना ने 35 नए वजीरों को शामिल करके तौसी की गई है। रियासत के गवर्नर आर एन रवि ने कोलकाता में लोकभवन में वजारती कौंसिल के नए अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय और शंकर घोष उन अरकान असेंबली में शामिल हैं जिन्हें काबीना वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। नए वजीर रियासत के मुख्तलिफ खित्तों की नुमाइंदगी करते हैं और इसमें तजुर्बेकार अरकान असेंबली के साथ साथ पहली बार वजीर का ओहदा संभालने वाले अरकान भी शामिल हैं। सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी में गुज़श्ता महीने 3.2% का इजाफा हुआ और ये 1,94,000 करोड़ रूपये से तजावज कर गई। सामान और खिदमात की फराहमी में बेहतरी, निजी दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी लगातार बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1,88,000 करोड़ रूपये थी। रेहड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मस्कुरा स्कीम से पिछले 6 साल में लाखों रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज हासिल करने और अपनी रोजी रोटी को बरकरार रखने में सहूलत हुई है। मस्कुरा स्कीम की सताइश करते हुए वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आसान कर्जों की फराहमी, माली शमूलियत और तरक्की के लिए नए मौकों को यकीनी बनाकर पीएम स्वनिधि स्कीम से बेशुमार रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदल गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मस्कुरा स्कीम के तहत सूद में सब्सिडी और कर्ज गारंटी मदद के साथ 3 मरहलों में 15,000, 25,000 और 50,000 रूपये के कर्जे फराहम किए जाते हैं। इस पहल से मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज्यादा मुतालिक अफराद को फायदा हुआ है। मस्कुरा स्कीम के तहत 17,800 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के कर्जे फराहम किए गए हैं। इस स्कीम के तहत 55 लाख से ज्यादा अफराद डिजिटल तरीके से इसमें शामिल हुए हैं। मजमूई तौर पर मुस्तफीद होने वाले अफराद ने 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन किए हैं जिनकी मालियत तकरीबन 8,96,000 करोड़ रुपए है। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत मुतालिक अफराद को डिजिटल कैश बैक तरगीबात और सूद में रियायत के जरिए तकरीबन 800 करोड़ रुपए भी मौसूल हुए हैं। स्कीम की मुद्दत मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए शमीम इरफान।
0: अमरीका ने खत्म हफ्ता पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया खत्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बैन अल-अक़वामी आबी हदूद के ऊपर परवाज करने वाले अमरीका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को ईरान की जानिब से मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने यह फौजी कार्रवाई की है। ईरान ने जवाबी हमला करने की बात कबूल की है और उधर कुवैत ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम के जरिए मिजाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। हाल ही हमलों से जंगबंदी के कमजोर होने का इशारा मिलता है। कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि इसराइल ने लितानी दरिया से भी आगे तक लेबनान में अपना कब्जा बढ़ा दिया है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इस तरह भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और मजमू एतबार से दूसरे मकाम पर रहा। भारत को चांदी के 5 और कांसे के 4 तमगे भी मिले। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 तमगे जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। पूर्वी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये तक पहुंच गई जिसमें दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मस्कुरा स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: With that, we end the midday news. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पित्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: यह मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल हैं। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों

0: महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता निंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रूपये होगी। मुंबई में 43.50 रूपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रूपये होगी। कोलकाता में 53.50 रूपये की

0: ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस में स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगित तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंचकर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट मनीषा बोस। सत श्री अकाल और सभी लिसनर्स का स्वागत करती हूं कार्यक्रम

कार्यक्रम में, क्योंकि आज का सफर तय होगा आप सभी का मेरे साथ। तो साथियों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात करेंगे एक नहीं दो कलाकारों की, एक सुरों की सादगी से ढली हुई उस आवाज की जिन्होंने अपनी सादगी भरी सुरीली आवाज से हिंदी सिनेमा को आबाद किया, और दूसरी वो कलाकार जिन्होंने अपनी सादगी और सजीव अभिनय से हिंदी सिनेमा को चार चांद लगाए। लेकिन पहले बात उनकी जिनकी आवाज ने भारतीय सिनेमा को सुरीली पहचान दी और जो कल 31 मई 2026 को ही हमसे विदा ले गईं। हम उन्हें अपनी पूरी टीम की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।

जी हाँ, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर, जो अब हमारे बीच नहीं है, जिनकी आवाज सुनकर लोग अक्सर समझ नहीं पाते थे दोस्तों कि ये उनकी आवाज है या लता जी की आवाज है। सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने कई भाषाओं में अपने संगीत, अपने गीत से हिंदी सिनेमा को और अन्य भाषाओं के सिनेमा को नवाजा है, जिसमें हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और ऐसी कई भाषाएं शामिल रही हैं, जो उनकी आवाज से सजी हुई रही। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के बारे में एक दिलचस्प वाक्या ये है कि वो जब औपचारिक रूप से अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में शिक्षा ग्रहण कर रही थी विद्यार्थी जीवन में, तब उन्होंने औपचारिक रूप से चित्रकला की विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा ली थी, परंतु बाद में संगीत को उन्होंने अपना जीवन बनाया और यही वजह रही कि उनकी गायकी में जो नजाकत और संवेदनशीलता नजर आती है, वो उनकी कलात्मक सोच का ही

जी हाँ दोस्तों, करीब 6 दशकों तक अपने शुरू से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली सुमन कल्याणपुर ने अपने गीत से, अपने संगीत से ये साबित कर दिया कि उनके गीतों ने सुरों के साथ भावनाओं को भी आवाज दी, रिश्तों को संगीत दिया और भारतीय संगीत को अमूल्य विरासत।

साथियों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर कार्यक्रम आपका अपना एक ही कलाकार, जहां हम बात कर रहे हैं आज हिंदी सिने जगत के उन दो कलाकारों की। एक ने सुरों से, संगीत से संगीत जगत को हिंदी सिनेमा के नवाजा, और दूसरी जिन्होंने अपनी मोहक अदाकारी से, अपने अभिनय से सिने जगत को एक स्मृति दे गई, एक स्वर्णिम युग दे गई। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की वो दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री रही, शानदार अभिनय से करियर की शुरुआत करने वाली अदाकारा। 1940 के दशक से अपनी पहल बनाते बनाते 1950 के दशक में भारतीय सिनेमा की बुलंदी बनकर छाने वाली। चलिए सुनते हैं वो कौन है और आप अंदाजा लगाइए।

बोलो क्या

जी हाँ, नरगिस भारतीय सिनेमा की वो पहली अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो अदाकारा जिनकी सादगी भरी सुंदरता, आंखों में मासूमियत, आवाज में ठहराव और सच्चाई का गुमा, उनके चेहरे का ठेठ भारतीय नैन नक्श, शालीन अंदाज उन्हें उस दौर की अन्य सभी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। उनकी मुस्कान पर्दे पर आते ही जादू बिखेर देती थी। जी हाँ, उनकी जो जादुई आवाज थी, उनकी जो जादुई अभिनय की क्षमता थी, उनके जो जलवे हैं, उनकी बात हम अपने कार्यक्रम में आज कर रहे हैं एक ही कलाकार में। और ये बात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। 1 जून 1929 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था और उनका असली नाम फातिमा रशीद, जो बाद में भारतीय सिने जगत में नरगिस के नाम से मशहूर हुई थी। तो चलिए हम नरगिस के बारे में और भी बातें करेंगे।

लेकिन फिलहाल हम लेते हैं उन चिट्ठियों को, उन संदेशों को जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे बहुत सारे श्रोता साथी। और इसमें ये जो पहला संदेश है मेरे सामने, ये है टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडे का। तृप्ता कुमारी थांडे, डॉक्टर प्रियंका थांडे, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांडे का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हमारी नियमित श्रोता साथी सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है आपका। फारूख अली खान है हमारे साथ, उन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है जी, बहुत स्वागत है आपका। ये हैं गुन्नौर यूपी से और इनके साथ फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा जुड़ी हुई हैं। आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इससे जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए, आप संदेश के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं और अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को जो आपके लिए लेकर आते हैं और भी उम्दा, और भी रोचक, और भी बेहतरीन बना सकें। हमारे पास अगला संदेश है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा का, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का। इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है जी, बहुत शुक्रिया। और वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा भी जुड़े हुए हैं। इंद्रभान सिंह जी हैं और ये चिरमिरे कुरासारिया कालरी से हैं। इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंदी लहरे। और हमारे साथ एक और संदेश में शामिल करती हूं तुलसी मस्कीन जी का, और इनके साथ जुड़े हुए हैं वीना, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना। बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने हमें हिंदी सिनेमा के माध्यम से कला के जीवन में ऐसी बहुत सी भूमिकाएं दी, बहुत से ऐसे विचार दिए सोचने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। तो चलिए, हम नरगिस की बात कर रहे हैं और सुनते हैं उनका अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, नरगिस एक ऐसी अदाकारा जिनका नाम हिंदी सिनेमा में मदर इंडिया के रूप में अमर हो गया। कला उन्हें विरासत में मिली क्योंकि उनकी माँ जद्दन बाई खुद एक मशहूर गायिका और फिल्म मेकर रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस सिर्फ 6 साल की उम्र में 1935 की तलाश

शहाक में बेबी नरगिस के नाम से अभिनय करने वाली अभिनेत्री बनी, लेकिन उनका असली फिल्मी सफर शुरू हुआ 1942 की तमन्ना से। याद कीजिए आरके स्टूडियो का वो आइकॉनिक लोगो जिसमें राज कपूर नरगिस को उठाए हुए हैं, जो फिल्म बरसात के ही एक सीन से लिया गया था। 1940 से 1950 के दशक का वो दौर जहां नरगिस की जोड़ी बनी राज कपूर के साथ और दोनों ने साथ में बेहतरीन फिल्में दी। बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी कई यादगार फिल्में उनके नाम में हैं। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि लोग उसे असली प्रेम कहानी मानने लगे थे। उनकी फिल्म आवारा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन और कई देशों में बेहद लोकप्रिय हुई और इन फिल्मों में उन्होंने एक युग लिख दिया। तो चलिए सुनते हैं उनके युग लिखे हुए उन्हीं फिल्मों से एक फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

साथियों, अब बात उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा का एक अमर अध्याय बन नरगिस को अमर बना दिया। राधा के किरदार में नरगिस भारतीय नारी की पहचान बनी। एक ऐसी माँ को अपने अभिनय में यहाँ उन्होंने उकेरा जो गरीबी, अत्याचार और समाज के खिलाफ संघर्ष करती हुई नैतिकता और महिला संघर्ष की सच्चाई बनी। साल 1975 में आई फिल्म मदर इंडिया महबूब खान के निर्देशन में बनी उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और भारत की पहली ऑस्कर नामांकित फिल्म भी। अभिनेत्री नरगिस को मिला इस फिल्म का फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साथियों, एक दिलचस्प वाक्य नरगिस के जीवन का ये भी रहा। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब फिल्म सेट पर आग लग गई और सुनील दत्त ने उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया, यानी नरगिस को बचाया, और यहीं से शुरू हुई एक खूबसूरत प्रेम कहानी। 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से लगभग दूरी बना ली। उनके तीन बच्चे हुए, नम्रता, प्रिया और संजय दत्त। नरगिस ने अपने करियर में लगभग तीन दशक तक काम किया, लेकिन उनकी आखिरी मास्टरपीस फिल्म रही 1967 की रात और दिन, जिसके लिए उन्हें मिला पहला नेशनल बेस्ट फिल्म एक्ट्रेसेस अवार्ड, जिसमें उन्होंने ड्यूएल पर्सनैलिटी का किरदार निभाया जो उस दौर के लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। नरगिस सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक संवेदनशील शख्सियत थी। अपने जीवन काल में उन्होंने स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ काम किया, भारतीय सैनिकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। नरगिस चाहती थी कि वो अपने बेटे संजय दत्त को फिल्मों में देखें, लेकिन संजय दत्त की रॉकी रिलीज होने के तीन दिन पहले ही वो इस दुनिया से अलविदा कह गईं। महिला किरदारों को एक नई पहचान दिलाने वाली नरगिस वो पहली अभिनेत्री रही दोस्तों जिन्होंने अपने नाम पे फिल्मों को एक पहचान दी, यानी कि उनके नाम पे फिल्में बिका करती थीं।

आज के एक ही कलाकार में नायिका नरगिस दत्त के जीवन की यात्रा और उसकी कहानी। अब आपके होस्ट और दोस्त मनीषा बोस को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, शब बख़ैर।

0: अरब डॉलर की रकम अपने घरों को भेजते हैं जबकि 6000 से ज्यादा भारतीय इदारे वहां काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों का तकर्रुर किया गया है जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद भारत के चीफ जस्टिस समेत 37 हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस के साथ सलाह मशवरे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्रुरी की है। वजारत कानून की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर किया गया है। अमरीका ने खत्म हफ्ता पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया खत्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बैन अल-अक़वामी आबी हदूद के ऊपर परवाज करने वाले अमरीका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को ईरान की जानिब से मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने यह फौजी कार्रवाई की है। ईरान ने जवाबी हमला करने की बात कबूल की है और उधर कुवैत ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम के जरिए मिजाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। हवाई हमलों से जंगबंदी के कमजोर होने का इशारा मिलता है। कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि इसराइल ने लिटानी दरिया से भी आगे तक लबनान पर अपना कब्जा बढ़ा दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्ल्स आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वजरा डायलॉग की मुश्तरक तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया है कि इस मुजाकरात के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम बनाने, कौमी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरक तरक्की और मौके की मुश्तरक पैदावार समेत सनअती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। मलेशिया में आज से उन जाब्तों का इतलाक हो गया है जिनके तहत 16 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स रखने पर पाबंदी होगी। इन जाब्तों के तहत तकरीबन 80 लाख सारिफीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उम्र की तस्दीक से मुतालिक निजाम का तरीकाकार मुकम्मल करना होगा। हुकूमत ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद बच्चों को नुकसानदेह कंटेंट, साइबर बुलिंग और दीगर खतरात से तहफ्फुज फराहम करना है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इस तरह भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और मजमूई एतबार से दूसरे मकाम पर रहा। भारत को चांदी के 5 और कांसे के 4 तमगे भी मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 तमगे जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। वियतनाम के दानांग में 17 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन कुश्ती खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और कुल 10 तमगे जीते जिनमें सोने के 2, चांदी के 3 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। अमरीका ने ईरान पर रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया खत्ते में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के प्रोग्राम में हमने नगमे लिए हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में क्योंकि कल ही 89 साल की उम्र में उनका मुंबई में इंतकाल हो गया। सुमन कल्याणपुर अपने जमाने की मारूफ गुलकारा रही हैं जिन्होंने सिर्फ हिंदी

मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म में आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर के साथ मुकेश की आवाज में नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था एस डी बर्मन ने। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर के गाए गीत। प्रोग्राम की अगली पेशकश मन मंदिर फिल्म का ये नगमा सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

इस टॉपिक के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे सुमन कल्याणपुर की गाय दीगर गुलकारों के साथ कुछ नगमे, आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे हिम्मत है प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम में सुनिए मिलन फिल्म की कहानी और नगमे, जिसकी तरतीब दिया है जनाब अनवार अहमद ने।

गोपी यानी सुनील दत्त और राधा यानी नूतन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक दिन उनकी मोहब्बत रंग लाती है और वो शादी के पाक रिश्ते में बन जाते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलेंगे और प्यार के नगमे जन्म जन्म तक गुनगुनाते रहेंगे।

एक रोज गोपी और राधा एक मोटर बोट में सफर कर रहे थे। अचानक गोपी ड्राइवर से कहता है कि मोटर बोट को आगे मत लेकर जाए क्योंकि आगे एक भंवर है, मगर ड्राइवर बताता है कि वहां कई साल पहले एक बांध बना दिया गया है, मगर गोपी का डर नहीं निकलता और वो ड्राइवर को एक किनारे पर ले जाने के लिए मजबूर कर देता है। किनारे पर उतरते ही उसे एक पुरानी हवेली नजर आती है और वो राधा को बताता है कि वो इस हवेली को पहचानता है। वो बताता है कि इस हवेली में देवी जी रहा करती थी, जिन्हें वो नाव में बिठाकर नदी के पार पहुंचाता था। राधा को गोपी की बातें अजीब सी लगती हैं और वो परेशान हो जाती है। गोपी हवेली में जाता है, वहां उसे एक चौकीदार मिलता है। गोपी चौकीदार से पूछता है कि इस गांव में एक गोरी नाम की लड़की रहती थी। चौकीदार बताता है कि वो एक मंदिर में दीवानगी की हालत में अपने महबूब गोपी का

इंतजार कर रही है। चौकीदार ये भी बताता है कि कई बरस पहले नाव वाला गोपी और जिम्मेदार की बेटी बीबी जी अभी दुनिया में नहीं रहे। गोपी गौरी के पास जाता है और गौरी गोपी की बाहों में दम तोड़ देती है। दरहकीकत गोपी का ये दूसरा जन्म है और उसे अपने पिछले जन्म की तमाम बातें और वाकयात अचानक याद आ जाते हैं। वो राधा को अपने पिछले जन्म की रुदात सुनाता है। गोपी राधा को बताता है कि इस गांव में एक सीधा साधा और भोला भाला नाव वाला रहता था जिसका नाम भी गोपी था। वह हर रोज गांव के जिम्मेदार की इकलौती बेटी राधा को अपनी नाव में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ता था ताकि वो कॉलेज जा सके। वापसी में राधा को वापस हवेली छोड़कर आता था। इसी गांव में एक बेहद चंचल और शरीर चरवाहिन रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी गोपी से बेहद प्यार करती थी और उसके प्यार में हर वक्त झूमती गाती रहती थी।

जिम्मेदार यानी सुरेंद्र अपनी इकलौती बेटी राधा से बेहद प्यार करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। राधा की सौतेली माँ यानी श्यामा भी राधा का बहुत ख्याल रखती है, इसके बावजूद कि वो उसकी सगी बेटी नहीं है। राधा की माँ का भाई राजू यानी प्राण शहर से गांव आता है और ये ऐलान करता है कि अब वो गांव में ही रहेगा और अपने बहनोई के कारोबार को संभालेगा, क्योंकि अब वो काफी बीमार रहने लगे हैं। जिम्मेदार साहब को कोई एतराज नहीं होता और वो सब कारोबार राजू के हवाले कर देते हैं। राजू एक शातिर और उबाश किस्म का इंसान है। राजू की नजर गौरी पर पड़ती है तो वो उसे हासिल करने के लिए बेचैन हो जाता है, मगर गौरी बहुत तेज और तर्रार लड़की है और राजू के काबू में नहीं आती। एक रोज राधा गोपी से कहती है कि उसके कॉलेज में लोकगीतों का मुकाबला होने जा रहा है, इसलिए वो उसे एक लोकगीत सिखा दे। गोपी दिलोजान से राधा को गीत सिखाने में लग जाता है।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
0: पवन

एक रोज राधा गोपी का खाने का डिब्बा ले जाती है। गोपी उसका डिब्बा लेकर कॉलेज पहुंच जाता है, मगर राधा मना कर देती है और कहती है कि वो भी वही खाना खाएगी जो गोपी खाता है और उसे वापस भेज देती है। राम बाबू गोपी से मिलता है और उसको एक खत देता है गोरी के लिए। सीधा साधा गोपी वो खत शाम को वापसी में राधा को देता है। राधा इस खत को पढ़कर परेशान हो जाती है और बदनामी का खौफ उस पर तारी हो जाता है। एक रोज वो खत उसकी माँ के हाथ लग जाता है और वो जिम्मेदार साहब और राजू को तमाम माजरा बता देती है। राजू राम बाबू की मरम्मत करने के इरादे से कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि राम बाबू एक बेहद दौलतमंद खानदान का लड़का है। दौलत के लालच में वो राम बाबू से वादा कर लेता है कि उसकी शादी राधा से करा देगा। एक मरतबा राधा और गोपी तूफानी बारिश में फंस जाते हैं। वहां राधा गोपी से पूछती है कि वो उसे इतना ज्यादा क्यों पसंद करता है। गोपी मासूमियत से कहता है कि वो कुछ नहीं समझ पाता। राधा कहती है कि शायद ये किसी पिछले जन्म के रिश्ते का असर है और वो ख्यालों की दुनिया में डूब जाते हैं।

राजू जमींदार साहब और अपनी बहन को राम बाबू और राधा की शादी के लिए राजी कर लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बावजूद कि राधा इस शादी पर खुश नहीं है, मगर अपने वालिद की खुशी के आगे वो सर झुका देती है। शादी के रोज सब गोपी से एक गाने की फरमाइश करते हैं।

राजू गौरी का पीछा नहीं छोड़ता और एक रोज रघु यानी मुखरिक की मदद से गौरी को ब्याबरू करने की कोशिश करता है, मगर तभी गोपी आ जाता है और राजू की खूब मरम्मत करता है। राजू इंतकाम लेने के लिए ओंडों से गोपी को पिटवाता है और वो बेहद जख्मी हो जाता है। गौरी दिन रात उसकी खिदमत में लग जाती है। एक रोज जिम्मेदार साहब के घर में एक टेलीग्राम आता है कि राधा का शौहर राम बाबू इस दुनियाए फानी से कूच कर गया। सब पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। जिम्मेदार साहब जीते जी मर जाते हैं और गोपी को लगता है कि जैसे वो पत्थर का हो गया हो। गोपी राधा की दिलजोई के लिए अक्सर हवेली आने लगता है और उसकी तसल्ली के लिए अपने गीतों का इस्तेमाल करता है।

रघु गौरी को बहकावा देता है कि गोपी उससे इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि राधा और गोपी एक दूसरे से प्यार करते हैं। गौरी ये सुनकर गम गुस्से से पागल हो जाती है और गांव में दोनों को बदनाम कर देती है। जब गोपी को इसका इल्म होता है तो वो गौरी को बहुत सख्त सुनाता है और गांव को छोड़ देने का इरादा कर लेता है। जब गौरी उसे रोक नहीं पाती तो वह राधा के पास जाकर सारा माजरा बयान करती है। राधा गोपी को रोकने के लिए घर से निकल पड़ती है। राजू हवेली में गौरी पर एक बार फिर हमला करता है मगर वो उसके चंगुल से निकल जाती है। राजू को जब मालूम होता है कि राधा गोपी के पास गई है तो वो ये अफवाह उड़ा देता है कि राधा गोपी के साथ गांव छोड़कर जा रही है। गांव के लोग गोपी के दुश्मन हो जाते हैं और कश्तियों में उसका पीछा करने निकलते हैं। उधर गोपी और राधा ये फैसला करते हैं कि बदनामी से बचने के लिए मर जाना ही बेहतर है, इसलिए दोनों कश्ती में सवार होकर उस तरफ जाते हैं जहां एक भंवर है ताकि खुद को उस भंवर के हवाले करके बदनामी से बच सकें और वो भंवर में डूब जाते हैं। राधा और गोपी प्यार की अजमत की मिसाल अपने पीछे छोड़ जाते हैं। गौरी अपनी गलती पर बेहद दिल मिलाती है और गोपी के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है, मगर प्यार कभी फना नहीं होता। इसके बावजूद कि गोपी और राधा के जिस्म मौत के मुंह का निवाला बन गए मगर उनका प्यार इतना अजीम था कि उसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने उन्हें फिर इस दुनिया में भेजा, मगर नाव चलाने वाले और जिम्मेदार की बेटी के रूप में नहीं बल्कि शहर के मॉडर्न माहौल में रहने वाले गोपीनाथ और राधा की शक्ल में। और यूं गोपी और राधा का मिलन पाए तकमील तक पहुंच गया।

21 जून 1929 को कलकत्ता में पैदा हूं और उन्होंने वहीं अपनी तालीम हासिल की। तकरीबन 51 साल की उम्र में 3 मई 1981 को बॉम्बे में इंतकाल हुआ और वहीं आपकी तदफीन अमल में आई। इब्तदा में आपने 1935 से जो काम शुरू किया, जब आप सिर्फ 6 साल की थी, तलाश-ए-यक एक फिल्म आई थी उसमें उन्होंने काम शुरू किया, बल्कि कहना चाहिए कि वो आपकी एक इब्तदाई फिल्म थी। उसके बाद 1942 में तमन्ना आई, तमन्ना में काम किया, फिर तकबीर 1943 में आई जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और उसके बाद तो फिर मानो कामयाबी के दरवाजे उन पर खुलते चले गए। आज के प्रोग्राम में हम आपको उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे सुनवा रहे हैं। आज के प्रोग्राम की इब्तदा उन्हीं के नगमों से कर रहे हैं।

50 के बाद आवारा, चोरी चोरी और बहुत सी ऐसी 420 ऐसी फिल्में उन्होंने दी कि जिन्हें देखकर नाज़रीन उनकी अदाकारी से बेइंतहा महज़ूज़ हुए। हम आज के इस प्रोग्राम में उन्हें खिराज अकीदत कर रहे हैं, उन्हीं पर फिल्माए कुछ नगमों के साथ।

नरगिस दत्त की अदाकारी का जब जब जिक्र होगा तब तब एक फिल्म और आवारा का जिक्र जरूर आएगा। आवारा जो एक क्राइम बेस्ड स्टोरी फिल्म थी, इसने भी नरगिस को बहुत शोहरत अता की। नरगिस ने इसमें अपने फन का जादू जगाया और उस फिल्म को कामयाब बना दिया।

नरगिस की फिल्मों में एक और फिल्म थी जिसने कहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री की संगमील साबित हुई फिल्म इंडस्ट्री में, वो फिल्म थी मदरंगिया, जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था।

दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्मों में खूबसूरत और लाजवाब अदाकारी करने वाली यह अदाकारा 3 मई 1981 को महज 51 साल की उम्र में बॉम्बे में इंतकाल कर गई और अपने पीछे छोड़ गई। वो फिल्में देखेंगे उनकी अदाकारी हमारे जहनों में जिंदा और ताबिंदा रहेगी।

没事。

हाँ ये सुनी मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर को फिल्म है दिल एक मंदिर, नगमानिकार हसन जयपुरी, मौसीकार शंकर जयकिशन।

हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, तो पे तो ना थी।

जब जब फूलखे, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और महमूद रफी की आवाजों में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और समझ लीजिए, सुनिए सुमन कल्याणपुर के साथ एक मरतबा फिर महमूद रफी को फिल्म है फर्ज। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तारीख है, पहली तारीख यदि पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना। शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना।

काबू, लाला जी की जान आज आया मैं काबू, आया मैं काबू। वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, कुछ है कमाना।

मुझे न सुनाना सुनाना सुनाना, मुझे न सुनाना आज पहली तारीख है, मुझे जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख ऐसी पहली तारीख है। दफ्तर के सामने आए मेहमान है, बड़े ही शरीफ है पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है पुराने मेहरबान है, अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

ये देखो गम है कि पैसों चलो हाथ से, अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना, टूटेगा खजाना आज पैसों।

रिकॉर्ड बनाए। मैं सब तो पहले ता इना सब को बहु बहु बधाई देंदा हां। साथियों एक इवेंट जेडी देश भर विच बहु चर्चा थींदी पई है वो है 100 मीटर रेस, 100 मीटर दी दौड़। महज 2 दिनों दे अंदर मैंस 100 मीटर रेस विच नेशनल रिकॉर्ड 3 बारी टूटिया। जिन्हां 2 एथलीट्स ने ए कमाल विखाया है वो हैं गुरविंदर वीर सिंह अते अनिमेश कुजूर। मैं सोचिया ही बार मन दी गल विच इन्हां दोवें खिलाड़ियां नाल गल कीती वंजे। अनिमेश जी नमस्कार। गुरविंदर वीर तुसा को भी नमस्कार, सत श्री अकाल। अनिमेश गुरविंदर वीर नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा भरा तुसा तो बहुत वड्डा अचीवमेंट कीता है, तुसा दी जोड़ी ने भी वड्डा कमाल कीता है। असा संगीत विच ता जुगलबंदी डिठी आई, लेकिन चुनौती विच जुगलबंदी थींदी है कि एक बार एक चुनौती देवे, फिर दूजा हूं चुनौती कुचा घिने, फिर तीजी बार कर देवे। वड्डा इंटरेस्टिंग विषय रहा है तुहाडा। मैं चाहना हां कि मन दी गाल दे श्रोतियां को पता चले कि तुसा लोकां दे विषय विच उना को जानकारी थीवे, तुसा जेड़ा पराक्रम कीता है उहदा पता चले। अनिमेश जी नमस्ते सर। मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर अते 400 मीटर दा नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हां। तो मैं छत्तीसगढ़ तो बिलोंग करेंदा हां ते हाली मैं उड़ीसा तो खेडदा हां। मैं लास्ट ईयर एशियन मैडल अते वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मैडल गेन के आया। तो मैं एथलेटिक्स 2021 तू चालू कीता जदों मैं स्कूल तू पास आउट थिया। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर तू पास आउट हां ते मैं पहले फुटबॉल खेडा करदा हां। बड़ा मेरे पेरेंट्स कोविड दे वेले मेरे को थोड़ी बहुत छूट देंदे हन ते तो वंज के बाहर दौड़ गेन या खेड गेन ता जदों कोविड खत्म थीवन लगा ता मेरे फुटबॉल दे जेड़े फ्रेंड्स हन उन्हां मेरे को बोलिया कि स्टेट मीट थीवन आला है, वंज के तू पार्टिसिपेट कर। ते मैं पार्टिसिपेट कीता। मेरे को पता नहीं हा कि उत्थों नेशनल लेवल दा सिलेक्शन है। मैं उत्थां कानून नेशनल विच सिलेक्ट थिया ते अज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करेंदा पिया हां इंटरनेशनली प्रधानमंत्री। अते गुरविंदर वीर जी दा क्या है? गुरविंदर वीर नमस्ते सर। मेरा नाम गुरविंदर वीर है अते मैं इंडियन नेवी विच पैटी ऑफिसर हां अते मैं इंडिया दा सब तो तेज स्प्रिंटर हां। हाली मैं 100 मीटर विच 10.09 दा नेशनल रिकॉर्ड बनाया है अते मैं पहला इंडियन हां जिहड़ा 10.1 दे बैरियर दे हेठां दौड़िया है। अते मैं कोशिश करेंदा पिया हां कि मैं ट्रैक अते वर्दी विच भी अपने देश की सेवा करा। मेरे फादर अते ग्रैंडफादर दोवे स्पोर्ट्स करेंदे हन तां असां दे इंडिया दा कल्चर ए जदों भी कोई त्यौहार थींदा है जिवें दिवाली जिवें नवा साल तां असां अपने घर दी सफाई करेंदे हां। मैं अपने फादर दियां ट्रॉफीज अते मैडल्स दी सफाई करेंदा हां तां मेरे को बहुत चंगा लगदा है। मैं बहुत खुश थी ना हम तदन जदों मैं कोई ट्रॉफी साफ करदा हां तां मैं पुछदा हां कि भाई ए ट्रॉफी कित्थां जित्ती, ए मैडल कित्थां जित्या, ए फोटो कढ़ण दी है। तां फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनेंदे हन कि भाई मैं इत्थे खेडण गया, मैं ए नेशनल मैडल जित्या, मैं अपनी टीम को इंदे विच जितवाया। तां फिर मैं भी उन्हां को आखदा हां कि भाई मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करन वेंदे हन मॉर्निंग विच तां मैं उन्हां को आखण लगा भाई मेरे को भी घिनवन जिया करो अपने नाल। तां मेरे को घिनवन जण लग पए तां उन्हां जिहड़ा अपनी गेम स्पोर्ट्स विच सिख्या हा वो मेरे को सिखावण लगे तां मेरा इंटरेस्ट बढ़न लग्या। मैं उसैन बोल्ट दा वर्ल्ड रिकॉर्ड टुटदा होया डिठा। तां एक स्टोरी ए फनी, मैं हुणे टीवी देख रहा हां तां मम्मी ने मेरी टीवी बंद कर दिता कि हाली बेटा पढ़न दा टाइम थी गया तुसा पढ़ो। तां मैं आख्या भाई ठीक है तुसा मेरे को टीवी नहीं वेखण देंदे, एक दिन इंझा आसी तुसा मेरे को टीवी विच गुलेसो कि देखो गुरविंदर दौड़ रहा है। तां मेरे को भी खुशी थींदी जदों मेरी मां मेरे को टीवी ते दौड़दा वड़ देखदी है। प्रधानमंत्री वाह वाह वाह बड़ी शानदार गल है भाई तुसा दी। तां गुरविंदर वीर हां जी मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर ओ भी वॉलीबॉल खेडदे हन, घर दी प्रॉब्लम दी वजह नाल उन्हां अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दित्ती। उन्हां दा जिहड़ा सपना पूरा करन वाला रह गया तां उन्हां मेरा अंदर ओ सपना डिठा भाई मेरा बेटा ओ सपना पूरा करे सी। तां मैं उन्हां नाल गल करदा हां, फिर सुनदा हां कि मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करेंदे हन। मैं उन्हां को आखदा हां कि मैं भी एक दिन तू साडा सपना पूरा करे सां। तां आखदे सपना पूरा इवें नहीं थींदा, उहदे वास्ते बहुत हार्ड वर्क करना पैंदा है, मेहनत करनी पौंदी है। मिल्खा सिंह जी खून दी उल्टियां करेंदे हन, धुप विच भजदे हन, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करेंदे हन। तां ओह चीज मेरे को इंस्पायर कर दिया हन। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करेंदे हन कि मैं भजसा तां अपने देश वास्ते मैडल लियावां जितां। अतः ए भी हा कि भाई जदा मैं इवेंट चूज की

था 100 मीटर था, तां सारे मेरे को आख दे हैं कि भाई 100 मीटर ना करो, 100 इंडियन का इवेंट कैनी, इंडियन की बॉडी 100 मीटर वास्ते बनी ही कैनी। तो मेरे फादर हमेशा आखते हैं कि हरी गोविंदर असा यह चूज किया है, असा इन्हें पछा कहना हट सू, जेडे असा को आखते हैं कि भाई असा नहीं कर सकते, असा उन्हें को करके देख सू, तो तू करके दिखने से मेरे को तेरे ते भरोसा है। तो वह भरोसा जो मेरे फादर ने मेरे ते किया, तो मैं वह भरोसे को अपनी हिम्मत बढ़ा के मैं चलिया। अतः मैं आज हर इंडियन को आखदा हाँ कि भाई इंडियन स्प्रिंट कर, प्रधानमंत्री देखो तुसा दुए ने बहुत वड्डा कमाल किया है, अतः सिर्फ 2 दिनों के अंदर तुसा दुए ने 3 बार नैशनल रिकॉर्ड तोड़िया है। 100 मीटर रेस विच दौड़ना, जिवें गुरविंदर वीर ने आख्या कि लोग आखते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन ही कम वास्ते ये ही कहना, इतना औखा होंदे हुए भी तुसा कम किया, तो यह दुए तुम्हें जानना चाहसा अतः मन की गल के श्रोता भी सुनना चाहसन कि कहड़ा जज्बा हा, कहड़ी जिद हाई, क्या सोचा हाई, अतः किवें करदे पाए हावे, ये कितना औखा थींदा है। गुरविंदर वीर जी सर, मैं गुरविंदर, मैं जडन स्टार्टिंग विच सर बहुत स्ट्रगल आई, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हाँ, मैं सही चूज किया है, क्योंकि हर बार तुसा ने जितने कढ़ाई कढ़ाई तुसा सीखते हो, जब मैं हारदा हूं, जब मेरी सही परफॉर्मेंस नहीं आती है, कोई इंजरी आवेंदी है, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करेंदे हन कि भाई कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इनके नाल जिंदगी खराब नहीं थी, सपने देखना नहीं छुड़ेंदे। तो मेरे कोच ने भी मेरे को यह सिखाया कि जे तू नहीं करे से तो कोई होर नहीं कर सकती। तो इसे जब असा की कम्यूनिटी साढ़े आस पास लोग असा को उत्साहित करेंदे हैं, तो साडा कदे भी मोटिवेशन नहीं टुटदा। प्रधानमंत्री अनिमेश जी, अनिमेश सर, मेरे को सारे लोग आखते हैं कि जब मैं 2021 चालू किया एथलीट्स, तो मेरे को आखते हैं कि देख ये नवा फील्ड है, तू कर सकते कि नहीं, तो मैं आख्या कि हम मैं ही फील्ड विच घुसया हाँ तो करे साई। मेरे पापा भी हमेशा मेरे को आखते हैं कि तू ही फील्ड विच घुसया है तो कदे पछा मुड़ के देखी ना, क्योंकि सोचते तो सारे हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कम ही दिख लेंदे हैं। तू बस ही फील्ड विच घुसया तो इन्हें अमल रखना, इन्हें ते अगू बढ़ना है, तेरे को सारी फैसिलिटीज सभ्य असा सपोर्ट करे सू, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सभ्य चीज असा लोग करे सू, बस तू मेहनत कर ते इंडिया को दिखा कि इंडियन भी बच सकते हैं, क्योंकि ये मेरे को भी लोग आखते हैं कि इंडियंस दे जींस इंजे नहीं है कि वो सब डा या सब डा फीसदी वन दे अंदर बच सकते हैं या कोई वो स्प्रिंट कर सकता है, पर हाल ही असा दुए ने इंजा प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, इंजा कोई हार्ड नहीं, ये असा वास्ते असा भी सब कुछ कर सकते हाँ। तो सर ये सारी चीजा मेरे को बहुत मोटिवेट करेंदिया है, जिवे जिवे असा ट्रेनिंग कर रहे हैं असा होर टाइमिंग तोड़ेंदे पाए हैं, अपना तो बाकी इंडियंस को भी ये चीज विखा रहे हैं कि इंडियंस भी कर सकते हैं, तो असा बिया करे सू सर, उन्हें असा डूए का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम वास्ते भी थी आए, तो उत्था अपकमिंग कंपीटिशन विच असा होर चंगा परफॉर्म करे सू। प्रधानमंत्री अच्छा देखो मेरे मन में भी एक कुतूहल है, अतः लोगों को भी होसी, मैं सुनया है कि तुसा डूए चंगे दोस्त भी हो, तुसा डूए ने कुछ ठान रखा है कि तू मेरा रिकॉर्ड तोड़िया तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ ले सा, क्या पहले अनिमेश बता दे। अनिमेश सर जी पहला रिकॉर्ड 9.18 का हा जो मेरा ही हा, बोला गुरविंदर वीर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिता 9.17 करके, तो मैं फिर उन्दे को सेमीफाइनल 9.15 करके तोड़ दिता, तो उस वे जब मेरा सेमीफाइनल थिया तो असा डूए ही खुश आसे कि हां ठीक है अजय कौर टूटिया तो चलो असा डूए ने तोड़िया इंजा, क्योंकि उस वे कंपीटिशन विच राइवलरी रहंदी है, पर असा डूए पहले तो ही ठान के रखा हा, पहले नाल ही हूं करनू पहले असा लोग साउदी अरबिया भी गए हासे कंपीटिशन करन वास्ते, तो उत्था भी असा डूए रूममेट्स हासे, तो असा डूए उत्था भी गाल करेंदे हासे कि इंडिया दी स्प्रिंटिंग को अगू घन वजना है, असारे ही हथा विच चीज असा जेड़ा करे सू उ बाकिया को मोटिवेट करे सी। प्रधानमंत्री गुरविंदर वीर क्या आखना चाहसो। गुरविंदर वीर असा दुए ने डिसाइड किया हा कि असा दुए चंगा भज सू, तकनाई भी सर एक दूजे को जरूरत थी है, एक दूजे के नाल खड़े थीं,
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ ਕੋ ਦੱਸਿੰਦਾ।

0: आहिनि, उन्हनि खां पुछाणो, उन्हनि जी सराहना करो, उन्हनि तो सिखो ऐं तुंहिंजे थी सघे त खुद ई कुझु अछे कम नाल जुड़ो। अगले महीने मन दी गल विच कुछ होर प्रेरक गाथावां दे नाल मैं फिर तुसा नाल जुड़सा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आप सुन के पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दी मन दी गल दी किश्त 134वीं। ये प्रोग्राम दे प्रस्तुतकर्ता हन डॉक्टर सुरेश मीना।
1: हुणे तुसी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दे मन दी गल दा सराइकी तर्जुमां सुन रहे सी। आ सुन दिया देश प्यार दा गीत।

दार्शनिक ने बड़ा ही सटीक कहा कि ईश्वर ने मां दी रचना इसलिए की थी क्योंकि वो हर जगह नहीं पहुंच सकते। सो ये बड़ी ही प्यारी गल, वाकई ही मां रब दा रूप है। जिस तरह परमात्मा अपने सज्जना नू सांभ के रखदा है, उन्हों हर थां ते बचाउंदा है, उसके विकास ले पूरा यतनशील हुंदा है, उसी तरह मां भी अपनी संतान नू पूरी तरह प्यार करदी है, उन्हों हर चीज सिखाउंदी है, उन्हों अगे वधाउण लई प्रेरणा दिंदी है। इस अलावा उहदी जिंदगी दा जो भी संघर्ष है उसदे विच उहदे नाल हमेशा खड़ी हुंदी है।

Mm-hmm.

होगा।

नशा जरा दे ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਹੋਊਗਾ।

0: नहीं नहीं मेरा मतलब है मेरे बड़े भाई जी बिगड़े काम बनारे
1: मेहरबानी
0: तेन सुन गावे उठावा।

man like me, baby, I got money, yeah.

Oh, yeah.

0: अच्छा पुत्र, अपने नानके दा घर तेनू दिखाउण दा मकसद समझे?
1: दादू मत्था टेकना, दर्शन मेला करना, या तुसी लड्डू चढ़ाउण दी कोई सुख सुखी हो?
0: सुखा सुखन तेरे दादू दा विश्वास नहीं करते, वो संकल्प लैण दा आती है। बाकी मत्था तां आपां पिंड दे गुरु घर विच वी टेक सकदे सी। चल छड़े दस, गुरु घर च तूं की खास देखिया?
1: दादू छेवीं पातशाही दा अपने हथी वट्टिया होया वाण, गुरु साहब दी जुत्ती दा एक पैर, हथी लिखी पोथी ते 52 कलियां वाला बंदी छोड़ चोला।
0: तू मकसद दे नेड़े पहुंच गया पुत्र। देख भाई, मेरी पीरी दी उच्ची पदवी पा के भी गुरु साहब ने हथी किरत करनी नहीं छड़ी। वेले समय वो वाण वट दे, पोथी नहीं पढ़ते होंगे। अखरां जां शब्द नाल जुड़ना मनुख दे हिस्से आया काका जी। गुरु साहब ने अपने भले बारे नहीं सोचा, पर होरना भी बद्दी छुड़ा दिती। जोड़े दा पैर ये जाहर करदा कि पावे समा बहुत बलवान है, पर महापुरुष इस उत्ते भी नेकी दियां पैड़ां छड़ जांदे। पुत्र जी, अव्वल ते आखरी गल यह है कि मेरे मामे दा हसदा वसदा घर क्यों उचलिया? तेनू इस सवाल ते उसके जवाब दा सिमरन करते रहना पेगा इसप्रीत सिंह।
1: ठीक है दादू। दादू ये संकल्प की हुंदा?
0: मन विच कोई इच्छा तारना, अपने अंदरले नाल कोई कुछा वादा करना, जिदा जीवन विच आ कम करना ही करना। ओ मिथ्या है निशाना, मन नू वार वार याद कराउंदे रहना।
1: ते दादू जदों कोई सुख सुख लैंदे आ तां उदों वी तां बंदा यही कुछ करदा?
0: करदा ही कुछ है पुत्र जी, पर किसी बाहरली काल्पनिक शक्ति की मदद नाल। इस दे उल्ट संकल्प करना इंसान ता अपना मन ताकतवर बनता, उसका इरादा मजबूत हुंदा, ते मन दी मजबूती बंदे तो असंभव कारज भी करा लैंदी है पुत्र जी।
2: आखिर ओ दिन भी आ गया जदों इशप्रीत सिंह ने पढ़ाई करन दे ओले कनेडा जाना सी। सुरूप सिंह दे दोस्त छिंदे पंज कहिए ने अपना सिरनामा भेज दिता सी, ते ए वादा कर दिता सी कि वो आप आके हवाई अड्डे तो इशप्रीत नूं अपने घर लै जाएगा। सुरूप सिंह ते इशप्रीत नाल दिल्ली हवाई अड्डे तक इशप्रीत दी मां नरेंद्र भी जा रही सी। सुरूप सिंह ने राह विच भी अपनी हड बीतियां सुना सुना के अपने अड़के आए हुए दोहां स्रोतियां दे हड हिलाए हुए सन। नरेंद्र सुरूप सिंह नूं बोलणों वर्ज नहीं सी सकती, पर यह कई बार सोच चुकी सी कि निज वह इशप्रीत नाल दिल्ली जाण लई राजी हुंदी। मुसाफरां नूं जहाज विच बिठाउण लई अजे 2.5 घंटे का समा पिया सी, जिस करके सुरूप सिंह ने इशप्रीत नूं सुनाउण लई सिरे दा प्रसंग शुरू किया।
0: देख भई पुत्र इशप्रीत सिंह, सुन लै मेरी गल, कमाई करनों बगैर बाहरले मुल्क च सरदा नहीं है। गड के मेहनत करी ते उधरन दी लोड़ नहीं, और घर वसाउण खातर पहला घर छड्डना कुदरत दा असूल है। अपने वडेरियां दी पीढ़ी दर पीढ़ी चलदी आई रीत मुताबक तू किरत दा तकिया रिजक ले कनेडा आया। कल नूं तेरे न्याणे इस मकसद ना पता नहीं उत्थों होर किहड़े देश चले जाण, पर इन्ना याद रखी पुत्र, किरत सुची करनी। दूजी गल, अपने घर नूं कदे ना भुल्लेगा। असि केड़े हाले तक हूं दिन कट्टी करदे आए, नीत शुद्ध रखनी। काका जी सब तो जरूरी था किते मेरे आड़ी छिंदे पंज करिए आंगू कोल्लू दा ढागा ना बनिया रहे। इधर उधर घूमना, दुनिया देखनी, लोकां नूं मिलना गिलना, हसना खेडाना भी जरूरी हुंदा पुत्र।
3: सिर रह गया मेरा पर इस बंदी दी तार तार सुनदी दी, तानिया इहदी तानिया इहदा सिर। मुंडा मेरा घड़ी मुड़ी मेनू मुंह ते उंगला रख रख के अगो ना बोलन दे इशारे कर करके थकिया होया। चल ये तां जहाजे चढ़ के भोरा अख ला लो, पर मेरा की बनू, मूर्ति होई नूं इहदी भकाई सुननी पैणी।
0: तू सुणदा पिया ना इशप्रीत सिंह?
1: हां जी हां जी दादू, तुहाडी इक इक गल बड़ी कम दी गल है।
0: फिर होर सुन, मैं जदों छिंदे नूं कहना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाई ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाई का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और

0: ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जगत सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को राम राम।
1: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे जो किसान भाई हैं वो इंतजार करते हैं कि आज हमारे कार्यक्रम में क्या खास होगा, तो हम उनके लिए मनोरंजन भी लेकर आए हैं और जानकारी भी लेकर आए हैं।
0: जी हाँ, और आप जानकारी दे रहे हैं कि धान की नर्सरी जो है ना, अब खरीफ का सीजन आ रहा है, तो नर्सरी जो है कि बुनियादी चीज है धान की फसल के लिए, तो नर्सरी तैयार कैसे करें, इसमें सबसे पहले हमारे जो है कि किसान भाई बहन ये करते हैं कि खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। बेहतर हो कि एक सिंचाई के बाद मिट्टी को भुरभुरा कर लें, अच्छा कर लें, और उसमें जो है कि अगर कंपोस्ट है, गोबर की खाद मिल जाए तो वो डालें, और उसमें जो है कि जिन भी किस्म उन्नत किस्म तलाशें बेहतर है उसके बीज जो है कि बोने की शुरुआत करें, और उसको जो है कि बहुत घना नहीं और बहुत ज्यादा जो है कि मिलर भी नहीं, तो ऐसा हो कि जो बीज है उसको पूरी नमी और पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा में खाद भी मिले, और एक हल्की परत उसके ऊपर लगा के उसको जो है कि ढकने की कोशिश करें।
1: भाई आपने बीज की बात कही है, तो जो बीज का चयन है और फिर उसका उपचार वो बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित और रोग मुक्त बीजों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। बीजों को बोने से पहले उसका उपचार करना चाहिए ताकि जो रोग है उस बीज में या जो अगर कोई कीट है तो वो उसका खतरा खत्म हो जाए। बीजों को फफूंद नाशक दवा जैसे कि आपने कहा,
0: हाँ,
1: या फिर जैविक उपचार के माध्यम से भी आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। और धान के बीजों को पहले 24 घंटे पानी में भिगोया जाता है और फिर उसका जो धान है उसको अंकुरित होने के लिए रखा जाता है। अंकुरित बीजों को तैयार नर्सरी में समान रूप से बोया जाता है और इसके बाद हल्की सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे
0: और वो जो अंकुरण है वो अच्छी तरीके से जो है कि मिट्टी में अपने आप को स्थापित कर सके, उसके जड़ और वो निकल सके।
1: बिल्कुल। और अब हमने जैसा कि कहा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे, तो आइए लेकर आए हैं हम एक रेडियो रिपोर्ट जो कि है राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन पर आधारित खरीफ अभियान पर। ये रेडियो रिपोर्ट है और इसमें प्रस्तुति सहयोग दिनेश कुमार और विशाल कुमार का है। आइए सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।
2: दिनांक 28 से 29 मई 2026 तक दिल्ली में नास कॉम्प्लेक्स के सी सुब्रमण्यम सभागार में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2026 खरीफ अभियान का आयोजन किया गया। विगत दिनांक 29 मई 2026 को इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक एवं किसानों ने भाग लिया और कृषि के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। इस अवसर पर DGICR सेक्रेटरी डियर डॉक्टर मांगीलाल जाट ने अपने उद्बोधन में कहा,
3: भारत 2047 में विकसित और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और उसके लिए कृषि काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम 2047 की बात करते हैं, वैसे ये खरीफ कॉन्फ्रेंस है लेकिन हर सीजन मैटर करता है, तो हम सिर्फ एक खरीफ की बात ना करते हुए उस खरीफ की भी प्लानिंग 2047 के कॉन्टेक्स्ट में करें, तो उसी दिशा में यदि हम देखें कि आज हमारा जो क्षेत्र है धान का, गेहूं का, मक्का का, न्यूट्री सीरियल्स का, दलहन का, तिलहन का या हॉर्टिकल्चर का, वो जितना है यदि हम इसी तरीके से चलते रहे तो 2047 में हमें कितना क्षेत्र चाहिए, और यदि हम हाई यील्ड ग्रोथ के साथ में और डाइवर्सिफिकेशन के साथ में जिसकी जरूरत है तो वो कितना चाहिए। और मैं धान का एग्जांपल दूं कि अभी लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जिस तरीके से चलते रहे वो 52 के लगभग होगा क्योंकि स्टेबलाइज भी होगा, लेकिन हमें उतने की जरूरत नहीं है। 2047 में 35 मिलियन हेक्टेयर से भी हमारा काम चल जाएगा। दलहन और तिलहन में हॉर्टिकल्चर में बढ़ाने की जरूरत है। यदि आप टोटल जोड़ेंगे तो कहेंगे कि ये इतना एरिया कहां से आएगा, हमें इंटेंसिफिकेशन पे जाना पड़ेगा, और उसके साथ में अभी हमारी जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी को बिजनेस एज यूजुअल में हम कहां तक ले जा सकते हैं और हाई यील्ड ग्रोथ सिनेरियो में कहां तक ले जाना है, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। यदि हम आज के डेट में टोटल हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को देखते हैं तो 1.5 बिलियन टन है। 2047 में बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो में चलेंगे तो 2.67 बिलियन टन होगा, लेकिन यदि हम हाई यील्ड ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के सिनेरियो के साथ में जाएगा, वो सस्टेनेबल भी होगा, तो हम 3 बिलियन टन पे जा सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत भी है क्योंकि इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से आएगा। मोदी, यदि हम देखते हैं 1960 से शुरू करते हैं तो एवरेज फर्टिलाइजर यूज और आज का जो 2 किलो से 180 किलो बढ़ा है, लेकिन साथ साथ में हमने क्या खोया है, यील्ड रेस्पॉन्स है वो 30 किलो से 3 से 8 किलो पे आ गया, और जो हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब जितना डाल के जितना निकाल रहे थे वो लगभग 45 से 50 किलो था, वो आज 8 से 15 किलो पे आ गया। और ये स्थिति ठीक नहीं है, इसी स्थिति से गए तो 2047 में हम कहां होंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है, और उसी दिशा में हमारा विकसित कृषि का रोडमैप बनाने की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं कि जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जितना शेडेड एरिया है वो एरिया जहां पे हम आवश्यकता से ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। हमने देखा कि देश के 180 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो आवश्यकता से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नाइट्रोजन डाल रहे हैं, कुछ जिले ऐसे भी हैं जो आवश्यकता से 300 किलो से ज्यादा पर हेक्टेयर यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सही दिशा में नहीं है, और उसके लिए हमने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी कृषि मंत्रालय ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सर्कुलेट भी किया होगा सारे राज्यों को, आईसीएआर ने उसको बनाया है कि कितना फर्टिलाइजर साइंटिफिक बेसिस पे हमें डालने की जरूरत है ताकि हम इसका अंधाधुंध उपयोग ना करें। वो भी हमारे रोडमैप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे जो हमारा जो ग्लोबल सिनेरियो है, मेगा ट्रेंड्स है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इतने सारे और चैलेंजेज हैं, चाहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के हो, चाहे क्लाइमेट चेंज के हो, चाहे बायोडायवर्सिटी लॉस के हो, चाहे हमारा सस्टेनेबल और हेल्थी डाइट न्यूट्रिशन की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा फोकस करते हैं न्यूट्रिशियस फूड की, तो सेहत के कॉन्टेक्स्ट में, सोयल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है आत्मनिर्भरता पल्सेज और ऑयल सीड की जब हम बात करते हैं उसको कैसे लेके आएंगे, जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको डबल करना है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को डबल करना है ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम करें, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर में इम्पोर्ट को हमें मिनिमाइज करना है और एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमारा रोडमैप उसी दिशा में होना चाहिए। उसके साथ साथ में जो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट है उसको भी ध्यान में रखकर हमारा रोडमैप बनना चाहिए, और खेती को प्रोफेशन ऑफ चॉइस बनाने के लिए स्पेशली यूथ के लिए वो हमारे रोडमैप का हिस्सा होना चाहिए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें काम करने की जरूरत है।

0: मोदे आइंस्टीन ने कहा था कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम. तो इसका मतलब है कि वी नीड बिजनेस अनयूजुअल. बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं खेती में, वो आइसोलेशन में सॉल्व नहीं हो सकती. उसके लिए एक सिस्टम्स अप्रोच चाहिए, उसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, उसमें होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच चाहिए. और इसीलिए माननीय मंत्री जी ने टीम एग्रीकल्चर की बात की. और मुझे लगता है टीम एग्रीकल्चर का मतलब है शेयर्ड विजन एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर आवर सिक्योर्ड फ्यूचर. एंड मुझे लगता है ये टीम उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, एक्शन प्लान हमारे रोड मैप बनाने के लिए.
1: खरीफ कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्रालय के सचिव आतिश चंद्रा ने अपने वक्तव्य में कहा,
2: किसी खरीफ कॉन्फ्रेंस जो इस बार आयोजित की गई तो उसमें हम लोग ने जो इसका प्रारूप माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से बनाया उसमें यह था कि हम लोग हमेशा अपनी बात कहते हैं, राज्यों को भी हमको सुनना चाहिए. तो पहले दिन सभी प्रेजेंटेशन राज्यों द्वारा बनाए गए और हम लोग ने तीन ग्रुप में राज्यों को बांटा था और उसमें भी सब राज्यों को मिक्स किया गया. ऐसा नहीं कि हम लोग ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में राज्यों को बांटा, हम लोग ने पूरे देश के राज्यों को इस तरह से संगठित किया कि सभी क्षेत्रों का समागम हो सके और उनको डिफरेंट डिफरेंट राज्य की क्या अनुभव है वो भी समझने और देखने और साझा करने का मौका मिले. लेकिन जो हमारा केंद्र सरकार की प्रायोरिटीज और इनिशिएटिव्स हैं उनको हम इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स में विभाजित कर सकते हैं. पहला देखिए सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर और हमारा उद्देश्य क्या है, हम फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं और ये मुद्दा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे केंद्रित है. दूसरा जो है वो ये है कि इनकम सपोर्ट क्रेडिट रिस्क कवरेज और डिजास्टर मैनेजमेंट. तो किसान को जो भी हम सपोर्ट करें उनका इनकम और रिस्क को कवर करने के लिए वो एक हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल. आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि आईसीआर के डीजी साहब और डेयर के सेक्रेटरी सर ने बताया कि कैसे हमारी चुनौतियां हैं, जिसको करने के लिए क्या क्या हमारे लिए एक्शन पॉइंट्स हैं और हम जो एक कृषि रोडमैप की बात करते हैं वो ये सबको समाहित करेगा. फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो है कि हमको डाइवर्सिफाई करें, तो हमारा उद्देश्य यह रहना चाहिए हम कैसे इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें और इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट्स, हमको वो उगाना है जो विदेशी मार्केट्स में हमारे मार्केट उपलब्ध हो सके. जो इनपुट यूज एफिशिएंसी है वो हम लोग की जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस डेवलप हुई हैं ओवर द इयर्स उसमें ये एफिशिएंसी लगातार घटती जा रही है, चाहे वाटर हो, सीड हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो. तो इस व्यवस्था को भी हमको सुदृढ़ करने की जरूरत है. बहुत सारे सॉल्यूशंस डिजिटल एग्रीकल्चर और आईटी इनिशिएटिव्स का एक एग्रीकल्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और राज्य के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. अब इन सबको एक संग लाने की जरूरत है, जो कि एक प्रयास डिजिटल एग्रीकल्चर का चल रहा है उसमें राज्यों का बहुत बड़ा भूमिका है. जो वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और मैकेनाइजेशन, इसमें जो प्रिसिशन फार्मिंग की तरफ हमें जाना है उसका भी एक इनिशिएटिव हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गोइंग फॉरवर्ड. और लास्ट है कि इनोवेशन, एक्सटेंशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारे इंडस्ट्री का रोल है, जो हमारे स्टार्टअप्स का रोल है और प्लस हमारी एक्सटेंशन मशीनरी का ये रोल हमारा, तो ये हमारे लिए पूरा रूप से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है. और आप देखिएगा कि भारत सरकार की जो योजनाएं वो इन सभी को कहीं ना कहीं छूती हैं, जो हमारी सेंट्रल स्कीम्स है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है. तो कल की जो चर्चाएं हुई और जो हमारी प्रायोरिटीज केंद्र सरकार की रही है, लेकिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इससे हम आगे अपनी सारी स्कीम्स को और सारी सर्विसेज को इसके मैकेनिज्म से डिलीवर करना चाहते हैं और हम अपने जो एग्रीकल्चर का डेटा है उसकी असिमेट्री को खत्म करना चाहते हैं. तो ये दो बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ इस इनिशिएटिव की स्वीकृति केंद्र सरकार से हुई है. अभी तक हम 9.76 करोड़ फार्मर आईडी बना चुके हैं और इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है. पिछले 2-3 महीनों में बहुत तेजी से कई राज्यों ने इसमें उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन ये काम एक कैंपेन मोड में ही हो सकता है, ये रूटीन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है. दूसरा था कि हमारे बहुत सारे कृषक ऐसे हैं जो कल्टीवेटर्स हैं, वो लैंड ओनर नहीं है, तो उनको हम कैसे फार्मर आईडी क्रिएट करें, ये अनुरोध सब राज्य सरकारों को भेजा गया था और बहुत मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राज्यों को कि इसमें सभी राज्यों ने पहल की और कुछ राज्य कल अपनी प्रस्तुति के दौरान जो उन लोग ने सॉल्यूशंस सामने रखे वो मतलब बहुत ही प्रेरणादायक थे और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब हम इस दिशा में बढ़ गए हैं कि इस एक बहुत बड़ी समस्या हमारे कल्टीवेटर्स को आइडेंटिफाई करने की, उसका काम अब हम बहुत जल्दी पूरा कर सकेंगे.
1: इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा,
3: मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख है कि सही समय पर सब किसानों के पास बीज उपलब्ध नहीं हो

पाता, और बीच के मिनी किट हम बांट दें। कई बार मिनी किट बटते तब है जब बोनी हो जाती है कुछ जगह में, सब जगह की बात नहीं कर रहा। इसलिए सभी राज्य समय पर अपना बीज उठा लें और किसान तक पहुंचा दें, यह सबसे प्राइमरी काम है हमारा। और यह समय पर पहुंचा दिया तो अपने आप उत्पादन बढ़ जाएगा। कुछ राज्य में नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ब्रीडर सीड भी पूरा नहीं उठा दे टाइम पे। आपको ब्रीडर सीड उठाना चाहिए टाइम पे। सब राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, कई उठाते हैं। और मैं फिर हमारी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सहित राज्य के बीज विकास निगम, बीज निगम सबसे अपील करता हूं कि यह बीज उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है। हम मिलकर इस काम को करें। एक एक आग्रह मैं जरूर आज करना चाहता हूं। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन इस साल जिस तरह की खबरें आ रही है, हम डरने वाले नहीं है। जो परिस्थिति होगी उसका मुकाबला करेंगे और देश को हर संकट के पार निकाल के ले जाएंगे, लेकिन आपातकालीन व्यवस्थाएं बनाना जरूरी है। एल नीनो के प्रभाव के कारण कुछ दिक्कतें हो सकती है, अभी स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन हम देख रहे हैं मानसून कुछ लेट हो गया है, बीच में बारिश में गैप हो सकता है, और इसलिए सूखा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी भी हम सबको करनी पड़ेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमने लगभग 1,74,000 क्विंटल का एक राष्ट्रीय बीज भंडार आवंटित किया है। जहां जैसे बीज की जरूरत होगी हम पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप आपात स्थिति अगर वैसी आती है तो अपनी तैयारी भी रखें। अलग अलग जिलों का प्लान भी बन रहा है कि अगर कम बारिश हुई तो हम क्या करेंगे। होगी ही कम, ये मैं नहीं कह रहा बिल्कुल अभी, लेकिन तैयारी इसकी जरूरत है। एक और मेरा आग्रह है, खराब गुणवत्ता वाले बीजों को ना जाने दें, उसके लिए प्रभावी मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। हमको सीड रिप्लेसमेंट की दर कैसे और बढ़े इसकी कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। एक सॉयल हेल्थ कार्ड कई राज्यों ने बताया बने हुए हमारे, लेकिन मित्र दिल पे हाथ रख के सोचो कितने किसान उनका उपयोग करते हैं। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका उपयोग हो। अगर वो उपयोग करेंगे तो पता चलेगा कि यूरिया कितना डालना है, डीएपी कितना डालना है, काय की कमी है। तो ये हमको लीड करना पड़ेगा खेत बचाओ अभियान में। आपका स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड ये कहता, हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया, उर्वरकों का वो उपयोग घटाया। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई उभर के आई थी तो किसानों ने यही कहा था, घटिया से बचा लो, नकली से बचा लो। और मैं सब अफसरों से भी कह रहा हूं इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी जो कीटनाशी अधिनियम है, हालांकि वो कमजोर है और हम लोग अभी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, कोशिश रहेगी कि संसद के अगले सत्र में अगला नया पेस्टिसाइड एक्ट लेके आए जो बहुत कठोर और प्रभावी हो। नकली बेचने वाले, नकली बनाने वाले दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। वो राष्ट्रीय अपराध एक तरह से करते हैं, किसान की बर्बादी का कारण बनते हैं। इसलिए हमको उस पर प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में मुझे एक बात करनी है, वो है खेत बचाओ अभियान की। खेत बचाओ अभियान ये आपके बिना नहीं चल सकता। 1 जून से 30 जून तक, 1 जून लगभग आई गई है, आज उसका पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। आप सबको भी निकलना पड़ेगा, मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलें, बाकी मंत्रियों से भी कहें, केंद्रीय मंत्रियों से कहें, विधायकों से कहें, सांसदों से कहें, जनप्रतिनिधि लीड करें तो स्वीकारिता बढ़ती है। और खेत बचाव में माटी में कौन से तत्व है वो सब देख के, कौन सी फसल, कितना खाद, कौन सा पेस्टिसाइड। अभी हमने एक प्रयोग के बारे में और आपसे शेयर करना चाहता हूं, मित्र कीट भी पेस्टिसाइड की आवश्यकता उसको कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे कीट जो दूसरे हमारे शत्रु कीट है फसलों को, उनको ही खा जाते हैं। इसके बारे में भी बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, आईसीआर काम कर रहा है। खेत बचाओ अभियान में आप इस सब चीजें जोड़ सकते हैं। बीजों के मिनी किट देना अभी दो ना, आप जनता के सामने दो, बड़े कार्यक्रम नहीं करना, गांव का ही कार्यक्रम करना है। 100-200 लोग आएंगे किसान और उनके सामने प्रस्तुतिकरण होगा वहां की परिस्थिति के हिसाब से। दूसरे अंबा योजनाओं का लाभ बांट दें, केसीसी बन रहे, केसीसी बांट दें अंबा। किसान सम्मान निधि में कोई रह गया है औपचारिकता पूरी करके, उसका लाभ हम दे दें। हमको कोई मैकेनाइजेशन का लाभ देना, जनता के सामने दो ना। बेईमानी तब नहीं होगी जब सबके बीच में हम योजना का लाभ देंगे। मैं कहता हूं कि जितनी योजनाओं के लाभ अभी 6 महीने के विद इन 6 मंथ

0: हम इस खेत बचाओ अभियान में दे दें औपचारिकताएं पूरी करके, यहां से मदर सेंक्शन जारी हो गई, आप औपचारिकताएं पूरी करो, ड्रिप देना है आपको, स्प्रिंकलर देना है, मैदान में दो ना गांव में सबके सामने, तो हम योजनाओं का लाभ भी उनको ढंग से बांट सकते हैं, जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं, कितना खाद डालना है वो भी बता सकते हैं। इसको बहुत गंभीरता से हम चलाने की कोशिश करें खेत बचाओ अभियान की।
1: विगत दिनांक 29 मई 2026 राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। स्वर मंजीत कौर, प्रस्तुति सहयोग विशाल और दिनेश, संयोजक शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
2: तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान पर ये रेडियो रिपोर्ट।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं ओमवीर आर्या की आवाज में ये उपदेश।

0: तो अभी आपने सुना ओम बिरारिया की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा उपदेश।
1: और इसी के साथ इस जगत कार्यक्रम में हम आपसे लेते हैं विदा।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।
1: सभी ग्रामीण साथियों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आनंद लेते हैं हमारे अगले कार्यक्रम का, और इसके अंतर्गत सुनते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत गजल का हमारा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत खूबसूरत सी गजलें हमने आप सभी को सुनवाई। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: बुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो
4: शुरुआत करो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए। दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दी। इससे पंजीकृत लगभग 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा स्वनिधि में बिना गारंटी के ऋण वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2015 से लागू 20,000 रूपये प्रति एकड़ की पुरानी दर में वृद्धि की गई है। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसके अंतर्गत अगस्त सितंबर 2025 की अतिवृष्टि से ग्रसित किसानों को 75,000 रूपए हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे लगभग 10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ये निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसलें भारी वर्षा और उसके कारण खेतों में हुए जल भराव से क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहायता भूमि के अभिलेखित स्वामी को दी जाएगी। इसके अलावा कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा में निहित भूमि और पक्की चार दीवारी वाले प्लॉट स्वरूप के फार्म हाउस इस सहायता के दायरे में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस सहायता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाताओं के साथ सदैव खड़ी है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवा मिश्रा।

0: परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि परिवहन विभाग ने सिर्फ 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए जा चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि ये केवल निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा नहीं बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और डिजिटल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है।
1: मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में हमारे सारे अधिकारी ने मिलकर 10 लाख प्लस हमने पिंक सहेली कार्ड बनाए हैं और हमारी दिल्ली की माता बहनों को उसका लाभ मिले और वो प्राउड फील करें कि हमारे पास डिजिटल कार्ड है। जो सपना सोचा था वो सपने की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसका जितना लाभ मिलना मिले मैं उसी की प्रयास में हूं कि ये कार्ड कार्ड नहीं है, इसको बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है रिचार्ज करके।
0: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान श्री सिंह ने वहां के उद्योग संघ, फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों के साथ बैठक की और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को एक मजबूत जल निकासी प्रणाली बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया है कि यहां की आंतरिक सड़कों का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
2: एसआईडीसी में जो भी सड़कें बनने वाली हैं उनका 36 करोड़ रुपए का टेंडर मेरा वर्क हो चुका है। जो अंदर की सड़कें हैं और नाला है उसका काम तो हम अभी शुरू करा देंगे। जो बाहर की एक बड़ी रोड है और बड़ा नाला है उसके लिए भी हमने अलग से पैसा मांगा है। सड़कों के लिए, पिछले सड़कों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए हमने पैसे दे दिए हैं और ये आपका जो पानी बढ़ता है इसके लिए मैं आज या कल 2 दिन में जैसे भी होगा बैठक करूंगा और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल के दूंगा।
0: लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज देवली विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री के साथ दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्व, वन, दिल्ली पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जनहित से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्हें 360 में से 330 अंक मिले हैं। शुभम ने कहा कि ये उपलब्धि कई सालों के मेहनत का परिणाम है।
3: एडवांस के लिए हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे थे और तैयारी अच्छी चली रही थी, तो बहुत मेहनत करने के बाद तो लगता है कि अच्छा रैंक या अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो पहले से उम्मीद तो थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट आप ऑलिंडिया रैंक बन रही है तो अच्छा तो लग ही रहा।
0: उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। राजधानी के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आज स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन किया गया। ये 15 दिनों का स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान है जिससे इस महीने की 15 तारीख तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन और मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के दूरदर्शिता के अनुरूप स्वच्छता, पर्यावरण की देखभाल, टिकाऊ जीवन शैली और संरक्षण प्रयासों में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को प्रदान की जाने वाली एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय से दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत लगभग 1,832 जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। ये योजना केवल उन पंजीकृत जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों पर लागू होगी जिन्होंने 31 मार्च 2000

0: 24 तक राहत प्राप्त की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आय संबंधी पात्रता की शर्त को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के सुचारू संचालन के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पात्र जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवार को राहत प्राप्त करने में किसी प्रकार की घटनाएं का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के समान सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रवासी परिवार की आय कितनी भी हो या उनके पास कोई अचल संपत्ति हो, इससे राहत प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि एक परिवार में अधिकतम 4 सदस्यों तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रवासी परिवारों को अपने परिवार के मौजूदा सदस्यों की सही जानकारी और उनके आधार विवरण को अपडेट करने का एक और अवसर मिलेगा। इसके अलावा एडहॉक मंथली रिलीफ की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले 30 सितंबर 2025 तक की बकाया राहत राशि के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जन सेवा सदन में ककरोला गांव के निवासियों से बातचीत की। द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर द्वारका ककरोला किए जाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामवासियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश की रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे मार दे।
0: अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं और सभी बच्चों को सुरक्षित वातावरण, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समुचित पोषण प्रदान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 42 रूपये बढ़कर अब 3,113 रूपये 50 पैसे में मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज दिल्ली में लगी आग स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में लगी थी, न कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में। मंत्रालय का कार्यालय नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में स्थित है, जबकि आग लगने की घटना आईटीओ नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के परिसर में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं एशियाई अंडर 20 प्रतियोगिता चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शानदार प्रदर्शन भारत के युवा खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में उनके आवास पर हुआ। वे 89 वर्ष की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक शामिल होंगी। दिल्ली में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए। दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दी। इससे पंजीकृत लगभग 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: सरप्राइज होंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार्ड जीत गए थे तो
3: पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर पर एक विशेष फीचर, आशाओं के स्वर।

0: जाएं तो वो कैसा दिखेगा? शायद वो दिखाई नहीं देगा, वो सुनाई देगा। एक ऐसी ध्वनि बनकर जो समय के आर पार बहती रही हो, एक ऐसी गूंज जिसने शब्दों को सिर्फ कहा नहीं जिया है, जिसने एक अकेले ट्रांसमिशन की हल्की सी कंपन से शुरुआत की और आज डिजिटल आकाश में अपनी उपस्थिति को उतनी ही दृढ़ता से दर्ज किया है। भारत की धड़कनों में अगर किसी आवाज ने जनमानस तक निरंतर गूंज बनकर साथ निभाया है तो वो है आकाशवाणी। एक ऐसा मंच जिसने सिर्फ सूचनाएं नहीं दी बल्कि भावनाएं भी बांटी हैं। खेतों से लेकर शहरों तक, सीमाओं से लेकर घर के आंगन तक इसने हर उस आवाज को जगह दी है जो समाज को जोड़ती है। आकाशवाणी जो केवल एक प्रसारण सेवा नहीं बल्कि भारत की चेतना का वो अदृश्य तंत्र है जिसने मिट्टी से उठती आवाजों को, सीमाओं पर तैनात सन्नाटों को और घरों के भीतर धड़कते छोटे छोटे सपनों को एक ही तरंग में बांध दिया। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इतिहास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। ये भूमिका केवल भागीदारी तक सीमित नहीं रही बल्कि एक सशक्त उपस्थिति के रूप में सामने आई। शुरुआती दौर में जब रेडियो का विस्तार हो रहा था तब महिलाओं की आवाज का सार्वजनिक मंच पर आना एक बड़ा सामाजिक बदलाव था। उस समय महिलाएं उद्घोषिका के रूप में जुड़ी। उनकी स्पष्ट और आत्मविश्वासी आवाज ने श्रोताओं का भरोसा जीता। धीरे धीरे महिलाओं ने समाचार वाचन में भी अपनी पहचान बनाई। महिला समाचार वाचिकाओं ने देश दुनिया की खबरों को गंभीरता और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया। इससे श्रोताओं के बीच उनकी विश्वसनीय छवि बनी। क्या था वो दौर, कैसा था वो मंजर, जानते हैं आकाशवाणी की जानी मानी समाचार वाचिका चंद्रिका जोशी से।
1: आकाशवाणी से मैं 1989 से जुड़ी हिंदी उद्घोषिका के पद पर और 1993 में समाचार वाचक का एग्जाम पास करके ज्वाइन कर लिया था। लोगों में रेडियो के प्रति दीवानगी थी। लोग अपने प्रस्तुतकर्ता को सुनना और उससे मिलना चाहते थे। समाचार में इंदु वाही जी को मैंने पढ़ते देखा और कुछ बुलेटिन साथ पढ़े भी, शीला मेहरा या रविन्द्र सभरवाल। उस दौर में आज के जैसे तकनीक का अभाव था। लाइब्रेरी में बैठकर हम पढ़ते लिखते थे और समाचारों के प्रस्तुतिकरण में काफी बदलाव भी आए। चर्चा के कार्यक्रम काफी ज्यादा हो गए। सन 2000 में आकाशवाणी में कंप्यूटर आया, हमें ट्रेनिंग दी गई। आकाशवाणी के सफर में मुझे लगता है कि महिलाओं ने उसे संवारा है। महिलाओं की भूमिका

0: हूँ आयामी रही है, श्रोताओं के दिलों में अपनी पहचान बनाई, लोग नाम याद रखने लगे। रेडियो के सर्वोच्च पदों पर महिलाओं ने कीर्तिमान गढ़े हैं और 2400 घंटे काम करने वाली जगह पर समाज के दबाव से ऊपर उठकर शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हुए, जो कि हमसे पहले वक्त की भी एक बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन असल बात तो ये है कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है, ये आपके साथ साथ चलता है, आपको बैठने के लिए मजबूर नहीं करता और ये आपके साथ यूं ही चलता भी रहेगा।
1: 90 वर्ष ये सिर्फ समय की गणना नहीं, एक विश्वास की स्थापत्य कला है जो बिना दीवारों के खड़ी हुई संरचना है। तारों और टावरों से कहीं आगे दिलों के भीतर निर्मित हुई, जहां हर शब्द, हर विराम, हर धुन एक जिम्मेदारी बनकर गूंजी। सोचिए जरा, जब दुनिया तकनीक की परिभाषाएं बदलती रही, तब भी आकाशवाणी ने अपने स्वर की विश्वसनीयता को कभी डगमगाने नहीं दिया। खेतों में मौसम की सूचना हो, समुद्र में मछुआरों के लिए चेतावनी, कक्षाओं तक पहुंचती शिक्षा हो, सीमाओं पर गूंजती लाइव कमेंट्री, या फिर शाम ढलते ही फिल्म संगीत की वो मधुरता, आकाशवाणी हर रूप में एक जीवित, जागृत और जनमानस से जुड़ा हुआ संसार बनी रही। 26 जनवरी या 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्वों की लाइव कमेंट्री हर घर तक पहुंचती है। जब शाम को हवा महल की कहानियां मुस्कान बन जाती हैं, झलकियां यादों में बस जाती हैं और लोक संगीत हर दिल की धड़कन में शामिल हो जाता है, तब एहसास होता है कि ये सिर्फ प्रसारण नहीं, एक जीवंत परंपरा है। हर आयु, हर वर्ग और हर रुचि के लिए, चाहे घर परिवार से जुड़े कार्यक्रम हो, बुजुर्गों के लिए विशेष पहल हो, स्वास्थ्य और विज्ञान से जुड़ी जानकारियाँ, राजनैतिक चर्चाएं, साहित्यिक गतिविधियाँ, नाटक, संगीत रूपक, शास्त्रीय से लेकर वेस्टर्न म्यूजिक तक, युवाओं, महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम, हर दिशा में आकाशवाणी सदैव तत्परता से समाज के साथ कदम मिलाता रहा है। भारत में रेडियो संचार की दुनिया में एक ऐसे माध्यम के रूप में उभर रहा था जिसकी संभावनाएं असीम थीं और लोगों के भीतर इस नई तकनीक को लेकर उत्सुकता बढ़ रही थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये छोटी सी शुरुआत आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्षों से अधिक के गौरवशाली इतिहास की ये यात्रा केवल तकनीक और प्रसारण की कहानी नहीं है, बल्कि उन असंख्य नारी स्वर की कहानी भी है जिन्होंने भारत के जनमानस को एक सूत्र में बांधा। इस पूरी यात्रा में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी रही है। आकाशवाणी ने महिलाओं को केवल मंच ही नहीं दिया, बल्कि उनके लिए विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम भी तैयार किए जिनमें उनकी दुनिया, उनके अनुभवों और उनकी आवश्यकताओं को केंद्र में रखा गया। आधा आकाश हमारा, घर आंगन और गृह लक्ष्मी जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े अनेक कार्यक्रमों ने स्त्री जीवन के विविध आयामों को स्वर दिया। इन कार्यक्रमों ने महिलाओं को जानकारी, संवाद, आत्मविश्वास और अपने अनुभव साझा करने का एक आत्मीय मंच प्रदान किया। उन्होंने केवल उद्घोषिका या समाचार वाचिका के रूप में ही नहीं, बल्कि निर्माता, पत्रकार, लेखिका, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रबंधक के रूप में भी आकाशवाणी की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक आवाज जो लोकप्रिय तो बनी ही, संग ही संग रचनात्मकता और कार्यकुशलता के नए मानक तय करते हुए जनमानस के दिलो दिमाग पर छा गई। आकाशवाणी की उद्घोषिका विविध भारती की शान डॉक्टर रचना नागर, जो कई सुपरहिट फिल्मों की कथा पटकथा लिख चुकी हैं, जैसे निकाह, आखिर क्यों, बागबां, आज उम्र के इस पड़ाव में भी फिल्म, धारावाहिक और साहित्य लेखन कर कला के नए मानदंड स्थापित कर रही हैं। आज डॉक्टर रचना नागर हमारे साथ हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं।
2: आकाशवाणी से बड़ा कोई भी शिक्षा संस्थान नहीं हो सकता, मेरे लिए तो निजी पाठशाला है। कौन सा ऐसा विषय है जिसके बारे में आकाशवाणी ने हमें जानकारी न दी हो? यही है कि शिक्षित करना, मनोरंजन करना, दुनिया भर में क्या हो रहा है।

0: समाचारों से अवगत करना। इसका जो मुझे प्राप्ति है उसके लिए मैं जितनी बधाई क्या दूं, मैं तो धन्यवादों की बौछार करना चाहती हूँ। मेरी जो डिग्रियां हैं, मेरे जो स्कूल में पढ़ी हूँ, सबसे बढ़ के मैंने आकाशवाणी से सीखा है। हम लोग रेडियो बोलते थे, बचपन से रेडियो देखा। शुरुआत में तो फिल्मी गानों का ही शौक था, फिर क्रिकेट मैच आते थे, फिर समाचार आते थे। वो तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरा तो आकाशवाणी परिवार है, तो गलत भी होगा। बाबूजी नाटक प्रोड्यूसर के रूप में लखनऊ में रहे। एक जो पैक्स थे उस समय, जानते थे मैं रेडियो नाटकों के लिए जाती थी। घर आए मेरे कि देखो एक ऐसे ऐसे वैकेंसी निकल रही है और तुम ये फॉर्म भर दो। वो तो चली गए कह के फॉर्म छोड़ के, फॉर्म तो भर दिया मैंने। छोटा ही स्टेशन था मथुरा, लेकिन मेरे लिए छोटा नहीं था, मेरे लिए वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की नहीं थी। और आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जहाँ तक पहुँची मैं, वो आकाशवाणी मथुरा की वजह से। नाटक ऑडिशन लिखना, नाटक विभाग मेरे पास आ गया। रविन्द्र जैन जी का सबसे पहला इंटरव्यू, फिल्मों में जब आए भी नहीं थे तब मैंने पहला इंटरव्यू लिया। वो बीच में ज्यादा शुरू किया मैंने। फिर मैंने परमिशन ली अपने डायरेक्टर से कि हमारे यहाँ हवा मिल हम लोग बजाते हैं अभी पार्टी से, हम क्यों नहीं भेज सकते। बोले तुम बनाओ, अच्छा बना के भेजो, सिलेक्ट हो जाएगा तो शायद हो जाए, तो हम जंक अपने यहाँ लगा देंगे 15 मिनट का। मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे यहाँ हवा मिल आते थे बम्बई केंद्र से, और जब हमारे केंद्र का बजाय और कहा कि आकाशवाणी मथुरा की भेंट, मैं बहुत खुश हुई। मेरा कुछ सौभाग्य कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। कई जगह मैं ओबीज में गई तो बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे, लेकिन हार नहीं मानी। और फिर मैं फिल्मों में पहुंच गई 10 साल काम करने के बाद, लेकिन वहाँ विदेश भारती में वहाँ भी मैंने बहुत काम किया। तो मैं आशा भोसले जी को और कई समय के बड़े एक्टर थे, ख्वाजा अमर तब्बास जी, और काफी नाम है जिनको कभी बुलाया नहीं गया था। तो उनके घर दौड़ दौड़ के जाना आना, तो एक लगन अगर होगी वो बहुत अच्छा काम करेगा। एक बार उनसे बीबीसी के एक रिपोर्टर ने पूछा, टेलीविजन आ रहा है, प्राइवेट चैनल आ गए, आपको क्या लगता है ये चलेगा? मैंने कहा कभी बंद नहीं होगा आकाशवाणी, रेडियो तो हमेशा चलता रहेगा, चलते चलते आकाशवाणी से जो भी जुड़े हुए उन सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ।
1: भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत बहुत साधारण परिस्थितियों में हुई थी। जब कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये छोटा सा प्रयास आगे चलकर करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ये कोई सरकारी पहल नहीं थी, बल्कि उन लोगों का प्रयास था जो रेडियो के माध्यम से संवाद की नई संभावनाओं को तलाशना चाहते थे। धीरे धीरे ये तकनीक लोगों के जीवन में प्रवेश करने लगी और एक नए युग की शुरुआत हुई। समय के साथ आकाशवाणी घर घर तक पहुंचने लगी। विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में रेडियो ने एक आत्मीय साथी की भूमिका निभाई। रसोई में काम करती गृहिणी, खेतों में काम करती ग्रामीण महिला या परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कुछ पल अपने लिए खोजती स्त्रियां, सभी के जीवन में रेडियो ने एक अपनापन पैदा किया। मनोरंजन के साथ साथ रेडियो ने महिलाओं को जानकारी, शिक्षा और जागरूकता भी दी। महिला केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से बाल विवाह, महिला शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज को संवेदनशील बनाया गया। आकाशवाणी की ये यात्रा केवल समाचारों, वार्ताओं और कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रही, इसने भारत की मिट्टी की सुगंध को अपनी तरंगों पर सहेजा। गांवों की चौपालों से उठते लोक स्वर, खेतों में गूंजते श्रम गीत, ऋतुओं के गीत, विवाहों और उत्सवों की पारंपरिक धुनें, इन सबको आकाशवाणी ने घर घर तक पहुंचाया। विशेष रूप से महिला लोक गायिकाओं ने इस विरासत को जीवित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी आवाजों में केवल संगीत नहीं बल्कि लोक जीवन की स्मृतियाँ, परंपराएं और भावनाएं भी समाहित थीं। बिल्कुल, चाहे पूर्वांचल की कजरी हो, राजस्थान के मांड गीत हो, पंजाब के टप्पे, बुंदेलखंड के फाग, बिहार के सोहर, उत्तराखंड के छोड़े या ब्रज के रसिया, होरी, जिकरी, नौटंकी या फिर संस्कार गीत, आकाशवाणी ने इन लोक धुनों को एक ऐसा मंच दिया जहां क्षेत्रीय सीमाएं समाप्त हो गईं। अनेक महिला लोक गायिकाएं जो कभी अपने गांव या क्षेत्र तक सीमित थीं, रेडियो के माध्यम से पूरे

0: देश की पहचान बन गई। उनकी सहज मिट्टी से जुड़ी आवाजों ने भारतीय लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखा। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड की लोक गायिका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती बसंती बिष्ट। आइए सुनते हैं वो आकाशवाणी की भूमिका के बारे में क्या कहती हैं। बसंती जी, जब आपको पद्मश्री पता चला कि मुझे पद्मश्री मिल गया है, उसके बाद आपको कैसा लगा?
1: उस दिन तो बहुत अच्छा लगा। ये मुझे लगा कि ये किस दुनिया में हूँ मैं, और क्या मैं इस काबिल थी, क्या कौन सी शक्ति है जो मुझे रास्ता दिखा रही है, ऐसा लगा मुझे। फिर सबसे पहले मैंने आकाशवाणी का धन्यवाद दिया जिसने मेरा प्रवेश किया संगीत के क्षेत्र में
0: जी,
1: और जहाँ मेरा इंटरव्यू लेने आ गए, कहाँ से कैसे हुआ, मैंने बोला आकाशवाणी ने मेरे संगीत को जगह दी है और इसको आगे भी हमारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमको मौका दिया। यहाँ के बड़े कलाकारों के साथ, जो देश के कलाकार हैं भारतवासी के, उनके साथ हमारा कार्यक्रम हुआ शिमला में, तो उससे काफी लोगों को पता चला उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन लोगों ने बोला आपको कैसा लग रहा, क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे उत्तराखंड को और भी पद्मश्री मिले।
0: और ये हैं राजस्थान के प्रसिद्ध मांड गायक अली गनी ब्रदर्स।
2: केसरिया बालम।

0: ऐसा है कि मुंबई कलाकार होता है, हर कलाकार का सपना होता है और कुछ कलाकारों का ये सपना होता है कि मैं पूरी दुनिया में नाम करूं। तो नाम होने के जो जरिए हैं वो फिल्म इंडस्ट्री है ना, या फिर रेडियो तो है ही है। और रेडियो की बात बीच में हम करना इसलिए पसंद करते हैं कि हमारी युवाबाणी आपका एक प्रोग्राम आता था, तो हम लोग 14-14, 15-15 साल के थे। उस वक्त हमने युवाबाणी में गाना शुरू किया, तो हमें बीच में भी गुलाम अली साहब का प्रोग्राम सुना हमने, तो उन्होंने भी याद दिलाया कि उन्होंने भी उससे शुरू किया प्रोग्राम। तो हमें बड़ी खुशी मिल गया, रेडियो से ये भी जुड़े हुए। तो युवाणी से जो है ना हमने शुरुआत की। और हम लोग जब कलकत्ते गए ना मैडम, तो कलकत्ते में हमारी उस वक्त गले में तैयारी इतनी करके गए थे, वो तैयारी अभी भी काम कर रही है, वही चीज है। अब रही बात के संगीत जो फोक है, फोक हर जगह का अच्छा है।
1: लोक संगीत की वही परंपरा जिसकी सुगंध आज भी आकाशवाणी के अभिलेखागारों में सांस ले रही है, उसे जीवित रखने में अनेक महिला लोक गायिकाओं का अमूल्य योगदान रहा। उन्हीं स्वरों में से एक ऐसा स्वर भी है जिसने लगभग देश के हर आकाशवाणी केंद्र पर अपनी आवाज की पहचान छोड़ी। आकाशवाणी की टॉप ग्रेड लोकगीत गायिका माधुरी शर्मा एक ऐसा नाम जिसकी आवाज में मिट्टी की सौंधी महक भी थी और भारतीय लोक जीवन की आत्मा भी। माधुरी शर्मा बताती हैं कि उस समय आकाशवाणी के स्टूडियो में प्रवेश करना किसी साधना स्थल में प्रवेश करने जैसा अनुभव देता था। तो रियाज, शब्दों की शुद्धता, लोक धुनों की आत्मा को बनाए रखने का प्रयास और माइक्रोफोन के प्रति एक गहरा सम्मान।
2: सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र के 90 वर्ष पूरा होने पर मैं हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आकाशवाणी की आवाज ये गूंज जन जन तक, युगों युगों तक चलती रहे, यही प्रार्थना है हमारी। आकाशवाणी से जुड़ाव मेरा 50 वर्षों से है, तो मैंने एक ठान ठानी थी उस समय कि इन लोकगीतों को मैं उस स्तर पर पहुँचाऊंगी कि हर वर्ग का कलाकार इन लोकगीतों को गाने को उत्सुक रहेगा। मैं एक उदाहरण बनी संभव आकाशवाणी के माध्यम से। यहाँ का जो माहौल था उसमें अनुशासन, मर्यादा और शालीनता थी। मैंने इतनी कंसर्ट की रेडियो की, दिलों मुझे कंसर्ट क्वीन के नाम से पुकारा जाता था। जब चेन बुकिंग हुआ करती थी, जैसे गुजरात बुलाया है तो अहमदाबाद, राजकोट, भुज, बलिया तक, वहाँ तक हम कंसर्ट करके 15-15 दिन में लौट के आते थे। राजस्थान दिवस होता था तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये सब कवर करते थे। इसी तरह से जम्मू में जाते थे, जम्मू, उधमपुर, जिंद्रा, बहुत कंसर्ट किए हमने। ग्वालियर में जाते थे, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये सब, यानी देश के कोने कोने में मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने रेडियो कंसर्ट नहीं की। अभी तो विदेश में भी मैं आकाशवाणी महानिदेशालय के माध्यम से ही, जब 1991 में ए ग्रेड हुई तो तुरंत मुझे आकाशवाणी डायरेक्टर के माध्यम से मुझे बाहर भेजा गया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में वर्ल्ड सॉन्ग फेस्टिवल का आयोजन था और फिर 1994 में भी कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम्स के अवसर पर टाइटल सॉन्ग गाया कॉमनवेल्थ का और फिर उसके बाद सोलो प्रस्तुतियां हुई। एक रेडियो कॉन्सर्ट में भी मैंने भाग लिया कनाडा में, जो CBC रेडियो है।

0: मंचीय कार्यक्रम हो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो या कोई वार्ता हो या निर्णायक की भूमिका में हो, मैंने अधिक से अधिक समय आकाशवाणी को दिया है, आकाशवाणी को भी जिया है। मैं पहली लोक कलाकार बनी जिसको आकाशवाणी ने 2012 में लोक संगीत का डॉक्टरेट दिया।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा में केवल सुगम और लोक संगीत ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत विधाओं को भी संरक्षण मिला। इन्हीं में समाज गायन और हवेली संगीत की परंपरा विशेष उल्लेखनीय है, जो मंदिरों और देवालयों में विशिष्ट पद्धति से गाया जाने वाला संगीत है। पुष्टि मार्ग से जुड़ी इस परंपरा में अष्टछाप के कवियों की पद रचनाओं को समयानुसार निर्धारित रागों में निबद्ध कर गाया जाता है। मंगला से शयन तक प्रत्येक सेवा के साथ संगीत का स्वरूप भी बदलता है। आकाशवाणी ने इस दुर्लभ विधा को मंच देकर इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज गायन और हवेली संगीत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख महिला कलाकारों में डॉक्टर वंदना तैलंग का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके लिए समाज गायन केवल संगीत नहीं बल्कि साधना और सामूहिक समर्पण का स्वर है।
0: आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम रहा कलाकारों के लिए जिन गायन के कलाओं के विधाओं का शैलियों का लोगों को पता नहीं था, मालूम नहीं था कि आला क्या होता है, लावणी क्या होती है, सोवर क्या चीज होती है, शादी ब्याह होते हैं तो उस समय कौन कौन से गीत किस तरह से गाए जाते हैं, सब जगह की विधाएं अलग होती हैं, तो उनके कलाकार जो सुनने को मिले वो आकाशवाणी के माध्यम से मिले। आकाशवाणी ने उन विधाओं के कलाकारों को लाकर के सबको सुनवाया और लोगों ने उन शैलियों को जाना, उन शैलियों के विषय में जिनके की विषय में लोग जानते ही नहीं थे, कलाकारों के विषय में जाना। जितने भी पुष्टि संप्रदाय के जो मंदिरों में जो गायन होता है वो समय और त्योहार और स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए नहीं, खाली आपके राग और भोग सेवा आपके समय के अनुसार होता है। जब मैंने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया था तब उस समय इतना प्रचार प्रसार नहीं था, ना समाज गायन का था ना हवेली संगीत का था, लेकिन यहाँ के जो जितने भी कलाकार हुए वो आकाशवाणी के माध्यम से बहुत आगे बढ़े और कलाकारों को एक तरह से रोजी रोटी वो प्राप्त हुई। तो हम यही चाहते हैं आकाशवाणी से सारे कलाकार जुड़े रहें और आकाशवाणी उनको आगे बढ़ाए और आकाशवाणी का योगदान जो अभी तक रहा है वो हमेशा ऐसे यथावत बना रहे।
1: आकाशवाणी के इस सफर में नाटक, झलकी, रूपक और विज्ञापन जैसी विधाओं ने श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोड़ी है। ये केवल मनोरंजन के माध्यम नहीं रहे बल्कि सामाजिक संदेश, संवेदनाएं और जीवन के विविध रंगों को घर घर तक पहुंचाने का सशक्त जरिया बने। ध्वनि, संवाद और अभिनय के माध्यम से आकाशवाणी ने बिना दृश्य के भी ऐसी सजीव दुनिया रची जिसने श्रोताओं की कल्पना को विस्तार दे दिया। आकाशवाणी के नाट्य प्रसारणों की ये विशेषता रही कि उन्होंने शब्दों और स्वरों से पात्रों को जीवंत बना दिया। रेडियो नाटक केवल अभिनय नहीं बल्कि आवाज के माध्यम से भावनाओं को जीवंत करने की कला है। यही कारण है कि आकाशवाणी के नाटक आज भी श्रोताओं की स्मृतियों में उतने ही आत्मीयता से बसे हुए हैं। आकाशवाणी का नाटक श्रोता की कल्पनाओं को उसका अपना मंच देता है। यहाँ कलाकार केवल संवाद नहीं बोलता बल्कि अपनी आवाज से एक पूरा संसार रचता है। यही आकाशवाणी की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी अमर पहचान है। इस विधा में अनेक कलाकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपनी प्रभावशाली वाणी, सशक्त संवाद अदायगी और सहज अभिनय से उन्होंने श्रोताओं के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया।
0: आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव मेरे बचपन से ही शुरू हो गया। ये उम्र का वो मासूम दौर था जब विधा की स्पष्ट जानकारी तो नहीं थी लेकिन उत्साह भरपूर था। मेरी शुरुआत बाल कलाकार के रूप में तब हुई जब रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था, नाटक लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। उस जमाने से लेकर हाई टेक्नोलॉजी के आज के दौर तक मैं लगातार आकाशवाणी का हिस्सा रही हूँ। कितने नाटक किए, कितने किरदार निभाए याद नहीं, सिर्फ इतना कह सकती हूँ

0: आकाशवाणी मेरा परिवार बनता चला गया, अभिनय साधना की जमीन बनता चला गया और ये सफर आज भी जारी है। जब समाज में महिलाओं के लिए मंच बहुत सीमित थे, तब रेडियो ने उन्हें एक ऐसा आकाश दिया जहां उनकी आवाज को न केवल सुना गया बल्कि उसे सम्मान भी मिला। जब अल्फाज को एहसास की जरूरत पड़ी तो एक नारी स्वर ने उन्हें रूह दी। एक माँ का स्नेह, एक बहन का अपनापन, एक बेटी की कोमलता, एक प्रेमिका का प्रेम और सबसे बढ़कर एक स्त्री की अटूट शक्ति अपनी आवाज के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुँचाई। नर्म लहजे में भी ताकत का असर होता है, एक नारी स्वर में पूरा समंदर होता है। ये सफर आवाज से शुरू हुआ था और पहचान तक पहुंच गया। रेडियो के इस समृद्ध इतिहास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और हमेशा याद रहेगा। ये सफर चला, चलता रहा और चलता रहेगा।
1: आकाशवाणी केवल ध्वनियों का संसार नहीं बल्कि भारत की स्मृतियों, संवेदनाओं और सामूहिक चेतना का एक जीवंत अभिलेख है। दशकों से यह माध्यम समाज की धड़कनों के साथ स्पंदित होता रहा है और इस पूरी यात्रा में महिलाओं की भूमिका इसकी आत्मा के समान रही है। नारी प्रतिभा, संवेदनशीलता और समर्पण ने आकाशवाणी को वो आत्मीयता दी जिसने इसे करोड़ों श्रोताओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। एक कदम बुजुर्गों की ओर, जैसे कार्यक्रम केवल शब्द नहीं थे, अनुभव थे, केवल अभिव्यक्ति नहीं थी, विश्वास था। इन आवाजों ने पीढ़ियों को जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा, घरों में अपनापन दिया और समाज को बुजुर्गों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए एक नई दृष्टि भी दी। आकाशवाणी ने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए। दिव्यांग कलाकारों को, वक्ताओं को, गायकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया, मंच दिया, समावेशी सामग्री दी, दिव्यांगों की समस्याएं, उनके अधिकार और सफलता की कहानियों को प्रमुखता से शामिल किया, रोजगार के अवसर और सूचना की सुलभता प्रदान की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अशोक तुकाराम भोई, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है और एक खिलाड़ी भी है।
2: मैं आकाशवाणी का और आपका सबका मैं आभारी हूँ। बचपन में 10 महीने का था, उसी टाइम मुझे पोलियो हो गया था। पिताजी को जॉब था छोटा मोटा, वो भी चला गया था। 10वीं से होने से पहले घर की पोजीशन इतनी खराब थी कि मेरे को स्कूल में जाने के लिए कपड़े भी नहीं रहते थे। 12 घंटे ड्यूटी करता था एक साइकिल के दुकान पे, उसे 5 रुपया रोज कर देते थे और इसके बाद वो जो पैसा मिलता था वो पैसे से हम लोग नोटबुक खरीद लेते थे। और कभी कभी तो मैं ठेले का भी धंधा किया, छोटा सा मैं डेकोरेटर का बिजनेस शुरू किया। फिर कॉलेज 12वीं में जाने के बाद मेरे पास पैसा नहीं रहता था, मेरे पिताजी ने एक साइकिल ली गई थी 470 रुपए में, 10 साल उसका पेमेंट भरते बैठा था पिताजी मेरा। फिर इसके बाद मैं स्पोर्ट में चला गया, नेपाल में मेरा स्पोर्ट्स हो गया, फिर कुआलालंपुर में चला गया, 8 गोल्ड मेडल मैंने पाया शॉटपुट है और जेवलिन करके, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी कि मैं दिव्यांग हूँ। शरीर हमारा कमजोर हुआ तो क्या हुआ, मानसिक तो ठीक नहीं। जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो सिर्फ इतना ही दिखता है, मैं जीत के आऊंगा। अगर समाज को बदलना है तो पहली बात आपको खुद बदलना चाहिए। दिव्यांग महिलाओं के लिए हर जगह पे कैंप होना चाहिए, उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए। जैसे आपने आकाशवाणी के बीच में एफएम से आप जो ये कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रसिद्धि मिलना चाहिए और होना चाहिए वो करे। तो मुझे नहीं लगता कि दिव्यांगन महिला आज भी पीछे रहेगी, लेकिन आज भी दिव्यांगन महिला आगे है।
1: घरों को संजोती संवारती महिलाएं हों या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी नेत्रियां, सभी ने आकाशवाणी से भरपूर स्नेह किया। क्या कह रही हैं सुनीतारिका और सांसद हेमा मालिनी जी, आइए जानते हैं उनसे।
3: जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत, सभी सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव

साथ बोलती हुई महसूस होती है। आकाशवाणी की ये यात्रा यूं ही नई पीढ़ियों, नए स्वरों और नए सपनों तक पहुंचती रहे, क्योंकि कुछ आवाजें केवल सुनी नहीं जाती, वो इतिहास रच जाती हैं और आकाशवाणी उन्हीं अमर स्वरों की एक अनश्वर भूमि है।

आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर। अभी आप सुन रहे थे ये विशेष फीचर आशाओं के स्वर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका के अंतर्गत ये खूबसूरत से गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान के 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन्वेंशन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: Of our shared future.
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर

सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलिया रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले तीन दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रमाणित जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4

0: लाख 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसमें मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस्त आएंगी जो एज के हिसाब से।
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। कैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े careerairforce.gov.in या askcat.edcil.go.in पर। ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगे। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2331-1 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहली बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपेडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung May Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung May Aung Lian held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
5: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
4: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
5: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
4: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's neighborhood first, at east, and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President Aung Myin Aung Lian at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational, and spiritual ties that go back to centuries. The President said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares the land border with India. Congratulating President Lian on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations.

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं और अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ देर में 9:20 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों के प्रोग्राम के तहत हरिहरन की आवाज में गजलें। रात 9:45 पर खबरें नशर होंगी और 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 आप सुनेंगे प्रोग्राम आईना के तहत उर्दू शायरी में हिंदुस्तान के उनवान से एक मुबाहिसा, जिसमें शामिल होने वाले शुरका होंगे डॉक्टर शाहनवाज फैयाज, कुरतुल्लाह ताबिश और डॉक्टर अबू जहीर रब्बानी। रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिर इरशाद। इसी प्रोग्राम के दौरान रात 11 खबरें बर सगीर से नशर होंगी। 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में और 11:45 पर आप समाप्त करेंगे मुबारक हुसैन कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां। रात 12 आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत ऋषभ प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया हुआ राग शुद्ध सरंग। रात 12:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आखिर शब के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1 उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम के तहत हरी हरन की आवाज में मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब, फरहत शहजाद और अकबर हैदराबादी की लिखी हुई गजलें।

मैंने शेयर सुनात कर रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ईआईआर के जरिए और डीडी फ्री डिश पर। आइए सुनते हैं खबरें। अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन ऑन लाइन ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टैरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदादकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू कर दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए हुए म्यांमार के सदर ऊ मिन ऑंग लाइन ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलों पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिसमें तजारत और इक्तसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलों, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में ताउन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल है। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी ताउन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया। बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी, तरक्याती ताउन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन को बढ़ाने पर दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने म्यांमार की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदेह हों। विक्रम मिश्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये भारत की पड़ोसी को अवलियत देने, एक्ट ईस्ट नीज महासागर और भारत बहरुल काहिल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तजारत तकरीबन 2 अरब डॉलर पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार एक अहम शराकत दार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर ऊ मिन ऑंग लाइन का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदेही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरका सरहद होने की वजह से म्यांमार जनूब मशरकी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी मुआहदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तजारती मुआहदा नहीं है बल्कि यह तहजीबी रवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि यह जामे मुआहदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का इहाता करते हैं। उन्हें मौसूफ ने इतला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही है जो कि इस मुआहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UK MHRA से मंजूरशुदा भारत की जेनेरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथराइजेशन मिल जाएगा। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान मुआहदा

भारत के 9 आजाद तजारती माहदों का हिस्सा है जो 38 मुल्कों का इहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरख्वाह स्टॉक की दस्तयाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हस्ब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट यूजी 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज कलम फॉर्मेट के बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनक्किद कराने की दरखास्त की गई थी। जस्टिस पीसी नरसिम्हा और अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जांच सीबीटी मोड में मुनक्किद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और जिला लीगल अथॉरिटीज के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डीएलएसए के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह बात कही है। अर्जीगुजार का इल्जाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को डीएलएसए के सामने तलाक डिग्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ ताउन को फरोग देने की अहमियत की तौसीक की है ताकि एक आजाद, खुले, पुरान, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुलकाहिल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजरा दिफा मुजाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवर फ्लाइट की आजादी और खित्ते में बिला रुकावट तजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैन अलाकवामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरक सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड माल्स ने की। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसीक की गई है। इस सिलसिले में कोलकाता के लोकभवन में आज हलफबदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर आर एन रवि ने वुजरा को काउंसिल में शामिल होने वाले नए अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपन साहा और रीता ब्रदा बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क्यादत के मुतालिक नुक्ताचीनी करने वाले अवामी बयान देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदी आयद करने वाला एक नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाजत नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निजाम और बच्चों की तहफ्फुज की खसूसियात पर अमल करना होगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल तक राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज आंधी की सूरत हाल के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने वस्ती कर्नाटक, केरला, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन
آن لائن نے نئی دلی میں مذاکرات کیے. بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے.

0: हमारे नेल्स जब बड़े होते हैं, जब हम एक जगह पे इचिंग करते हैं तो वही नेल से दूसरी जगह इचिंग करते हैं, तो उससे वो स्प्रेड होता रहता है।
1: जी
0: तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम अपनी हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करें। हाइजीन से मेरा मतलब स्किन हाइजीन और नेल हाइजीन में, मतलब स्किन में आपको बाथ डेली लेना है। कोई भी सोप यूज कर सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि एंटीसेप्टिक सोप, एंटी फंगल सोप, उससे कोई ज्यादा महत्व ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। आप कोई भी सोप यूज करें, पानी का इस्तेमाल करें नहाने में, और अपने जो आपके अंडरवियर्स होती हैं चंडर, वो आप डेली या ऑल्टरनेटिव अंडर गारमेंट्स जो है उसको चेंज करते रहें, क्योंकि यही एक सोर्स होता है इन्फेक्शन का, अगर आपने अपने हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है तो।
1: जी, आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आईना के तहत उर्दू शायरी में हिंदुस्तान के उनवान से एक मुबाहिसा, जिसमें शामिल होने वाले शुरका हैं डॉक्टर शाहनवाज फैयाज, ताबिश कुरतुल ऐन और अनुजहीर रब्बानी।
2: सोई नादा, प्रोग्राम आईने में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हिंदुस्तान उर्दू शायरी के हवाले से। मैं डॉक्टर शाहनवाज फैयाज, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है डॉक्टर अबूजहीर रब्बानी और डॉक्टर कुरतुलैन साहब। उर्दू शायरी हिंदुस्तानी तहजीब सकाफत का आला नमूना है। अमीर खुसरो से हालिया उर्दू शायरी का जो मंजरनामा है उसकी वाज़ेह मिसाल है। उर्दू शोरा ने अपनी शायरी का मौजू इसी सरजमीन से अख्ज किया है। तकरीबन 800-900 साल की शायरी का हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियत के मौजू पर अगर एक जामे इंतखाब हमारे सामने आए तो हमें अंदाजा होगा कि अमीर खुसरो से लेकर मौजूदा जो उर्दू शायरी का पूरा मंजरनामा है, किस तरह से उर्दू शोरा ने अपनी नज्मों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के मुख्तलिफ पैराए को अपने मौजू का हिस्सा बनाया है। ऐसी बात है कि ये तकरीबन 1000 बरस पर मुहित ये पूरा अरसा और उसमें कोई एक ऐसा इंतखाब मंजर आम पर आए तो हमें लगता है कि वो इंतखाब इतना जामे होना चाहिए कि हर पढ़ने वाला उस पर उसे फैज उठा सके। अभी हालिया दिनों में डॉक्टर उमेर मंजर की इसी मौजू पर किताब आई है जिसका टाइटल है हिंदुस्तान उर्दू शायरी के हवाले से। दरअसल ये उसी इंतखाब का हिस्सा है जिसे खुसरो फाउंडेशन ने शाये किया है। खुसरो फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब का ये बड़ा कारनामा है कि वो हिंदुस्तान की मुतहदा कौमियत का जो पूरा तस्वीर है उसको असरों पेश करना चाह रहे हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी का एक कमाल ये भी है कि वो जिस इदारे से वाबस्ता होते हैं वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत को कुछ इस तरह से उस इदारे का हिस्सा बना देते हैं कि वो एक तरह से लाजिम मलजूम हो जाता है। जाहिर है कि इस मौजू पर बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है क्योंकि हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत, हिंदुस्तानी मजहबी रहनुमा और हिंदुस्तानी सियासी रहनुमा और हिंदुस्तान की जो तारीखी इमारतें हैं उस हवाले से उर्दू शोरा ने बहुत से तजर्बे किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस हवाले से बात करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर अबूजहीर रब्बानी साहब से चाहूंगा कि वो इस मौजू पर रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू जबान और उर्दू शायरी, उर्दू शायरी में हिंदुस्तान काफियों मजलिसों में है। उर्दू शायरी और हिंदुस्तान एक बगैर दूसरे का तस्वीर नामुमकिन है। उर्दू जबान की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई और मुख्तलिफ जबानों और बोलियों और मुख्तलिफ गिरोहों के बाहमी मेलजोल से हुई। इससे इस जबान की बुनियाद ही इत्तेहाद पर रखी गई है। यह जबान इब्तदाई से मेल मिलाप की जबान रही है।
1: बिल्कुल,
2: मुगलिया दौर में उस जबान को फरोग हासिल हुआ। इस जबान में बड़े बड़े शायर और अदीब पैदा हुए। शायरों ने अपनी शायरी के जरिए आम लोगों में वतन से मोहब्बत और कौमियत का जज्बा पैदा किया।
1: बिल्कुल,
2: उन्होंने इत्तेहाद, यकजहती और गंगा जमुनी तहजीब को फरोग दिया। यह भी ताज्जुब की बात है कि इस जबान का फरोग सबसे पहले गर्मी हिंदुस्तान में हुआ, बाद में शुमाली हिंदुस्तान में। इसलिए शायरी भी सबसे पहले दक्षिण हिंदुस्तान में ही फली फूली। दक्षिण हिंदुस्तान में जो बादशाह हुए वह शायर भी थे और शायरों के सरपरस्त भी थे।

0: नसीब नेता मंदिर मस्जिद, आप मिसाल के तौर पर इसी दिल्ली शहर में मौलाना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार को देखा, फूल वालों की सैर का एक मेला लगता था,
1: फूल वालों
0: का, वहां मुसलमान भी और हिंदू भी, रास्ते बादशाह ने ऐलान किया था कि वहां पर हिंदू भी आएंगे और वहां पर छपरकट लगाया जाएगा ताकि वहां पर अपना चढ़ाएंगे, मतलब कोई कंसेप्ट नहीं हिंदू मुस्लिम का। और इसलिए कि हमारे अंदर यही चीज है जो हिंदुस्तान को बांध करके रख सकती है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकती है। अशोक मलसियानी बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने हिंदुस्तान के ताल्लुक से, वतन के ताल्लुक से जो नज़में लिखी हैं और बड़ा की हैं, सरजमीन हिंद से उनकी अकीदतमंदी की आईनादारी होती है उनकी नज़्म हिंदुस्तान हमारा से, इसके मतलब देखिए, देशों में सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रवे जमीन पे जन्नत जन्नत पेशा हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तीनों तरफ समुंदर चौथी तरफ हमारा, है पासमा उसका उसका बनाने वाला, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और हिमालय को इकबाल ने भी अपनी नजदीक ने पासमा का दर्जा दिया है, कहा है इकबाल तो उनका नया शिवाला देखिए, खाके वतन का हर एक जर्रा मुझको देवता है,
1: सही बात है,
0: ये कहते हैं कि वतन के एक जर्रा से को मैं देवता समझता हूँ। खुद हाल ही उससे पहले उन्होंने कहा अपनी नज्में हुब्बे वतन मशहूर नज्म है, वतन से मोहब्बत का जो इजहार किया है कि अगर एक मुट्ठी मिट्टी के बदले मुझे जन्नत मिले तो मैं जन्नत ही लूंगा, मैं इस मिट्टी को कबूल करूंगा और वही मेरे लिए जन्नत है। इस तरह की हमारे उर्दू शायरी में वतन से मोहम्मद और हिंदुस्तान का मंजरनामा पेश किया।
1: सरदार जाफरी की एक नज्म है मौसमों के गीत
0: गीत
1: गई, तो देखिए उसमें कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि कितने दिलकश है मेरे मुल्क के मौसम, में हुस्न की बात करें इश्क पर इसरार करें, अपने महबूब से रोशन करें आंखों के चिराग, फूल की तरह से जिक्र लबो रुखसार करें। आप देखिए कि सरदार जाफरी अब आकर इस तरह की बात कर रहे हैं, उससे बहुत पहले आप देखिए कि बरखा रुत में अल्ताफ हुसैन हाली ने, उस वक्त मोहम्मद हुसैन आजाद ने, या जो पूरी टीम थी जिस तरह से नेचुरल शायरी की तरफ रागिब हुए ये तरक्की पसंद तहरीक और बाद के लोगों ने उन्हीं मौजूदात को आगे बढ़ाया है, उसने कुछ नया तजर्बा नहीं किया है। सरदार जाफरी ने बिल्कुल बहुत गर्मियां आई है बरसाती हुई अंगारे, अब देखिए कि क्या करे कि गर्मियां गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे अंगारे की बारिश हो रही है, देखना शोला बदन धूप पर आया है शबाब, लोग तालाबों में उतरे हैं नहाने के लिए, तनशी होती चली जाती है चादरें आप। जाहिर है कि हमारे जो शोला ने जिस तरह से उर्दू शायरी में हिंदुस्तान को पिरोया है, मुझे लगता है कि उतनी खूबसूरत मिसाल, उतना खूबसूरत घर कहीं आपको और नहीं मिलेगा। आप देखिए कि मजहबी रहनुमाओं का भी जिक्र किया गया है, मुकद्दस किताबों का भी जिक्र किया गया है, तारीखी जो किताबें हैं, तारीखी जो इमारतें हैं उसका जिक्र किया गया है, आजादी से पहले और आजादी के बाद जिस तरह से हमारे शोरा ने या हमारे अकाबरीन ने ख्वाब देखा था, जब उनको लगा कि हमारे ख्वाब की ताबीर नहीं हो रही है तो नहीं देखा कि मुल्क आजाद हो चुका है तो क्या हुआ, लोगों ने फिर भी नज़में लिखी हैं। ये है उर्दू शायरी का कमाल जिसने हर जगह हक परस्ती का सबूत दिया है, हक परस्ती का साथ दिया है, कभी उसने अपने मौजू से अपने होने से इनकार नहीं किया है। जाहिर है कि एक जबान का जो अपना काम हो सकता है, मुझे लगता है कि उर्दू जबान उससे बहुत आगे बढ़कर एक जिंदगी बन गई है, और मुझे लगता है कि हर दिल में उर्दू जबान जो है एक धड़कन है, और उर्दू गजलें बतौर खास उर्दू शायरी जिस तरह से लोग उसको, चाहे वो उर्दू जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप देखिए कि लोग कहते हैं कि जाहिर शराब पीले मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा हो, आप सोचिए ना एक शख्स कह क्या रहा है, यही है ना कि खुदा या भगवान, खौफ तो उनसे है किसी इमारत से नहीं है।
2: अभी डॉक्टर जहीर साहब जिक्र कर रहे थे कि हिंदुस्तान की मुश्तरक तहसीब
0: जी,
2: या यहाँ की जो गंगा जमुनी तहसीब का जिक्र करते हुए फूल वालों की सर के नस्म का जिक्र कर रहे थे, गोपीनाथ अमन देहवी की नस्म, आप उस नस्म को पढ़े और सब सुनते रहे,
0: बिल्कुल
2: दिल फजा बरसात का मौसम है और फूलों की सैर,
0: बिल्कुल
2: है कहीं मतलब की ताने और कहीं झूलों की सैर, है कभी धूप धूप और कभी और कभी ठंडी हवा बरसात है, वहाँ क्या मौसम है, कैसा दिन है, कैसी रात है, योग माया का है मन।

0: अब कुतुब की दरगाह है, दोनों फिरकों की यहाँ देरीना रस्म रहा है। तो क्या नज्म है, मतलब दोनों तहजीबों को और हिंदुस्तान की पूरी मुश्तरका तहजीब को इन्होंने इस नज्म में बहुत ही उमदा तरीके से बयान किया है।
1: हमारा जो पूरा मौजू है आज का, हमारा मौजू जो है वो हिंदुस्तान उर्दू शायरी के हवाले से।
0: जी जी।
1: अब हमारे शोरा ने क्या किया है, सुर को भी अपनी नज्म का हिस्सा बनाया है और शाम को भी अपनी नज्म का हिस्सा बनाया। अब निदा फाजली की नज्म देखिये शाम।
0: जी जी।
1: अब देखिये क्या करे, सूखे कपड़ों को छत से चुनती हुई, तभी किरणों का हार बुनती हुई, गीले बालों में तौलिया लिपटाए, हाथ में एक कटी पतंग उठाए। आप देखिए कि वो शाम का जो पूरा मंजर है और सूरज बिल्कुल ढल रहा होता है, एक तरह से तारीकी आ रही है और उजाला जा रहा है।
0: जी जी।
1: और जो पूरा संगम है, शायर ने किस तरह से उसको अपनी शायरी का हिस्सा बनाया, किस तरह से उसमें बरता है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर गुफ्तगू का वक्त जो है बहुत कम पड़ जाएगा। इस हवाले से तो बहुत किताबें लिखी गई है, बहुत मजामीन लिखे गए हैं, कहीं इंफरादी तौर पर काम हुआ है तो कहीं इज्तिमाही तौर पर काम हुआ है, और गुंजाइश इतनी है कि इस पर तवातुर के साथ काम हो रहा है। उर्दू शायरों ने
0: जी
1: हमेशा मजहब से उठ करके, धर्म से उठ करके शायरी की है। कभी भी उर्दू शायरी में आप देख लीजिए, अगर मजहब को अवैध किसी ने देने की कोशिश की है तो उसको कंडेम किया है, बुरा भला किया कहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि मौलवी, जाहिद, शेख, ब्राह्मण का मजाक उड़ा गया है उर्दू शायरी में।
0: जी जी।
1: और बहुत सारे शायरों ने, आप बर्बादी को देखिए, उसे प्रेमी तकमीर को देखिए, गालिब के यहां है, सब के यहां है। तकमीर का मशहूर शेर, मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो उनने तू, अच्छा खींचा दर में बैठा, कब का तरके इस्लाम किया।
0: ये सेकुलरिज्म
1: जी बिल्कुल उर्दू शायरी में ये कितना बड़ा नमूना है। अब गालिब का शेर देखिए कि क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब,
0: जी
1: और हम भी सैर करें कोई तौर की। अब ये देखिए, अच्छा जबान का मामला ये है कि अगर जबान किसी मजहब का लिबादा पहन लेगी तो फिर वो जबान
0: नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जबान का काम है तरसील करना,
0: जी
1: वो मजहबी लिबादे में वो तरसील का काम नहीं करता,
0: लोगों को जोड़ना।
1: बिल्कुल।
0: जबान का काम है लोगों को जोड़ना, क्योंकि उर्दू जबान की पैदाइश ही मुख्तलिफ जबानों के मिलजुल से हुई है, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग भी उसमें रहे होंगे, मुख्तलिफ इलाकों में से वो जबान आई है, उसके बाद एक जबान की शक्ल जाहिर है, तो उसका फरीजा ही बनता है कि वो पूरे हिन्दुस्तान को बांध।
2: इसलिए तो कहा गया है कि जबान के को जो है मजहब की जरूरत नहीं होती, बस जबान की जरूरत है मजहब के फरोग के लिए, उसकी इशात के लिए।
1: बिल्कुल। अच्छा देखिये कि चकबस का क्या अच्छा शेर है कि इसको ना कबीरिए आलम का सिला कहते हैं। अच्छा देखिए हिंदुस्तानी तनाजुर देखिए, इसको आलम का सिला कहते हैं। मर गए हम तो जमाने ने बहुत याद
0: किया।
1: तो आप सोचिए कि जो पूरा हिंदुस्तानी तनाजुर है उसमें ये शेर कितना अच्छा और कितना फिटिंग बैठ रहा है। अच्छा मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, चूंकि अब हम वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते सिर्फ मैं इतना चाहूंगा कि हिंदुस्तान उर्दू शायरी के हवाले से इसमें अभी क्या और गुंजाइश है। जाहिर है कि एक किताब अभी आई है जिसे खुसरो फाउंडेशन ने शाये किया है, खुसरो फाउंडेशन अभी 2 साल पहले ही उसका कयाम अमल में आया है, और जिस तरह से उन्होंने मुतहदा हिंदुस्तानी कौमियत के तस्वुर को किताबी शक्ल में पेश करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि इस तरह का काम और भी अभी आएगा, इस तरह के काम और आएंगे। मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाह रहा हूं कि उर्दू शायरी में इस हवाले से और क्या गुंजाइश है।
0: नहीं, अभी बहुत गुंजाइश है, और मुख्तलिफ हवालों से लेकर के कौमी यकजहती का तस्वुर है, हिन्दू देवमाला या हिन्दुस्तानी देवमाला जो असातीर है, मिथ है, उसका हिन्दुस्तान का हिस्सा है, दमन तहजीब का हिस्सा है, तो मुख्तलिफ हवालों से उर्दू शायरी में ही अलग अलग असनाफ के हवाले से भी हम
1: उर्दू शायरी में असातीर और देवमालाई अनासिर पर तो काम भी हुआ है, बहुत सी किताबें भी आई
2: है, जो डॉक्टर जाहिद नदी मासब जी किताब आई है, जबरदस्त किताब है वो, और फिर उन्होंने इब्तदा से लेकर आज तक के मजबूत पर मतलब समेटने की कोशिश की।
1: बिल्कुल। नस्र नज्म दोनों बहुत अच्छी किताब है,
0: मुख्तलिफ हवालों से भी, मसीह के हवालों से जो आपने जिक्र किया, जी करबला का जो जिक्र है वहां भी करबला के तनाजु में, लेकिन वो बात कही गई है
2: हिंदुस्तान जानी रही है, हिंदुस्तान
0: तारीफ है करबला की,
2: जी जी,
0: लेकिन वो पूरा पस मंजर उसका हिंदुस्तान है।
1: बिल्कुल।
0: तो उस हवाले से भी बड़ा काम किया सकता है, उसका काम नहीं हुआ है।
1: जाहिर सी बात है कि माथे पर सिंदूर लगाना ये करबला में कहां हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: जाहिर है कि खालिस हिंदुस्तानी तहजीब है। उर्दू शायरी ने न सिर्फ अपनी शायरी में न सिर्फ हिंदुस्तानी तहजीब को पेश किया है, बल्कि मुझे लगता है कि जो पूरा हिंदुस्तान

एक बार 71 MHz पर मोबाइल ऐप न्यूज और एआईआर के जरिए और डीडी फ्रेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब 10:30 हो चुके हैं। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नकों का प्रोग्राम तामील इरशाद। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अपने जमाने की मारूफ गुलकारा सोनम कल्याणपुर का कल मुंबई में इंतकाल हो गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज हम उनको इस प्रोग्राम के तहत कुछ नगमे उनके नाम खराज अकीदत के तौर पर पेश करेंगे। हाल है इस प्रोग्राम की पहली पेशकश, आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

तो क्या आजकल

ਨਾ ਸਨਮ ਆਜ ਕਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ।

में अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मचारी फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, जिसकी तर्जनाई थी शंकर जय किशन ने और बोल थे हसरत जयपुरी के। और सुनना चाह था बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश ने उत्तम नगर नई दिल्ली से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुनना चाह था राशिद हुसैन अंसारी, आसन अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने जैनवंदिर कुरावली से। और बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और बाबा साहब वडोड़े अधिचर पे चंद्र वडोड़े ने सुनना चाह था जरूर उससे। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे आकोट से। और अनंत भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत सुनने के ख्वाहिशमंद थे मस्तानपुरा से। और रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनना चाहता सुषमा सुरोशे, मायरा सुरोशे और मस्तो विठल सुरोशे ने महाराष्ट्र से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे किशन सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीर शहर से आशा सबकाल के साथ। पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतिभा चंदन काले गांव से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और संबल से छोटे अंसारी ने सुनना चाहा था चंद्रलाल दुबे, अनंत सुनने के ख्वाहिशमंद थे भोपाल से। और सुनना चाहा था कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा ने मजनू कटीला दिल्ली से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे पंजाब रामटेके, शिवरामटेके, शिवरामटेके, यवतमाल महाराष्ट्र से। और सुनना चाहा था ये नगमा चंडीगढ़ से कृष्णेजा और बिमला अनिजा ने। राम अनवर, सलाम अनवर, प्रियांशी यवतमाल से सुनने की ख्वाहिश बनते हैं। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश शमा फिल्म से, जिसको सुनना चाह है मोहम्मद लखानी, जुबैद लखानी और विहान लखानी ने राजकोट से। और सुनने की ख्वाहिश बनते हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, बुलंदशहर चौघनट्टी से। बाबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार बाड़मेर राजस्थान से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनने चाहते हैं अरुण कुमार शर्मा, रेणुदेव शर्मा, राहुल कुमार शर्मा नेपाल से। सुनना चाहते हैं मंसूर सैयद, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम सहारनपुर से। वेद मिदा, अलका मिदा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। और सुनना चाहते हैं गगनदीप थांदी, तृप्ति कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, नवशहर पंजाब से। जोन दिगेस्त्रो, रोजी दिगेस्त्रो, विलिस दिगेस्त्रो सहारनपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं गजन ये नवदीप ये सुशील ये सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से। आशा देवी, रविन्द्र मोहनदास, वर्षा सुमन किशनगंज बिहार से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं आमना नसरीन बागबान, आसमा परवीन और नई दिल्ली का पसड़ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं करजत से अखलाक अहमद फूलवाले, आशु अहमद फूलवाले, रामनवर, सलाम अनवर, प्रियांशी यवतमाल से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और पंजाबी रामटेके, शिव रामटेके, यवतमाल से सुनना चाहते हैं।

सुनिए, अभी आप सुन रहे थे दोस्ताना, फिल्म से नगमा किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बोल लिखे थे यश जौहर ने। हमारे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है टेबल गार्डन ने दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं वो पीरजादा मेराजुद्दीन कश्मीर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं धर्मिंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से, अब्दुल गफ्फार डावर और अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर नागचुंग खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया सुनना चाहते हैं खंडवा से, कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, अभय गुजराती सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, मोहम्मद रुंदीन मटाल, शबीर बनट्टी, आसिफ इकबाल कर्नाटक गुलबर्गा से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, चंद्रेश गौहर, मुस्लिम वंदना गौहर और जयपाल गौहर मध्य प्रदेश से, और सुनने चाहते हैं मौजे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल और कुंदन मंडल, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं

पलंगगौर, तनमय पुरी गौर, सुरेश शशि गौर कासगंज से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं बसंत कुमार, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता कलकत्ता से, विमल भंडालकर, वीणा भंडालकर और विविधा भंडालकर छत्तीसगढ़ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं लातूर से उस्मान फौजी शेख, सायरा बानो शेख, करिश्मा शेख।

सुमन भी आप सुन रहे थे फिल्म दिल एक मंदिर से, ये नगमा सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने और बोल थे हजरत जयपुरी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, जिसको सुना चाह गुवाहाटी आसन से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और हिफ्जा तवराम चिमनी से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत अंकिता भटकर नागपुर से, और मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, अतमाला सुरलकर, ओम सुरलकर।

करना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिश पर हैं शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज कालका से, मोटाला महाराष्ट्र से सुनना चाहते थे और सुनने की ख्वाहिशमंद है रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही और शमसुल कमर राही बेगम रुखसार सुनना चाहते हैं और कलेश कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, वेदिका फूलमाली खंडवा सुनने की ख्वाहिशमंद है और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद यासर रंजन, सहमा नवाज सुनना चाहते हैं गिरडी झारखंड से और मोहम्मद कलीम जख्मी नाज रेलवे रोड गंजनवारा से सुनना चाहते हैं और पटियाला रोड गंजनवारा से सुनने के ख्वाहिशमंद है खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और अरीबा हबीबा, बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी अली कड़वली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

कि हम बेकदर बेवफा ही सही। बड़े शौक से जाइए छोड़ कर मगर सहने गुल।

0: मैंने अभी आप सुन रहे थे प्रेम कहानी फिल्म से यह नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शब के 11 बज चुके हैं। प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। ये इस दौरान सुनते हैं खबरें बर्रे सवेर से।
1: ये आकाशवाणी है बर्रे सवेर की खबरों के साथ मैं तौहीद हकानी। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र

लक्ष्मण थे, अनंत जोशी, तनुजा जोशी, दुर्वीर जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और सुनने चाहते थे अल्ताफ उजरे, सैफुल्ला सबाहत उजरे, जिला सांगली से, जट शहर से सुनने की ख्वाहिशमंद है और सुनना चाहते हैं एहसन जावेद, शगुफ्तानजुम और गुमला झारखंड से सुनने की ख्वाहिशमंद है और सुनना चाहते नाजिर नासिर नासिर शाहिद, साजिद शाहिद ने श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में, जिसको सुनना चाह है राजे कुमार विद्यार्थी ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद है सविता राधे विद्यार्थी, बुल्की वाली फालना झा, सहरसा बिहार से, और सुनने के ख्वाहिशमंद है विजेंद्र कुमार जयजान, कांति रानी गुंजन हरियाणा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद है अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, मंजिल महजोल सीतामढ़ी बिहार से, नरसिंह राजपूत, शुभम सिंह, गौरव सिंह उत्तर प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद है, और अभिजीत गोहाणकर, संत गोहाणकर, अर्जुन गोहाणकर महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद है मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन बनारस से, और सुनने चाहते हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव बलेरा दुर्ग से।

से तुम्हारे कान में करीबा न तड़पा।

सुनिए, अभी आप सुन रहे थे ये नगमा लव मैरिज फिल्म से गीता दत्त की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और सुनना चाहा था कि जी झा अमोल मानकर और दुर्गा प्रसाद सैनी ने बिहार से, साहुल शेर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ सुनने के ख्वाहिशमंद है। और सुनना चाहता है मोहम्मद असलम सैफी, जाहिद अली सैफी और आबाद खान ने हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश तरद महमूद की आवाज में, जिसको सुनना चाहे बाबू सिंह दीमान, बलजिंदर कौर दीमान, रमणीत निशु ने मुक्सर पंजाब से, बाबू ठेकेदार शेख शागिर और शेख वजीर मोटाला बाजार से सुनना चाहते हैं। और सुनना चाहते हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र गौर, गुरप्रीत सिंह हरियाणा से, पंजाब से हरजिंदर सिंह चिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता सुनना चाहते हैं, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा कैंथल हरियाणा सुनना चाहते हैं। और सुनने की ख्वाहिश में सुनील पटक, कमल पाठक और गव्य मल्होत्रा अनारकली बाजार जगराओं से, त्रिपुरा मेघर, हर्षदा मेघर और अक्षरा मेघर सुनना चाहते हैं राजगांव के अमरावती से। और सुनने की ख्वाहिश में जफर मौजम शेख, तफरक तबसुम शेख, बीबी अलिशबा शेख, रघुविंद मैन नई दिल्ली से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध निखिल कांगड़ा रोहतक से सुनना चाहते हैं। और सुनने की ख्वाहिश में आज रश ओ कुमार वादे, मोहम्मद रफीक पवार और मायनक चंद राठौर सुनने की ख्वाहिशमंद है। हसू बाबू, मोहम्मद रफीक पवार, हर आहान खोकर खंडवा मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं। और राजेश शर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा रुड़गी कैंट से सुनना चाहते हैं। नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे भी के साथ सुनना चाहते हैं।

वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के दौरे पर आए हुए सदर यू मिंग ऑंग लैंग ने कल बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुजाकरात किए, जिसमें तिजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने पर दिलचस्पी जाहिर की। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर आजम ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तई भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हो। जनाब मिस्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत की सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनाब मिस्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो भारत की पड़ोसी को अवलियत देने एक्ट ईस्ट नीज महासागर और भारत बहरुल काहिल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन 2 अरब डॉलर पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल कहा कि भारत की पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार एक अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदेही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरका सरहद होने की वजह से म्यांमार जनूब मशरकी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे कल से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती मुआहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे मुआहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुत्तला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रिसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कल पानी के जहाज से रवाना हो गई है जो कि इस मुआहिदे पर अमलावरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UK MHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान मुआहिदा भारत के 9 आजाद तिजारती मुआहिदों का हिस्सा है जो 38 मुल्कों का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कदी शक्ल दी गई है। भारत नई दिल्ली में 13वीं ब्रिक्स शहरकारी फोरम की मेजबानी करेगा। ये 2 रोजा फोरम इस माह की 11 तारीख से शुरू हो रहा है। शहरकारी फोरम का मौजू है आवाम के लिए शहर, सबकी शमूलियत वाले और मजाइम मुस्तकबिल के शहर के लिए ब्रिक्स तआवुन। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल इस बात का ऐलान किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने
इलाकाई पार्टनरों के साथ तआवुन को फरोग देने की अहमियत की तौसीह की है ताकि एक आजाद, खुले, पुरामन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बैरुल्काही को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने

0: नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आजादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समुद्री सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी तआवुन में पेशरफ्त और समुद्री सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरका लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वज़रा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकतदारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मुफाहमतनामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में तआवुन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ज्ञान सागर तालीमी और चैरिटेबल ट्रस्ट से वाबस्ता 14 गैर मनकूला इमलाक को अबूरी तौर पर कुर्क कर लिया है, जिसकी मालियत तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए है और जो पंजाब के रामनगर में वाके है। काले धन को जायज बनाने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट की शिकों के तहत ऐसा किया गया है। एजेंसी ने बताया कि उसने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी से मुतालिक जालसाजी की इन दिनों जारी तहकीकात के सिलसिले में इन इमलाक को कुर्क किया है। भारत की सनअती पैदावार में अप्रैल 2025 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 4.9% की तरक्की हुई है। ये तरक्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्दा कारकर्दगी की वजह से हुई। आदादोशुमार और प्रोग्राम पर अमल आवरी की वजारत ने बताया कि ये आदादोशुमार सनअती पैदावार के नजरसानी शुदा अशारिये IIP सीरीज पर मबनी है, जिसका बुनियादी साल 2022-23 है। इसमें कहा गया है कि इस माह के दौरान 6.2% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदी आयद करने वाला एक नया मुल्क बन गया है। कल से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाजत नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निजाम और बच्चों के तहफ्फुज़ की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदामात का मकसद बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले मशमूलात साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिजाइन की लत लग जाने से महफूज रखना है। वो कंपनियां जो इस जाब्ते पर अमल आवरी नहीं करेंगी उन्हें 1 करोड़ रिंगिट तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया मलेशिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की रसाई पर पाबंदियों को मुतारिफ कराया है, जबकि ब्राजील ने वालदैन की सख्त तरीन निगहदाश्त और उम्र की तस्दीक से मुतालिक इकदाम पर अमल शुरू कर दिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के मुफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इकतसादी शराकतदारी के माहिदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टैरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदात कारों को ड्यूटी फ्री रिसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकतदारी को फरोग देंगे और मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू कर दिया है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए प्रोग्राम के तहत सुनते ऋषभ प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया हुआ राग शुद्ध सनम।

सामने अभी आप सुन रहे थे ऋषभ प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया हुआ राग शुद्ध सरंग। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आखिरे शब। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं फिल्मी नगमे। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश सुनिए की आवाज में।

ये आकाशवाणी है। अब आप तौहीन हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मुफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी के मुआहदे पर अमल आवरी शुरू हो गई है। ओमान के टैरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदात कारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनअती शराकत दारी को फरोग देंगे। और मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के दौरे पर आए हुए सदर यू मिन ऑंग लैंग ने कल बामी उमूर के तमाम मामलों पर तफसीली मुज़ाकरात किए जिसमें तिजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में ताउन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी ताउन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी, तरक्याती ताउन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन को बढ़ाने पर दिलचस्पी जाहिर की। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की, तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मुफादात के लिए नुकसानदेह हों। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया है कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मुफादात के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अवलियत देने एक्ट ईस्ट नेज महासागर और भारत बहरुल काहिल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन 2 अरब डॉलर पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल कहा कि भारत की पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार एक अहम शराकत दार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदेही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी मुआहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे कल से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तजारती मुआहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि जाम मुआहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुत्तला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत के 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कल पानी के जहाज से रवाना हो गई है जो कि इस मुआहिदे पर अमलावरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट अथोराइजेशन मिल जाएगा। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान मुआहिदा भारत के 9 आजाद तिजारती मुआहिदों का हिस्सा है जो 38 मुल्कों का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कदी शक्ल दी गई है। भारत नई दिल्ली में
13वीं ब्रिक्स शहरकारी फोरम की मेजबानी करेगा। ये दो रोजा फोरम इस माह की 11 तारीख से शुरू हो रहा है। शहरकारी फोरम का मौजू है अवाम के लिए शहर, सबके शमूलियत वाले और मुजाहिम मुस्तकबिल के शहर के लिए ब्रिक्स तआवुन। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल इस बात का ऐलान किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इलाकाई पार्टनरों के साथ तआवुन को फरोग देने की अहमियत की तौसीक की है ताकि एक आजाद, खुले, पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत दारुल्कायल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजरा दिफा मुजाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवर फ्लाइट की आजादी और खित्ते में बिला रूकावट तजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैन अल्अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लेस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समुद्री सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी तआवुन में पेशरफ्त और समुद्री सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरका लाए अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादले ख्याल किया। वुजरा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकतदारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मुफाहमतनामे

0: मा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बारे में लोगों को जानकारी देना है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing had detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Minister Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर मध्य रात्रि के 1:10। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर हूं और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। जी हां, एवरग्रीन सॉन्ग्स गोल्डन एरा के। तो आपके लिए जो हमने गीतों की लिस्ट है वो तैयार कर ली है और आपके दिल तक ये गीत पहुंचाएंगे और पुरानी यादों में खो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। अब आपको लेकर चलते हैं 1970 की उस फिल्म में जिसमें कुछ आपका दिल जो है वो ख्याल बयां कर रहा है, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म कभी कभी।

ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म है मेरे जीवन साथी, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने, गीत किशोर कुमार की आवाज में।

फिल्म ब्लैकमेल से आप एक गीत सुन रहे थे और गीत सुनहरे कार्यक्रम में आपकी दोस्त कीर्ति आपके साथ है। इन गीतों को मैं स्टूडियो में गुनगुना रही हूं और आप अपने रेडियो सेट के माध्यम से या फिर जिस भी माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं आपके दिलों तक

अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म है बालिका वधू। आवाज आप सुनेंगे अमित कुमार की और बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने।

आपने सुना ये सुंदर नगमा फिल्म कुदरत से और बेहतरीन आवाज परवीन सुल्ताना की, बोल लिखे थे मजरूस ने। अब अगली प्रस्तुति जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में।

अब चलते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी गीत की ओर। जी हाँ, क्योंकि समय बस पूरा होने को है इस कार्यक्रम का, और आपको सुनवाएंगे फिल्म वारिस से लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में ये गीत, जिसका संगीत उत्तम जगदीश ने दिया था। और फिल्म वारिस से आइए सुनते हैं ये आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थियों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's neighborhood first East Act East and Mahasagar policies. Welcome Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India, congratulating President Hlaing on

0: आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार मेरे यानी अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और उम्मीद है आपने इस कार्यक्रम को अच्छे से एंजॉय किया होगा और इन गीतों को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अब समय है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए गीत बहार कार्यक्रम से इजाजत। बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमें AIR लाइव न्यूज 24x7 पर।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनावाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर बैंक को 2,929 करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करेकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kalaran multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, has come into force yesterday. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the SEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 और ठीक 40 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। आज कुछ चुने हैं बेहद खूबसूरत, बेहद उम्दा, कुछ चुनिंदा गीत। हर गीत आपको पसंद आएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कामचोर फिल्म के इस गीत के साथ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: भैया, थलसेना बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरेश्वर सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम, तालवाद्य कचेरी, प्रस्तुति येल्ला वेंकटेश्वर राव की है और ताल आदि।

Gamma,

अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म कार्यक्रम, ताल वाद्य कचेरी, ताल आदि प्रस्तुति येल्ला वेंकटेश्वर राव की थी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि।

دوازده دو جون سن 2026 سنتاؤں صبح کے 4:54 16 सेकेंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आपको प्रातःकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 6 बजे हिंदी समाचार के साथ हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी और 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 का समय रहेगा वंदना कार्यक्रम का और 6:40 पर चिंतन आप सुन पाएंगे, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ होगा बालकांड भाग 74। 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7 आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 7:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। सात का समय कार्यक्रम संगीतिका का रहेगा और 7:30 पर आप सुन सकते हैं गीतो भरी कार्यक्रम। 8 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार समाचार प्रभात में और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज प्रसारित की जाएगी।

बजकर 30 मिनट पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। सूर्य गंगा कार्यक्रम का समय रहेगा 8:45। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। कुछ ही पलों में यानी ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी और 5 बजकर हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तन ना जाय, तो टिटका तैच माली दान मिले छाखाय। अंतर पूजा पड़े कते बा संयम तुरका पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय तरन पहला।
1: मांस खाने कर

शुभ कर्मन ते तब हु नातरो, शुभ कर्मन ते कब हु नातरो, शुभ कर्मन ते

सब को आखे अपना जिस नाही सोरो चुन कटिए कीता आपो अपना पही लेखा संडिए जाओ रहना नहीं है जब तक आयतकार भंडिए बंदा किसी ना किए।

पौड़ी आपे ही करना की कल आपे ही दे धारिये देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है जो साई मनो वसारी।